हम आकाशवाणी के उदयपुर केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 266.66 मीटर यानी 1125 किलो हर्ट्ज पर। आज शनिवार है। शक संवत 1948 ज्येष्ठ मास की 16वीं तिथि, तदनुसार 6 जून 2026 सुबह के 5:57 होने वाले हैं। हमारी आज की प्रातःकालीन सभा अब आरंभ होती है।

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था की नींव बहुत मजबूत है। वैश्विक आर्थिक संकट के बावजूद देश ने वित्त वर्ष 2025-26 में 7.7% की विकास दर दर्ज की है। दमन में 2,970 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं की शुरुआत करने के बाद कल प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक बना हुआ है। इससे पहले प्रधानमंत्री ने गुजरात के सूरत में 18,000 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इस अवसर पर श्री मोदी ने कहा कि दुनिया हरित भविष्य की ओर बढ़ रही है और भारत आर्थिक विकास तथा पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन बनाकर इस दिशा में अग्रणी भूमिका निभा रहा है।
1: आज भारत प्रकृति के साथ प्रगति का मंत्र लेकर विकास कर रहा है, इकोनॉमी भी इकोलॉजी भी। सूरत में तो ये प्रत्यक्ष दिखता है। आजकल सूरत की सर्कुलर वाटर इकोनॉमी की बहुत चर्चा होती है। यहाँ शहर के वेस्ट वाटर को ट्रीट करके इंडस्ट्री को सप्लाई किया जाता है। इससे गंदे पानी का मैनेजमेंट भी हो जाता है और पानी से कमाई भी होती है।
0: श्री मोदी ने बताया कि भारत की कुल 250 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में से 50 गीगावाट क्षमता अकेले गुजरात की है। अर्थव्यवस्था ने वित्त वर्ष 2025-26 में भी अपनी मजबूत गति बनाए रखी है। वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद में 2024-25 के 7.1% की तुलना में 2025-26 में 7.7% की वृद्धि का अनुमान है। 2025-26 में वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद

0: 323 लाख करोड़ रुपए से अधिक होने का अनुमान है, जबकि 2024-25 के लिए इसका संशोधित अनुमान 299 लाख करोड़ रुपए से अधिक था। भारतीय रिजर्व बैंक ने विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों एफपीआई द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश से जुड़े नियमों में महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। नए प्रावधानों के तहत सामान्य मार्ग से निवेश करने वाले विदेशी निवेशकों को अब कई तरह के निवेश सीमाओं का पालन नहीं करना होगा। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि वर्ष 2026 में अब तक कुल 1076 भारतीय नागरिकों को अमरीका से भारत वापस भेजा जा चुका है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि वर्ष 2025 में अमेरिका से 3567 भारतीय नागरिकों को वापस भेजा गया था। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच प्रवासन और आवागमन को लेकर बातचीत जारी है। श्री जायसवाल ने बताया कि अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी नागरिकों को वापस भेजने के संबंध में एक द्विपक्षीय व्यवस्था अपनाई गई है। भारत ने तथाकथित गिलगित बाल्टिस्तान असेंबली के लिए आम चुनाव कराने की पाकिस्तान की योजना पर कड़ा विरोध दर्ज किया है। इस क्षेत्र पर पाकिस्तान ने अवैध रूप से कब्जा कर रखा है। ये चुनाव कल होने वाले हैं। भारत ने अपने इस पुराने रुख को दोहराया है कि वर्ष 1947 से जम्मू कश्मीर के भारत में पूर्ण कानूनी और अपरिवर्तनीय विलय के परिणाम स्वरूप गिलगित बाल्टिस्तान सहित जम्मू कश्मीर और लद्दाख के संपूर्ण केंद्र शासित प्रदेश भारत के अभिन्न अंग हैं। इंडोनेशिया के विदेश मंत्री सुगियोनो 3 दिन की भारत यात्रा पर आज नई दिल्ली पहुंचेंगे। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर और श्री सुगियोनो कल नई दिल्ली में भारत इंडोनेशिया संयुक्त आयोग की बैठक की सह अध्यक्षता करेंगे। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने बताया है कि जून 2026 तक देश भर में 9,42,000 से अधिक किसान खेत बचाओ अभियान से जुड़ चुके हैं। संतुलित खाद के इस्तेमाल का यह अभियान एक देशव्यापी जन आंदोलन बन गया है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने अंक सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि बढ़ाकर 7 जून कर दी है। सीबीएसई ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि छात्र अब रविवार मध्यरात्रि तक अपने आवेदन जमा कर सकेंगे। एशिया कप अंडर 18 हॉकी टूर्नामेंट के फाइनल में आज भारत का सामना जापान से होगा। जापान के काका मिघारा में खेले गए सेमीफाइनल में भारत ने पाकिस्तान को 5-3 से हराया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ये आकाशवाणी का उदयपुर केंद्र है। मीडियम वेव 266.66 मीटर यानी 1125 किलो हर्ट्स पर। सुबह के 6:05 हुए हैं। आइए अब सुने भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना।

भक्ति भौतिक सुखों के लिए नहीं, अभी तो आध्यात्मिक सुखों के लिए होनी चाहिए। सुख का साधन प्राप्त किया जा सकता है किंतु सुख नहीं। यह निर्णय हर व्यक्ति को स्वयं ही लेना पड़ता है कि वो किस ओर

संसार में सब कुछ भौतिक और अभौतिक दोनों सर्वोच्च चेतना या ईश्वर से आया है। एक भक्त अपने कर्म को भगवान को समर्पित कर देता है। भक्ति दिव्य प्रेम या सार्वभौमिक प्रेम पैदा करती है और स्वार्थ की भावना को समाप्त कर देती है।

भक्ति का मौलिक सूत्र यही है कि हमारी पुकार परमात्मा को ले आती है। एक बार हृदय से पुकारो तो आसन, योग, श्रवण, मनन किसी की जरूरत नहीं। केवल भाव करो, प्रेम से पुकारो तो ईश्वर जरूर आता है।

अभी आप सुन रहे थे भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। ये आकाशवाणी का उदयपुर केंद्र है। आइए अब सुने हमारी तीनों सभाओं में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा। सुबह 6:40 पर आप सुन पाएंगे श्री रामचरित मानस गान, संगीतकार सतीश भाटिया। खेती में आज ये कार्यक्रम आप सुन सकते हैं सुबह 6:50 पर। सदाबहार नगमों का आनंद आप ले सकते हैं सुबह 7:00। सुगम संगीत आप सुन पाएंगे सुबह 7:45 पर, सुबह 9:30 पर, सुबह 11:30 पर और रात्रि 9:15 पर। नमस्कार उदयपुर, ये कार्यक्रम आप सुन सकते हैं सुबह 8:30 पर हमारे दोनों ही चैनल मीडियम वेव और FM रेडियो लेक सिटी पर।

फिल्म संगीत आप सुन सकते हैं दोपहर 12 बजे, दोपहर 1:45 पर, शाम 6:05 पर और रात्रि 8 बजे। महिलाओं का कार्यक्रम सहेलियारी बाड़ी आप सुन सकते हैं दिन में 1:05 पर। कृषि जगत ये कार्यक्रम आप सुन सकते हैं दोपहर 2:30 पर।

किसान भाइयों का कार्यक्रम खेती और घर आप सुन सकते हैं शाम 7 बजे, जिसमें होगी चौपाल की बात, साथ ही कुछ राजस्थानी लोकगीत। रात्रि 9:30 पर सुनिएगा अखिल भारतीय संस्कृत पत्रिका।

ये थी हमारे तीनों सभाओं में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा। हम आकाशवाणी के उदयपुर केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए सुने श्री रामचरित मानस का, संगीत निर्देशन सतीश भाटिया का।

परशुराम और लक्ष्मण के वाक युद्ध से स्थिति बिगड़ती देख श्रीराम ने ऋषि की क्रोधाग्नि को शांत करने के लिए क्षमा याचना की। बालक यदि चपलता भी करते हैं तो गुरुजन तथा माता पिता के हृदय में आनंद उत्पन्न होता है, अतः समदर्शी, सुशील, धैर्यवान तथा ज्ञानी मुनि होने के नाते उन्हें इस अबोध दुधमुहे बच्चे को क्षमा कर देना चाहिए। किंतु तभी लक्ष्मण ने मुनि को एक बार फिर छेड़ा। खड़े खड़े मुनिवर के चरण दुख गए होंगे, सो उन्हें क्रोध त्याग कर बैठ जाना चाहिए। यदि टूटा हुआ धनुष उन्हें इतना ही प्रिय हो तो किसी गुणी को बुलवाकर उसे जुड़वा देने का उपाय करना चाहिए। स्थिति गंभीर होते देख राज

का जनक समेत उपस्थित जन आतंकित और भयभीत हो गए। श्री राम के शीतल वचन सुनकर परशुराम जी ने कहा, तेरा छोटा भाई समझकर मैं इसे बचा रहा हूं, किंतु ये मन का मैला और शरीर से वैसा ही सुंदर है जैसे विष से भरा सोने का कलश। श्री राम ने एक बार फिर उनका क्रोध शांत करने के उद्देश्य से उन्हें सच्चाई से अवगत कराया कि वो नाहक ही उस बालक पर क्रोध कर रहे हैं, वास्तविक दोषी तो स्वयं राम है, और जिस प्रकार भी मुनि का क्रोध समाप्त हो वो सभी उपाय करने को तत्पर हैं, किंतु मुनि का क्रोध दूर भी हो तो कैसे, लक्ष्मण तो अब भी उन्हें टेढ़ी दृष्टि से ही

अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरित मानस गान, संगीतकार थे सतीश भाटिया। ये आकाशवाणी का उदयपुर केंद्र है। आइए सुने कार्यक्रम खेती में आज।

खेती में आज कार्यक्रम सुनवा वाला सकला किसान भाया ने नीता कोठारी रो राम राम सा। किसान भाया आज बात करांगा अणी महीना आपाने खेती बाड़ी रा कसा कसा काम करना है। जून रो महीनो चाल रो है और जून रो महीनो किसान भाई आपाने वास्ते पूरा साल नु सब खास और व्यस्ततम टेम वेवे। यो वो टेम है जदि भीषण गर्मी थोड़ी कम वेवे, प्री मानसून री बोछाना पड़े और खरीफ फसला रे वास्ते तैयारियां जो है अपने अंतिम चरण में पहुंचे है। आज बात करांगा जून रे अणी महीना में कसा कसा खेती बाड़ी रा काम करना है। खेती खास रूप देखो मानसूनी वर्खा पे निर्भर करे। अपने अटेरी जो मिट्टी है वह खास रूप लाल काली मिश्रित पथरीली और मध्यम काली है। जून रे पहला सप्ताह में अगर मई में गहरी जुताई नहीं की थी बे किसान भाया तो वन्ने तुरंत पूरो कर लीजो। तपती धूप में मिट्टी रा ढेला टूटवारे केड़े जून रा पहला हफ्ता महीने कल्टीवेटर या पचे हेरो चलाई ने मिट्टी ने भुरभुरो बनाई लेनो है। अणी मिट्टी में हवारो संचार वेगा और जल धारण क्षमता बढ़ेगा। देसी खाद प्रबंधन भी किसान भाया अणी टेम पे आपने कर लेनी है। 10-15 टन प्रति हेक्टेयर हव तरह सड़ी तकी गोबर री खाद या पचे वर्मी कंपोस्ट जिन्हें केंचुआ खाद भी केवा पूरा खेत में वखेर ने मिट्टी में हव तरीको मिलाई लेनो है। कच्चो गोबर खेत में कदी नहीं नाकनो है किसान भाया, नीतर उदई और धोली लट रो प्रकोप बढ़ जाएगा या मक्का और मूंगफली री फसल ने बहुत बड़ो नुकसान पहुंचावे। अणी बात रो आपने विशेष ध्यान रखनो है। जना खेता में किसान भाया उदई री समस्या वत्ती वे वटे अंतिम जुताई रे टेम पे क्विनोलफॉस 1.5% चूरण या पछे मेथाइल पिराथियन 2% चूरण 25 किलोग्राम प्रति हेक्टर दर मिट्टी में मिलाई देनो है। किसान भाया ट्राइकोडर्मा वीडी 5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर और 100 किलोग्राम गोबर री खाद में मिलाई ने छाया में रखवारे केड़े खेत में मिलावाऊ फफून जनित जी रोग है जिसरे की जड़ गलन अणव मुक्ति मिल जावे। जून रा महीना में बोई तकी जी खास फसलाएं वनारो उन्नत किस्मारी बात करा तो देखो मक्का री उन्नत किस्मा है प्रताप मक्का 3, प्रताप मक्का 5, माही कंचन, माही

डबल PEHM 2 बायो 968 ई सब मक्कारी हाउ उन्नत प्रजातियां है। सोयाबीन री उन्नत प्रजातियां री बात करा किसान भाया तो JS 335, JS 9560, JS 2034, RVS 2024, प्रताप सोया 1 ई सब जो है उन्नत किस्मा है। मूंगफली में प्रताप मूंगफली 1, प्रताप मूंगफली 2, GG 20, TG 37 है, ये सब मूंगफली री उन्नत किस्मा है। उड़द री किस्मा री बात करा तो पंत यू 31, कृष्ण जिन्हें TD-9 भी कहवा, प्रताप उड़द 1, RBU 38, ये सब उड़दरी हाउ किस्मा है। मूंगरी किस्मारी बात करा तो IPM 02-3, SML 668, RMG 62, ज्वार री किस्मा प्रताप ज्वार 14-30, CSV 15, CSV 17, माहीचरी, ये सब ज्वार री उन्नत किस्मा है। किसान भाई अक्सर बीज उपचार ने नजरअंदाज कर दे, जण्यू कही है अंकुरन कम वेवे, जून में वावणी रे ठीक पहला FIR यानी फंगीसाइड, इंसेक्टिसाइड और राइजोबियम यानी कवकनाशी, कीटनाशी और राइजोबियम कल्चर तकनीकों बीज उपचार जरूर कर लीजो। फंगीसाइड री बात करा जो कि कवकनाशी है, सबू पहला बीजा ने थीरम या पचे कैप्टोन 3 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज या पचे बाविस्टीन 2 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज उपचारित कर लेना है। कीटनाशी री बात करा तो रस चूसक कीड़ा और उदय रे बचाव रे वास्ते इमिडाक्लोप्रिट 5 मिलीलीटर प्रति किलो बीज रे हिसाब प्रयोग करना है। राइजोबियम कल्चर री बात करा तो दलहनी फसला में सोयाबीन मूंग उड़द रे वास्ते राइजोबियम और PSB कल्चर रो 250-250 ग्राम प्रति 10 किलोग्राम बीज रे हिसाब गुड़ रे ठंडा गोल में मिलाने उपचार करना है। अंडे केड़े पौधारी जड़ा में गांठा हव वणे और नाइट्रोजन री बचत भी वेवे है। जून महीना में कई फसलारी वावणी री वैज्ञानिक विधि री बात करा किसान भाया तो मक्का अपने क्षेत्र री खास खाद्यान्न फसल है। जून रे तीसरा या चौथा सप्ताह में जिसरी 50-60 मिलीलीटर लगभग 2-2.5 इंच बारिश भेजावे वणी टेम पे वावणी शुरू कर सका। मक्का री वावणी हमेशा देखो कतारा में करनी चाहे, कतारू कतारी दूरी 60-75 सेंटीमीटर और पौधों पौधारी दूरी 20-25 सेंटीमीटर राखनी चाहे। वावणी रे टेम पे 50 किलोग्राम DAP, 50 किलोग्राम यूरिया और 40 किलोग्राम म्यूरेट ऑफ पोटास प्रति हेक्टेयर देनो चाहे। जिंक री कमी वाला क्षेत्र में जी खेत है मणा में 25 किलो जिंक सल्फेट प्रति हेक्टेयर किसान भाया मिलाई दीजो। सोयाबीन री वावणी जदीस करनी है जदि की जमीन में कम 3-4 इंच तक नमी बैठ चुकी है। कम नमी में सोयाबीन रो बीज सड़ जावे अणी वातरो आपणे ध्यान राखणो चावे। कतारू कतारी दूरी री बात करा तो 30-45 सेंटीमीटर और पौधों पौधारी दूरी 7-10 सेंटीमीटर राखनी है। बीज ने 3-4 सेंटीमीटर वत्तो घेरो नी बोवणो है। मूंगफली री वावणी री बात करा तो रेतीला दोमट क्षेत्र रे महीने मूंगफली खूब बोई जावे। जून रे मध्य में अगर पाणतरी सुविधा वे तो पलेवो लगाई यानी कि अगेती वावणी मूंगफली री आपा कर सका। कतारू कतारी दूरी 30 सेंटीमीटर और पौधों पौधारी दूरी 10 सेंटीमीटर राखनी है। मूंगफली में जिप्सम रो बहुत महत्व है। जून रे अंतिम जुताई रे टेम पे 250 किलोग्राम जिप्सम प्रति हेक्टेयर री दर मिट्टी में मिले लेनो चावे। जणी मूंगफली रा दाणा रो भराव हव वेगा और तेल री मात्रा भी किसान भाया बढ़ जाएगा। अंतराशस्य खेती रा विकल्प री बात करा तो सूखो और वत्ती वर्खा वाला री जोखिम ने कम करवा रे वास्ते किसान भाया अंतराशस्य खेती एक बेहतरीन तकनीक है अने जून री वावणी में शामिल करनो चावे। मक्का रे लारे उड़द या पचे मूंग मक्का री दो कतारा रे वच में उड़द या मूंगरी 1-2 कतार लगानो चावे। अनुपात 2:2 या पचे 1:1 राखनो चावे। ज्वार रे लारे मूंग लगाई सका, ज्वार रे लारे मूंगरी वावणी करनो भी हाउ रे वे। सोयाबीन लारे मक्का लगाई सका, 4 कतार सोयाबीन री और 2 कतार मक्का री लगावांगा। अणियू अगर खास फसल कणी रोग या सूखा रे कारण खराब भी वे जाए किसान भाया तो दलहन री फसलू आपाने सहारो मिल जाएगा। नर्सरी प्रबंधन री बात करा तो धान और साग री नर्सरी आपा लगाई सका। किसान भाया जून में सब्जियां और धान री खेती करनो जो किसान भाई चावे भी बासमती और सुगंधित धान री जून रे पहला सप्ताह में नर्सरी यानी पौधशाला तैयार कर लेवे। 1 हेक्टेयर
खास खेत में रोपाई रे वास्ते लगभग 500 वर्ग मीटर क्षेत्र में नर्सरी पर्याप्त रहेगा। नर्सरी में उचित नमी बनाए रखवारे वास्ते खरपतवार निकालता रहना है और 21-25 दनारे केड़े जून रा अंतिम या पचे जुलाई रे शुरुआत रे महीने पौध रोपाई रे वास्ते तैयार हो जाएगा और आपने जो है हाउ तरीका पौध रोपाई आप कर सकांगा। खरीफ सागबाजी री नर्सरी री बात करा तो मरचा टमाटर रींगणा और अगेती फूलगोभी री नर्सरी जून रा पहला सप्ताह में यानी अबाणु रे टेम पे ऊंची उठी तकी जो क्यारियां है वणी पे आपा तैयार कर सका। और देखो क्यारियां ने तेज धूप बचावर वास्ते ग्रीन नेट या बचे छप्पर रो प्रयोग भी आपने कर लेनो है। तो अणी तरीका किसान भाया अणी टेम पे अगर आप खेती बाड़ी रो काम करोगा तो आपकी मेहनत भी बेकार नहीं वेगा और फसल उत्पादन आवा वाला टेम में हाउ तरीकम वे सकेगा आपने मुनाफो भी वत्तो मिलेगा। अबे माने कार्यक्रम रो टेम व्यो तो आज्ञा दो सा नीता कोठारी ने राम राम सा।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम खेती में आज। हम आकाशवाणी के उदयपुर केंद्र से बोल रहे हैं मीडियम वेव 266.66 मीटर यानी 1125 किलो हर्ट्ज पर। आइए अब सुने सदाबहार नगमे।

ये गीत था फिल्म मुकद्दर का सिकंदर से, आवाज थी लता मंगेशकर की। अगली पेशकश आशा भोंसले और किशोर कुमार की आवाजों में, फिल्म का नाम कालिया।

ये गीत था फिल्म महान से। आवाज़ थी किशोर कुमार की, अगली आवाज़ लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की, और गीत हम सुनवा रहे हैं हाथ की सफाई फिल्म से।

0: प्लेटफॉर्म नंबर 2 से चलने वाली सुपर फास्ट एक्सप्रेस के यात्रियों
1: को
2: दीप तुमने इसे मोबाइल चार्ज करना
1: दिमाग चार्ज कर अपना
3: ऐसे पब्लिक पोर्ट से फोन चार्ज किया तो पर्सनल डेटा होगा पब्लिक
1: देखा
2: पापा रुको मैं पे करता हूँ नो सिग्नल
3: अब क्या करोगे
2: फ्री वाईफाई है ना
1: बुद्धू सुधर जा
3: पेमेंट्स के लिए नो ओपन वाईफाई
2: यानी फ्रॉड को करो बाय बाय
3: RBI कहता है
4: करो सही शुरुआत बनो फाइनेंशियली स्मार्ट
5: खो गया इंतजाम
6: किसका
5: गुड्डी की फीस का
6: दिखा 20,000 का लोन तुरंत पता है कौन दे रहा है ब्याज कितना है लोन विनियमित संस्थानों से ही ले और कर्ज उतना जितनी जरूरत वो भी जांच कर हो गया इंतजाम पगार एडवांस में भेजिए
7: RBI कहता है
4: सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव
8: सदाबहार नगमों का आनंद आप ले रहे हैं आकाशवाणी की उदयपुर केंद्र से अगला गीत महेंद्र कपूर और लता मंगेशकर की आवाजों में फिल्म का नाम गीत

आशा भोसले और अमित कुमार की आवाज़ों में अभी आपने सुना गुरुदेव फिल्म से ये गीत। सदाबहार नगमों की अंतिम पेशकश, आइए सुने लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज़ों में फिल्म का नाम कभी कभी।

0: सदाबहार गीतों का कार्यक्रम बस यहीं तक। हम आकाशवाणी के उदयपुर केंद्र से बोल रहे हैं, आइए अब सुनें आबोहवा।
1: जलवायु और समानता, यह यूनेस्को का संदेश है। जलवायु परिवर्तन दुनिया भर में असमानता को और बढ़ाता है। कोई व्यक्ति कितना प्रभावित होगा, यह उसकी आय, लिंग, उम्र, शिक्षा और सेहत पर निर्भर करता है। अमीर देश और अमीर लोग खुद को ज्यादा सुरक्षित रख पाते हैं, जबकि गरीब लोग जो सबसे कम प्रदूषण करते हैं उन्हें सबसे ज्यादा नुकसान उठाना पड़ता है। देशों के अंदर भी सामाजिक आवास, स्वास्थ्य सेवा और आपदा योजना जैसे कदम जरूरतमंदों की रक्षा करते हैं। दुनिया में असमानता को बढ़ाने से रोकने के लिए उचित धन सहायता और संसाधनों का सही बंटवारा बहुत मायने रखता है। यहाँ एक रोचक जानकारी है, दुनिया की सबसे

जगजीत सिंह की गई इस गजल के साथ ही सुगम संगीत बस यहीं तक। हम आकाशवाणी के उदयपुर केंद्र से बोल रहे हैं मीडियम वेव 266.66 मीटर यानी 1125 किलो हर्ट्ज पर। सुबह के 8 बजने वाले हैं, अब सुनते हैं आकाशवाणी दिल्ली से समाचार बस कुछ ही देर में।

0: आजकल भारत के गांव-गांव में छतों का रूप बदल गया है। जहां पहले छतों पर सिर्फ पापड़ और कपड़े सूखते थे, वहां पर अब बिजली बिल जीरो हो रहे हैं। गांव-गांव में लोग सोलर पैनल लगवा रहे हैं। आप भी लगवा लीजिए। 78,000 की सब्सिडी दे रही है भारत सरकार। 30,00,000 से अधिक परिवार तो इसका लाभ उठा चुके हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर। हर घर सूर्य घर।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, वैश्विक आर्थिक संकट के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था विशेष रूप से मजबूत बनी हुई है। रिजर्व बैंक ने निवेश के लिए विदेशी निवेशकों को नियमों में छूट दी। कृषि मंत्रालय ने कहा, संतुलित उर्वरक उपयोग और सतत कृषि के लिए 9,42,000 से अधिक किसान खेत बचाओ अभियान में शामिल हुए। भारत ने जम्मू कश्मीर मामले में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यता का दुरुपयोग करने के लिए पाकिस्तान की निंदा की। मौसम विभाग ने 9 जून तक केरल के उत्तरी जिलों में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया और भारतीय ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानानंद नॉर्वे शतरंज खिताब जीतने वाले पहले भारतीय बने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि वैश्विक आर्थिक संकट के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था की नींव असाधारण रूप से मजबूत बनी हुई है। उन्होंने कहा कि देश ने वित्त वर्ष 2025-26 में 7.7% की मजबूत वृद्धि दर्ज की है। श्री मोदी ने दमण में कल लगभग 2,970 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। इस अवसर पर विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है।
2: वर्ष 2025-26 में भारत ने 7.7% की ग्रोथ रेट हासिल की है और पिछला क्वार्टर जो 31 मार्च को खत्म हुआ उसमें भी भारत की ग्रोथ 7.8% रही है और ये दुनिया में तेज गति से आगे बढ़ने वाली बड़ी इकोनॉमी है।
1: प्रधानमंत्री ने ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता पर बल देते हुए कहा कि विश्व हरित भविष्य की ओर बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि भारत आर्थिक विकास और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन बनाकर इस दिशा में अग्रणी भूमिका निभा रहा है।
2: ये जो वैश्विक संकट चल रहा है ये दिखाता है कि एनर्जी के मामले में आत्मनिर्भरता कितनी जरूरी है और बीते 12 वर्षों में देश ने जो कैपेसिटी तैयार की है उसका कितना बड़ा महत्व है। 12 वर्ष पहले भारत में सौर ऊर्जा का उत्पादन नाम मात्र का था, आज हम दुनिया के टॉप 5 देशों में से एक हैं।
1: इससे पहले श्री मोदी ने सूरत में 18,000 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री ने बताया कि भारत की कुल नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता 250 गीगावाट में गुजरात का योगदान 50 गीगावाट है। भारतीय रिजर्व बैंक ने विदेशी निवेशकों के सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश से जुड़े

0: इन नियमों में महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। नए प्रावधानों के अंतर्गत सामान्य निवेश करने वाले विदेशी निवेशकों को अब कई तरह की निवेश सीमाओं से छूट दी गई है। एक रिपोर्ट।
1: नई व्यवस्था के तहत जनरल रूट से निवेश करने वाले FPI को अधिक लचीलापन मिलेगा क्योंकि कुछ निवेश संबंधी प्रतिबंध हटाए गए हैं। रिजर्व बैंक ने सरकारी प्रतिभूतियों और राज्य विकास ऋणों में निवेश के लिए लागू जनरल और लॉन्ग टर्म श्रेणियों को मिलाकर एक एकीकृत निवेश सीमा भी निर्धारित की है। वित्त वर्ष 2026-27 की पहली छमाही के लिए केंद्र सरकार की प्रतिभूतियों में निवेश सीमा 4,62,490 करोड़ और दूसरी छमाही के लिए 4,77,006 करोड़ तय की गई है। राज्य विकास ऋणों के लिए ये सीमा पहली छमाही में 1,53,043 करोड़ और दूसरी छमाही में 1,64,242 करोड़ निर्धारित की गई है। अंकिता आप्टे, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
0: वित्त वर्ष 2025-26 में भी देश की अर्थव्यवस्था की मजबूत गति बरकरार है। वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद में 2024-25 के 7.1% की तुलना में 2025-26 में 7.7% की वृद्धि का अनुमान है। 2025-26 में वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद 323 लाख करोड़ रुपए से अधिक होने की संभावना है। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने कहा है कि देश भर में अब तक 9,42,000 से अधिक किसान खेत बचाओ अभियान से जुड़ चुके हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि संतुलित उर्वरक उपयोग को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया ये अभियान अब जन आंदोलन का रूप ले रहा है।
2: मंत्रालय के अनुसार अभियान के अंतर्गत अब तक 17,800 से अधिक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं, जिनसे लगभग 7 लाख किसान लाभान्वित हुए हैं। इसके अलावा 3,700 से अधिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों में 1,50,000 से अधिक प्रतिभागियों को उर्वरक उपयोग, मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन और वैज्ञानिक खेती की जानकारी दी गई है। मंत्रालय ने ये भी बताया कि किसानों को जैविक और वैकल्पिक पोषक तत्वों के उपयोग की जानकारी देने के लिए 8,850 से अधिक व्यावहारिक प्रदर्शन भी आयोजित किए गए हैं। अभियान का उद्देश्य मिट्टी की उर्वरता बनाए रखना, रासायनिक उर्वरकों पर निर्भरता कम करना और टिकाऊ खेती को बढ़ावा देना है। अक्षत की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अमीशा।
0: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर आज नई दिल्ली में नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल के साथ वार्ता करेंगे। बैठक में व्यापार, निवेश, ऊर्जा और लोगों के बीच आपसी संपर्क सहित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा होगी। 3 दिन की भारत यात्रा पर कल श्री खनाल ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल से मुलाकात की। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि ये यात्रा भारत और नेपाल के विशेष साझेदारी संबंधों को और प्रगाढ़ बनाने में सहायक होगी।
3: With Nepal, we have an expansive agenda.
4: नेपाल के साथ हमारा एजेंडा बहुत व्यापक है। इसमें विकास के लिए सहयोग से लेकर लोगों के बीच आपसी संबंध और व्यापार तथा निवेश शामिल हैं। इसलिए जब दोनों देशों के विदेश मंत्री मिलेंगे तो इन सभी संबंधों पर चर्चा होगी। हम नेपाल के साथ अपनी इस बहुआयामी साझेदारी को और मजबूत करने के इच्छुक हैं।
3: Partnership that we have with Nepal.
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
5: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का देश के सभी एग्जाम वॉरियर्स के लिए विशेष संदेश।
6: जिंदगी परीक्षा के लिए नहीं है, हमारे जीवन को बनाने के लिए शिक्षा एक माध्यम है।
5: परीक्षा से जुड़े किसी भी प्रश्न या समस्या के समाधान हेतु NCPCR द्वारा आयोजित लाइव स्ट्रीमिंग सेशन में विशेषज्ञों से सीधे बातचीत करें, जो कि 23 अप्रैल से लगातार चल रहे हैं। अधिक जानकारी के लिए www.ncpcr.gov.in पर लॉगिन करें।
0: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। भारत ने कहा है कि पाकिस्तान संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अपनी अस्थायी सदस्यता का दुरुपयोग जम्मू कश्मीर के बारे में झूठे दावे फैलाने के लिए कर रहा है। भारत ने चेतावनी दी है कि पाकिस्तान को अपनी जिम्मेदारियों का ध्यान रखना चाहिए। भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने कहा कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न और अविभाज्य अंग था, है और हमेशा रहेगा। पाकिस्तान के खोखले बयान और झूठे दावे इस मूलभूत वास्तविकता को नहीं बदल सकते।
7: I'd like to remind Pakistan that being a member of the...
8: मैं पाकिस्तान को याद दिलाना चाहता हूं कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का सदस्य होना एक बड़ी जिम्मेदारी है। यह पक्षपाती और झूठी बातें फैलाने का मंच नहीं है। मैं ये बात साफ साफ कहना चाहता हूं। जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न और अटूट हिस्सा था, है और हमेशा रहेगा। पाकिस्तान की खोखली बयानबाजी और झूठे दावों से ये बुनियादी सच्चाई नहीं बदलेगी।
0: विदेश मंत्रालय ने कहा है कि 2026 में अब तक 1076 भारतीय नागरिकों को अमेरिका से भारत वापस

0: भेजा जा चुका है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि 2025 में अमरीका से 3,567 भारतीय नागरिक वापस भेजे गए थे। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच प्रवासन और आवागमन को लेकर बातचीत जारी है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भारत में पांचवी पीढ़ी के लड़ाकू विमान सुखोई SU-57 के संयुक्त उत्पादन का प्रस्ताव दिया है। सेंट पीटर्सबर्ग अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक मंच के दौरान उन्होंने कहा कि रूस SU-57 कार्यक्रम में भारत की भागीदारी का इच्छुक है। श्री पुतिन ने एकीकृत वायु रक्षा प्रणालियों और अन्य रक्षा उपकरणों के क्षेत्र में भी भारत के साथ सहयोग की इच्छा जताई है। भारतीय शांतिदूत मेजर अभिलाषा बराक को संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुतरश ने प्रतिष्ठित 2025 संयुक्त राष्ट्र सैन्य लैंगिक समानता समर्थक पुरस्कार से सम्मानित किया है। लेबनान में संयुक्त राष्ट्र अंतरिम बल में भारतीय बटालियन के साथ सेवारत मेजर बराक को संयुक्त राष्ट्र शांतिदूतों के अंतर्राष्ट्रीय दिवस के अवसर पर सम्मानित किया गया। अमरीका की सेना ने हॉर्मुज जलडमरू मध्य के पास ईरान के तटीय निगरानी रडार ठिकानों पर हमला किया है। अमरीका ने कहा है कि क्षेत्रीय समुद्री यातायात को निशाना बनाने वाले ईरान के 4 ड्रोन मार गिराए जाने के बाद ये कार्रवाई की गई। इससे अमरीका और ईरान के बीच रुकी हुई शांति वार्ताओं पर और दबाव बढ़ गया है। एक रिपोर्ट।
1: ये हमला ऐसे समय में हुआ है जब अमेरिका और ईरान के बीच कूटनीतिक बातचीत रुकी हुई है। ईरान विदेशों में अपनी अरबों डॉलर की परिसंपत्तियों पर लगे प्रतिबंध को हटाने की मांग कर रहा है। ईरान के अधिकारी किसी भी अंतरिम समझौते की प्रगति को इन प्रतिबंधों से जोड़ रहे हैं। इस बीच लेबनान में हिजबुल्ला ने अमेरिका की मध्यस्थता वाले इसराइल और लेबनान सरकार द्वारा स्वीकार किए युद्ध विराम प्रस्ताव को ठुकरा दिया है। हिजबुल्ला के अनुसार किसी भी समझौते में दक्षिणी लेबनान से इसराइल की सेना की वापसी की बात शामिल होनी चाहिए। हिजबुल्ला ने ब्यूफोर्ट किले के पास इसराइल की सेना पर हमले किए हैं। इस किले को इसराइल की सेना ने हालिया हमले के बाद अपने अधिकार में ले लिया था। ईरान ने हिजबुल्ला के लिए अपने समर्थन की बात दोहराई है। समाचार कक्ष से विनोद की रिपोर्ट के साथ मैं राजेश कुमार मीणा।
0: केरलम में दक्षिण पश्चिम मानसून के तीव्र होने के साथ ही मौसम विभाग ने राज्य के उत्तरी जिलों में 9 जून तक तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। मलप्पुरम, कोईकोड, वायनाड, कन्नूर और कासरगोड जिलों के लिए आज रेड अलर्ट जारी किया गया है, जबकि मलप्पुरम, कोईकोड और वायनाड में कल भी रेड अलर्ट रहेगा। अन्य 6 जिलों के लिए आज ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। भारतीय ग्रैंडमास्टर आर प्रज्ञानानंद ने ओस्लो में नॉर्वे शतरंज खिताब जीतकर इतिहास रच दिया है। प्रज्ञानानंद ने अंतिम दौर में जर्मनी की विंसेंट क्रीमर को हराया। ये खिताब जीतने वाले वो पहले भारतीय बन गए हैं। नॉर्वे शतरंज में प्रज्ञानानंद ने विश्व के नंबर एक खिलाड़ी मैग्नस कार्लसन को हराया था। भारत और अफगानिस्तान के बीच आज से शुरू हो रहा क्रिकेट टेस्ट मैच न्यू चंडीगढ़ में खेला जाएगा। इससे पहले 2018 में अफगानिस्तान ने भारत के साथ पहला टेस्ट मैच खेला था। सैफ महिला फुटबॉल चैंपियनशिप के फाइनल में आज भारत का मुकाबला बांग्लादेश से होगा। गोवा के मडगांव में मैच शाम 6:30 बजे से खेला जाएगा। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
2: भारत की आर्थिक वृद्धि में बढ़त की खबर सभी अखबारों में प्रमुखता से है। हिंदुस्तान की सुर्खी है, संकट के बीच भारत की जीडीपी में उछाल, चौथी तिमाही में 7.8% रही। पत्र के अनुसार मजबूत मांग और उत्पादन के कारण रफ्तार तेज रही। नवभारत टाइम्स के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोले, ये 140 करोड़ भारतीयों की मेहनत और आर्थिक सुधारों का नतीजा है। पत्र के अनुसार विदेशी पूंजी के लिए टैक्स फ्री राहत तैयार, आरबीआई ने बिना सीमा विदेशी निवेश का दायरा बढ़ाया। देशबंधु के अनुसार लोन महंगे नहीं होंगे और ईएमआई भी नहीं बढ़ेगी। दैनिक भास्कर ने ऐतिहासिक शीर्षक से लिखा है, एआई का ग्लोबल हब बनेंगे हम। ऑस्ट्रेलियाई कंपनी देश में 3,00,000 करोड़ रुपए निवेश करेगी। 5 गीगावाट क्षमता का डेटा सेंटर बनाएगी एयर ट्रंक। जनसत्ता ने अध्ययन शीर्षक से लिखा है, अमरीका के 96 यूनिकॉर्न में भारतीय मूल के उद्यमियों का योगदान, इनमें कृत्रिम मेधा आधारित सर्च इंजन परप्लेक्सिटी भी शामिल। पत्र के अनुसार नव उद्यमों में 59% की स्थापना प्रवासी उद्यमियों ने की। वीर अर्जुन ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से लिखा है, मेरे मोदी अच्छे मित्र हैं, व्यापार समझौता हो जाएगा। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, व्यापार समझौता का पहला चरण जुलाई तक संभव। दैनिक जागरण लिखता है भारत संघ एस

0: U-57 बनाने को रूस तैयार। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने की पांचवी पीढ़ी का अत्याधुनिक लड़ाकू विमान देने की पेशकश। दिल्ली के मालवीय नगर अग्निकांड पर पंजाब केसरी की सुर्खी है, लापरवाह अफसरों पर सीधे FIR। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा, जिला मजिस्ट्रेट की शक्तियों को और प्रभावी बनाने का ऐतिहासिक फैसला किया गया। जनसत्ता ने अनदेखी की आग शीर्षक से संपादकीय में लिखा है कि कोई हादसा एक मामूली कोताही का नतीजा हो सकता है, लेकिन अगर वो गलती बनी रही तो उन्हें आपराधिक लापरवाही से कम नहीं माना जा सकता।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, वैश्विक आर्थिक संकट के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था विशेष रूप से मजबूत बनी हुई है। रिजर्व बैंक ने सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश के लिए विदेशी निवेशकों को नियमों में छूट दी। कृषि मंत्रालय ने कहा, संतुलित उर्वरक उपयोग और सतत कृषि के लिए 9,42,000 से अधिक किसान खेत बचाओ अभियान में शामिल हुए। भारत ने जम्मू कश्मीर मामले में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अस्थायी सदस्यता का दुरुपयोग करने के लिए पाकिस्तान की निंदा की। और भारतीय ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानानंद नॉर्वे शतरंज खिताब जीतने वाले पहले भारतीय बने। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning. I'm Shagun Chopra. The headlines. Prime Minister Narendra Modi asserts Indian economy remains exceptionally strong despite global economic crisis. Reserve Bank of India eases regulatory norms for foreign portfolio investors in government securities to attract investment. More than 9.42 lakh farmers to join Khet Bachao Abhiyan for balanced fertilizer use and sustainable farming. India slams Pakistan for abusing its temporary membership of UN Security Council to peddle false narratives about Jammu and Kashmir. IMD forecasts extremely heavy rainfall in northern districts of Kerala until June 9th. And Indian Grandmaster R. Pragyanan scripts history becomes first Indian to win Norway chess title. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi has asserted that the foundation of the Indian economy remains exceptionally strong, with the nation recording a robust 7.7% growth in the fiscal year 2025-26 despite a global economic crisis. Addressing a large gathering after launching a series of developmental projects worth around 2,970 crore rupees in Daman last evening, the Prime Minister noted that India continues to be among the fastest growing economies in the world. He assured the citizens that the country will forge ahead with its reform express while prioritizing massive infrastructure development and welfare schemes for the poor.
3: वर्ष 2025-26 में भारत ने 7.7% की ग्रोथ रेट हासिल की है और पिछला क्वार्टर जो 31 मार्च को खत्म हुआ उसमें भी भारत की ग्रोथ 7.8% रही है और ये दुनिया में तेज गति से आगे बढ़ने वाली बड़ी इकोनॉमी है।
2: Earlier, Mr. Modi launched various infrastructure projects worth over 18,000 crore rupees in Surat. Addressing the gathering, the Prime Minister pointed out that out of India's total renewable energy capacity of 250 gigawatts, Gujarat alone contributes 50 gigawatts, accounting for a crucial fifth of the nation's green energy share. He added that the state is poised to play a massive role in shifting from solar energy to green hydrogen and green ammonia, which is essential for achieving energy self-reliance.
3: दुनिया अब हरित युग की तरफ, ग्रीन फ्यूचर की तरफ बहुत ही सावधान हो चुकी है। भारत भी ग्रीन ग्रोथ पर बहुत अधिक काम कर रहा है और इसमें भी गुजरात राज्य है जिसने इस शताब्दी के प्रारंभ में ही सरकार में क्लाइमेट चेंज का अलग डिपार्टमेंट बनाया था और गुजरात के चारणका गांव में भारत का पहला सोलर पार्क भी बनाया गया था।
2: स्पीकिंग ऑन द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सूरत, द प्राइम मिनिस्टर प्रेज द सिटी स्पिरिट एंड इट्स ट्रांजिशन इन टू अ ग्रीन सिटी। ही लॉडेड सूरत सर्क्यूलर वाटर इकोनॉमी मॉडल एंड द वेस्ट टू वेल्थ इनिशिएटिव व्हिच हैज टर्न्ड इनटू अ मास मूवमेंट ओवर द लास्ट 12 इयर्स। The Reserve Bank of India has simplified the rules governing investments by foreign portfolio investors or FPIs in government securities. The revised framework is aimed

0: ताजी हवा में फूलों की महक हो, पहली किरण में चिड़ियों की चहक हो, जब भी खोले पलकें आप उन पलकों में बस खुशियों की झलक हो। एक नई शुरुआत के साथ हम फिर लेकर आए हैं आज का नमस्कार उदयपुर कार्यक्रम। आज के इस प्रोग्राम में मैं हूं आपकी दोस्त विद्या और मेरे साथ
1: और मैं हूं रश्मि। तो आप सभी को प्यार भरा नमस्कार हम दोनों की ओर से। और आज है कल्चर पॉप सैटरडे, क्या कुछ खास।
0: वीकेंड ओपनर की शुरुआत रश्मि हम करेंगे गोपीनाथ बोरदोलोई जयंती और आज की कुछ खास खबरों के साथ, और उसके बाद फोक एंड रूट्स हमारी लोक और परंपरा में हम बात करेंगे विलुप्त होती लोक परंपराओं को कैसे बचाया जाए।
1: बिल्कुल विद्या, और मनोरंजन कक्ष की तरफ चलेंगे और आज बातें करेंगे बचपन के मनोरंजन और आज के डिजिटल मनोरंजन की। और साथ ही आज हम अवेयरनेस में हमारे श्रोताओं तक पहुंचाने वाले हैं टेनिस खेल की प्रमुख स्पर्धाएं और उसके इतिहास के बारे में जानकारी। तो बस बने रहिए हमारे साथ। इस खूबसूरत से गीत के साथ करते हैं आगाज़।

0: नमस्कार। उदयपुर प्रोग्राम की शुरुआत रश्मित हो चुकी है। हमारा भारत देश, जिसकी आजादी कई लोगों के बलिदान से हमें मिली है, कई लोगों का संघर्ष, उनकी मेहनत, जिसके कारण हम आज आजाद भारत में जी रहे हैं। वीकेंड ओपनर में आज हम बात करेंगे स्वतंत्रता सेनानी और असम के मुख्यमंत्री रहे गोपीनाथ बोरदोलोई की, जिनकी आज जयंती है। आपको आधुनिक असम का निर्माता भी कहा गया है। गोपीनाथ बोरदोलोई के प्रयत्नों से ही आज असम भारत का अभिन्न अंग है। आपको लोग शेरे असम के नाम से भी जानते हैं। प्रगतिवादी विचारों वाले गोपीनाथ जी असम का आधुनिकीकरण करना चाहते थे। जब राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने देश की आज़ादी के लिए अहिंसा और असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया था, तब गोपीनाथ जी ने बिना किसी हिचक के अपनी चलती वकालत छोड़ स्वतंत्रता आंदोलन में कूद पड़े। उन्होंने अपने आप को पूरी तरह देश के लिए स्वतंत्रता संग्राम में अपने आप को समर्पित कर दिया।
1: बिल्कुल विद्या, और देखिए असम में शिक्षा और स्वास्थ्य के विकास के लिए उन्होंने कई महत्वपूर्ण संस्थानों की स्थापना की, जिसमें गुवाहाटी यूनिवर्सिटी, असम मेडिकल कॉलेज और असम उच्च न्यायालय की स्थापना से जुड़े प्रयास शामिल है। हमेशा सादगीपूर्ण जीवन जीते रहे, क्योंकि वो महात्मा गांधी जी के विचारों से प्रभावित थे और भारत सरकार ने उन्हें मरणोपरांत भारत रत्न से 1999 में सम्मानित किया। वे पूर्वोत्तर भारत के पहले व्यक्ति थे जिन्हें ये सम्मान मिला। गोपीनाथ बोरदोलोई जी का जीवन राष्ट्र सेवा, दूरदर्शिता और जन कल्याण का अद्भुत उदाहरण है। आज उनकी जयंती पर हम उन्हें शत शत नमन करते हैं।

0: तो विद्या नमस्कार उदयपुर कार्यक्रम हमारे श्रोता सुन रहे हैं और आज की कुछ अपडेट्स की बात करें तो आज जब मैं सुबह न्यूज़पेपर खोल रही थी विद्या तो पूरा न्यूज़पेपर ग्रीन ग्रीन ही नजर आ रहा था। कल विश्व पर्यावरण दिवस हमने मनाया और कई सारे निजी संस्थानों ने इस दिवस पर बहुत सारे कार्यक्रम चलाए। कहीं कहीं पर एक पेड़ माँ के नाम इस तरह के अभियानों के तहत पेड़ लगाए गए, पंछियों के लिए परिंदे भी लगाए गए और कई जलाशयों की सफाई भी की गई। विश्व पर्यावरण दिवस पर नगर निगम द्वारा वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान के तहत कल जागरूकता कार्यक्रम किए गए। इस दौरान बेस्ट प्लास्टिक संग्रहण में उत्कृष्ट कार्य करने वालों को प्रभारियों को सम्मानित भी किया गया और सिंगल यूज प्लास्टिक के खिलाफ शपथ भी ली गई। इसी के साथ प्रदेश में जल, जंगल और जन भागीदारी का एक अनूठा संयोग बना। प्रदेश में जल बचाने की मुहिम से 4 करोड़ लोग जुड़े और प्रदेश में 10 करोड़ नए पौधे लगाए जाएंगे, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। इसी के साथ मुख्यमंत्री जी ने कहा कि बिजली, पानी की बचत, अधिक से अधिक पौधारोपण, सिंगल यूज प्लास्टिक का कम उपयोग और पर्यावरण अनुकूल जीवन शैली ही आने वाली पीढ़ियों के लिए सुरक्षित भविष्य की गारंटी है। वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान और मिशन हरियालो राजस्थान जैसी पहल अब जन आंदोलन के रूप ले चुकी है और इसका असर हमें विश्व पर्यावरण दिवस के दिन भी दिखा, जहां पूरे शहर में हरियाली के लिए पहल की गई और जगह जगह पर पेड़ भी लगाए गए।
1: हमारी पर्यटन नगरी उदयपुर में पहली बार राजस्थान की लोक संस्कृति और आधुनिक तकनीक को एक साथ प्रस्तुत करने की पहल हेरिटेज लोक मरुधर के साथ यूआईटी पुलिया के समीप पर्यटकों को और शहरवासियों को मनोरंजन, रोमांच और सांस्कृतिक विरासत का अनूठा संगम मिलेगा। हमारे राजस्थान की लोक संस्कृति को बनाए रखने के लिए लोक कलाकार पारंपरिक लोक नृत्य और लोक संगीत की प्रस्तुति भी देंगे। हेरिटेज लोक मरुधर में शीश महल, वर्चुअल रियलिटी गेम्स, पार्क ऑफ इल्यूजन जैसे आधुनिक आकर्षण यहां पर आपको मिलेंगे। हर आयु वर्ग के लोगों को यहां एक नया अनुभव मिलेगा।

0: हे उदयपुर राइट्स, आप सुन रहे हैं हमारा प्रोग्राम नमस्कार उदयपुर। सदियों पुरानी परंपराओं, भाषाओं, कलाओं और जीवन शैली का आधुनिकता की चकाचौंध में खो जाना एक तरीके से हमारी ऐतिहासिक पहचान मिटने जैसा है रश्मित। और आज हम बात करेंगे फोक रूट्स में विलुप्त होती लोक परंपराओं को कैसे बचाया जाए। बात करें विलुप्त होती लोक परंपराओं का, तो उसका सबसे अहम कारण है वैश्वीकरण और आधुनिकीकरण है, पश्चिमी सभ्यता और एकल संस्कृति का प्रसार। कुछ वर्ष पूर्व की रश्मित बात करें तो हम भी अपने दादा दादी नाना नानी से पुरानी कथाएं गाथाएं सुनते थे, परंतु अब ये सब कम हो गया है, जिसका कारण वैज्ञानिक डिजिटलाइजेशन और मोबाइल कंप्यूटर युग है।
1: बिल्कुल विद्या, और देखिए हम बात करें अलग अलग

देशों की, तो हर प्रदेश के अलग अलग लोक परंपराएं हो जाती हैं। अगर हम यूपी साइड जाएं या फिर एमपी साइड जाएं या गुजरात साइड जाएं तो वहाँ की अलग अलग परंपराएं हैं। अगर हम अपने राजस्थान की बात करें तो वहाँ में जो विलुप्त होती जो हम परंपराओं की बात कर रहे हैं, स्पेशली हम बात करें कठपुतली कला की, तो जो गाँव गाँव में पहले देखने को मिलती थी अब वो स्पेशल स्टेज पर ही देखने को मिलती है, कुछ ही लोग उसका प्रचार प्रसार करते हैं। उसके अलावा पड़ और भोपों की परंपरा, मतलब देव नारायण जी और बापू जी की जो कथाएं हैं वो रात्रिकालीन गायन में पहले की तुलना में अब बहुत कम हो चुकी हैं, और वहीं बात

0: प्रचार प्रसार करते हैं। उसके अलावा पड़ और भोपों की परंपरा, मतलब देवनारायण जी और बापू जी की जो कथाएं हैं वो रात्रिकालीन गायन में पहले की तुलना में अब बहुत कम हो चुकी हैं। और वहीं बात करें पारंपरिक खेलों की तो वो भी आजकल हमें बहुत ही कम देखने को मिलते हैं। उसके अलावा विवाह, जन्म और त्योहारों पर गाए जाने वाले वो पारंपरिक गीत आपने देखा होगा जो हमारी दादी, नानी, चाची सभी विवाह में गा लिया करती थी, लेकिन आजकल हम स्पेशल उसके लिए लोगों को बुक करते हैं।
1: बिल्कुल सही कहा रश्मि। तो जैसे पुराने समय में और अभी गांव में तो हम फिर भी देख सकते हैं, लेकिन शहरों में तो ऐसा कुछ भी नहीं है। जैसे अगर बच्चे का जन्म होता था तो तब से लेके और कितने सारे फंक्शंस होते थे। अभी एक सिर्फ बर्थडे पार्टी या एक बहुत अच्छी जगह आप इसका आयोजन कर देते हैं और बहुत छोटे से रूप में बस उसका एक फॉर्मेलिटी होती है और एक शो ऑफ की तरह जो रीति रिवाज है वो तो कहीं पीछे छूट गए।
0: बिल्कुल देखिए, और प्रयास करने चाहिए कि ताकि ये जो लोक परंपराएं हैं वो जीवित रहें। और ऐसा नहीं है कि प्रयास नहीं हो रहे हैं, डिजिटल दस्तावेजीकरण और रिकॉर्डिंग के द्वारा हम इसको आगे बढ़ा सकते हैं। मतलब लोक कथाओं, पारंपरिक व्यंजनों और विलुप्त होती बोलियों का ऑडियो और वीडियो हमें आसानी से मिल जाता है जिससे हम उसे सीख सकते हैं। उसके अलावा ऑनलाइन प्रदर्शन भी इन लोक कलाकारों की तरफ से होता ही है। उसके अलावा सरकारी और गैर सरकारी जो पहल है वो भी की जा रही है, जिसमें विभिन्न सरकारी और निजी संस्थान जैसे क्राफ्ट्स काउंसिल ऑफ इंडिया नियमित कार्यशालाएं और प्रदर्शनियां आयोजित कर रहे हैं ताकि कारीगरों को आर्थिक संबल भी मिले और हमारी लोक कलाएं जो है वो जीवित रहें। उसके अलावा हम उदयपुर की बात करें तो हमारा उदयपुर शहर तो हमेशा इन लोक परंपराओं को जीवित करने के लिए प्रयास करता है। जैसे हमारे शिल्पग्राम का मेला है जहां हमें बहुत सारी चीजें देखने को मिलती है।
1: बिल्कुल, हर कलाकार को अपनी प्रतिभा और जो बेहतरी प्रदान हम इस मंच के द्वारा दे सकते हैं कलाकारों को।
0: बिल्कुल, तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि इन लोक परंपराओं को हम जीवित रखें। जहां कहीं भी ऐसे आयोजन होते हैं एक दर्शक के रूप में हम वहां जाकर उन्हें देखें, सीखें और आने वाली पीढ़ी को भी प्रोत्साहित करें कि वो इस तरह की चीजों में इन्वॉल्व हों।
1: क्योंकि रश्मि यही भारतीय संस्कृति की पहचान है और हम सब भारतीयों को मिलकर इसकी रक्षा करनी होगी।

0: जी बिल्कुल रश्मि, ये गाना हमें संदेश दे रहा है कि हमारे देश पधारिए, यानी राजस्थान के किसी भी क्षेत्र में आप आइए, आपको कुछ न कुछ नया अनूठा देखने को ही मिलेगा। अपनी मातृभाषा को अपनाना, स्थानीय हस्तशिल्प और कला को बढ़ावा देना, नई पीढ़ी को अपने प्राचीन इतिहास और नैतिक मूल्यों से परिचित कराना आवश्यक है।
1: बिल्कुल, देखिए आज हम लोक परंपराओं के संरक्षण के उपायों की बात कर रहे हैं, तो स्कूल और महाविद्यालयों में लोक संस्कृति के लिए बढ़ावा दिया जाता है, वहाँ समय समय पर कार्यक्रम भी किए जाते हैं। इसके अलावा लोक कलाकारों को आर्थिक और सामाजिक सहयोग देना हमारी जिम्मेदारी है। लोक कला उत्सवों और सांस्कृतिक मेलों का जो आयोजन किया जाता है, वहां पर जाकर भी आप बहुत सारी चीजों का आनंद भी ले सकते हैं और सीख भी सकते हैं। इसी के साथ लोक गीतों, लोक कथाओं और लोक नाटकों का आप डिजिटल रूप से भी आनंद ले सकते हैं और वहां से सीख भी सकते हैं। और राजस्थान की लोक परंपरा जो है, ये केवल कला नहीं है विद्या, बल्कि सदियों से संचित हमारी संस्कृति स्मृति है। इसे बचाना हम सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है।

0: आकाशवाणी एट 90।
1: ये है कार्यक्रम नमस्कार उदयपुर। कार्यक्रम रहेगा जारी लेकिन इस समय सुबह के 9 बजने को हैं। अब सुनते हैं हिंदी में प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से बस कुछ ही देर में।

0: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, वैश्विक आर्थिक संकट के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था की नींव असाधारण रूप से मजबूत बनी हुई है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भीलवाड़ा के खग 9,42,000 से अधिक किसान जुड़े। समाचारों के साथ मैं सिद्धार्थ जैन, और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि वैश्विक आर्थिक संकट के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था की नींव असाधारण रूप से मजबूत बनी हुई है। उन्होंने कहा कि देश ने वित्त वर्ष 2025-26 में 7.7% की बढ़ोतरी दर्ज की है। श्री मोदी ने दमन में कल शाम लगभग 2,970 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं की एक श्रृंखला का शुभारंभ किया। इस अवसर पर जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है।
1: वर्ष 2025-26 में भारत ने 7.7% की ग्रोथ रेट हासिल की है, और पिछला क्वार्टर जो 31 मार्च को खत्म हुआ उसमें भी भारत की ग्रोथ 7.8% रही है, और ये दुनिया में तेज गति से आगे बढ़ने वाली बड़ी इकोनॉमी है।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने नागरिकों को आश्वासन दिया कि देश गरीबों के लिए व्यापक अवसंरचना विकास और कल्याणकारी योजनाओं को प्राथमिकता देते हुए सुधार की दिशा में आगे बढ़ेगा। प्रधानमंत्री ने ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता पर बल दिया और कहा कि भारत हरित भविष्य की ओर लगातार आगे बढ़ रहा है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा है कि राज्य सरकार ने किसान, पशुपालक और युवाओं की अपेक्षाओं के अनुरूप प्रदेश के विकास का रोडमैप तैयार किया है। वे आज भीलवाड़ा के खारी का लांबा गांव में ग्रामीणों से संवाद कर रहे थे। उन्होंने कहा कि सरकार ने पानी और बिजली की आवश्यकताओं को सर्वोच्च प्राथमिकता पर रखा है। श्री शर्मा ने कहा कि हमारी डबल इंजन की सरकार की विभिन्न योजनाओं का हर व्यक्ति को फायदा मिल रहा है।
2: हमारा केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं पर फोकस है, उसे लेकर के हमारी ग्राम चौपालें लगातार चल रही हैं। अभी गांव वालों के साथ आगे बिजली की, पानी की, खेती की, क्यारी की, यहां और क्या हो सकता है उसके लिए लगातार हम बात कर रहे हैं। गांव की यहाँ पैदावार होती है, उसकी प्रोसेसिंग यूनिट लगेंगी तो मेरे गाँव के नौजवान को यहाँ रोजगार मिलेगा। हम सरकार रोजगार देना चाह रही है, हम प्राइवेट स्तर पर भी देना चाह रहे हैं, और वो निजी अपना कोई कारोबार प्रारंभ करें इसके लिए भी सरकार लगातार काम कर रही है। निश्चित रूप से आज मैं इस खारी का लांबा गांव में हूं, ये बहुत अच्छा गांव है। निश्चित रूप से हमारी सरकार का और डबल इंजन की सरकार का हर व्यक्ति को फायदा मिल रहा है।
0: मुख्यमंत्री ने गांव में मॉर्निंग वॉक और धर्मी तालाब के पास योगासन किया। इससे पहले कल रात उन्होंने ग्राम विकास चौपाल कार्यक्रम के तहत ग्रामीणों से बातचीत कर उनकी समस्याओं को सुना। उन्होंने खारी का लांबा ग्राम पंचायत में नया कृषि पर्यवेक्षक मुख्यालय खोलने और कृषि पर्यवेक्षक का नया पद सृजित करने की घोषणा की। साथ ही विद्यार्थियों की मांग पर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में विज्ञान, जीव विज्ञान और कृषि विज्ञान संकाय खोले जाने का भी आश्वासन दिया।

0: जयपुर में इंडिया फूड बिजनेस एक्सपो लगाया गया है। उपमुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा ने राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में 3 दिन के इस फूड एक्सपो का कल शुभारंभ किया। ये एक्सपो राजस्थान उद्योग व्यापार महासंघ की ओर से लगाया गया है। एक्सपो का उद्देश्य प्रदेश के खाद्य प्रसंस्करण उद्योग से जुड़े उद्योगपतियों, निर्माताओं, डीलरों और डिस्ट्रीब्यूटर्स को एक मंच उपलब्ध कराना है, जिससे व्यवसाय विस्तार के साथ रोजगार के नए अवसरों का सृजन हो सके। उद्घाटन के बाद पत्रकारों से बातचीत में डॉ. बैरवा ने कहा कि राज्य में खाद्य प्रसंस्करण और कृषि आधारित उद्योगों में निवेश की अपार संभावनाएं हैं। राज्य सरकार विभिन्न योजनाओं के माध्यम से फूड इंडस्ट्री, कृषि उत्पादों और के संवर्धन, स्थानीय उद्योगों को बढ़ावा देने और रोजगार सृजन के लिए लगातार प्रयास कर रही है।
1: हमारे व्यापारियों के द्वारा फूड एक्सपो का यहाँ प्रदर्शनी लगाई है, अपने स्टॉल लगाई है और एक छत के नीचे हर प्रकार की ब्रांड, हर प्रकार की चीजों की यहाँ प्रदर्शनी लगाकर निश्चित रूप से व्यापार जगत को एक छत के नीचे लेकर जो ये एक नवाचार किया है, इससे व्यापार बढ़ेगा। इससे हर व्यक्ति, हर ग्राहक और हर व्यापारी एक दूसरे से मिलकर हो सकता है और बहुत बड़ा उद्योग मिल सकता है, व्यापार बढ़ सकता है।
0: ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने अंक सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन जमा करने की आखिरी तारीख बढ़ाकर 7 जून कर दी है। CBSE ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि छात्र अब रविवार मध्य रात्रि तक अपने आवेदन जमा कर सकेंगे। इससे पहले आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 6 जून निर्धारित थी। CBSE ने सभी पात्र छात्रों से बढ़ी हुई समय सीमा का ध्यान रखते हुए निर्धारित अवधि के भीतर आवेदन प्रक्रिया पूरी करने की अपील की है। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने कहा है कि देश भर में अब तक 9,42,000 से अधिक किसान खेत बचाओ अभियान से जुड़ चुके हैं। संतुलित उर्वरक उपयोग को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया यह अभियान अब जन आंदोलन का रूप ले रहा है। मंत्रालय के अनुसार अभियान के तहत अब तक 17,800 से अधिक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं, जिनसे लगभग 7,00,000 किसान लाभान्वित हुए हैं। इसके अलावा 3,700 से अधिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों में 1,50,000 से अधिक प्रतिभागियों को संतुलित उर्वरक उपयोग, मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन और वैज्ञानिक खेती की जानकारी दी गई है। अभियान का उद्देश्य मिट्टी की उर्वरता बनाए रखना, रासायनिक उर्वरकों पर निर्भरता कम करना और टिकाऊ खेती को बढ़ावा देना है। भारत पाक सरहद पर स्थित जैसलमेर जिले में सुरक्षा कारणों से पाकिस्तानी लोकल सिम के उपयोग पर रोक लगा दी गई है। जिला कलेक्टर अनुपमा जोरवाल ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए ये प्रतिबंध लगाया है। उन्होंने कहा कि आदेश की अवहेलना करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
2: इसमें सीमावर्ती क्षेत्र की सेंसिटिविटी को ध्यान में रखते हुए जिला कलेक्टर कार्यालय से प्रतिवर्ष 163 का ये ऑर्डर निकलता है, जिसमें कि ये प्रतिबंध लगाया जाता है, क्योंकि सबसे बड़ी एक चुनौती जो जैसलमेर जिले की सीमा पर हम पाई जाती है वो यही है कि जो पाकिस्तानी सिम है वो यहाँ 3-4 किलोमीटर तक उसका वो फंक्शनल रहता है। तो ये सबसे बड़ा चैलेंज है जो हमने गृह मंत्री महोदय की जानकारी में भी हम लोग लेके आए थे। रूटीन के साथ साथ ये बहुत ही महत्वपूर्ण सा एक हमारी सालाना एक एक्सरसाइज रहती है, जिसके तहत फिर हम लोग पुलिस के द्वारा, प्रशासन के द्वारा इसमें कार्रवाई हुई।
0: राजस्थान विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग ने नवाचारों के लिए आमंत्रण मांगे हैं। विभाग के सचिव डॉ. आरुषि मलिक ने बताया कि इस पहल का मुख्य उद्देश्य स्थानीय समस्याओं के प्रभावी समाधान, आजीविका बढ़ाने, सतत विकास तथा समाज के कल्याण में योगदान देने वाले नवाचारों को पहचान प्रदान करना और उन्हें व्यापक स्तर पर प्रोत्साहित करना है। विभाग ने ऐसे नव प्रवर्तकों, किसानों, विद्यार्थियों, स्टार्टअप, स्वयंसेवी संस्थाओं तथा सामुदायिक संगठनों से अपने नवाचार प्रस्तुत करने को कहा है। इच्छुक प्रतिभागी अपने नवाचार का विस्तृत विवरण विभागीय वेबसाइट पर उपलब्ध आवेदन प्रपत्र के माध्यम से प्रस्तुत कर सकते हैं। और अब मौसम। प्रदेश के मौसम में आए बदलाव से लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली है। अधिकतर स्थानों पर दिन और रात के तापमान में 2 से 5 डिग्री तक की गिरावट दर्ज की गई है। भीलवाड़ा में कल दिन का पारा 8 डिग्री सेल्सियस गिर गया। वहीं जयपुर में 7.2, कोटा में 6

0: 6, अजमेर में 6 और सीकर में 5 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट हुई। ज्यादातर स्थानों पर अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से नीचे बना हुआ है। रात का पारा भी 20 से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच रिकॉर्ड हुआ है। मौसम विभाग के अनुसार इस नए मौसम तंत्र का असर अगले 2 दिन जारी रहने की संभावना है। इस दौरान आंधी चलने और बरसात होने का पूर्वानुमान है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, वैश्विक आर्थिक संकट के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था की नींव असाधारण रूप से मजबूत बनी हुई है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भीलवाड़ा के खारी का लांबा गांव में ग्रामीणों से संवाद किया, कहा राज्य सरकार ने किसान, पशुपालक और युवाओं की अपेक्षाओं के अनुरूप प्रदेश के विकास का रोड मैप तैयार किया है। CBSE ने अंक सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन जमा करने की आखिरी तारीख बढ़ाकर 7 जून की और खेत बचाओ अभियान से देश भर में अब तक 9,42,000 से अधिक किसान जुड़े। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन दोपहर 1 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
1: मीडियम वेव 266.66 मीटर यानी 1125 किलो हर्ट्स और एफएम बैंड 101.9 मेगा हर्ट्स पर ये आकाशवाणी का उदयपुर केंद्र है। सुबह के 9:10 हुए हैं। नमस्कार उदयपुर कार्यक्रम में आप सभी का फिर से स्वागत।

0: लिसनर्स, आप सुन रहे हैं प्रोग्राम नमस्कार उदयपुर। बचपन, रश्मित, ये शब्द सुनते ही वो दौर जहन में आ जाता है जहां हमें अपनी आज़ादी, खेल और मनोरंजन के अलावा और कुछ नहीं अच्छा लगता था, और आज के समय में वो बचपन कहीं खो सा गया है। लिसनर्स, आज हम जिक्र करेंगे मनोरंजन कक्ष में बचपन के मनोरंजन और आज के डिजिटल मनोरंजन के बारे में। आज का समय जो पूरे तरीके से डिजिटल हो चुका है, जहां एक समय में खुले मैदानों में खेलने का आनंद बच्चों को मिलता था, वहीं आज के दौर में स्मार्टफोन, इंटरनेट, वीडियो गेम्स और बहुत स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म और मनोरंजन के मुख्य केंद्र बन गए। और मतलब ऐसा लगता है एक मशीनी सा युग हो गया और बच्चे भी हैं वो हमसे ज़्यादा बस मोबाइल में ही होते हैं।
1: बिल्कुल विद्या, देखिए बचपन का जो मनोरंजन था ना, वो सादगी, अपनत्व और सामूहिकता से भरा होता था, और आज के डिजिटल युग में जो मनोरंजन है वो हमारी उंगलियों के हिसाब से चलता है। अब मनोरंजन अधिक सुविधाजनक, विविधतापूर्ण और त्वरित तो हो चुका है, लेकिन फिर भी बहुत सारी चीज़ों को हम मिस करते हैं। अगर हम सामाजिक जुड़ाव की बात करें तो जो पारंपरिक रूप से जो हम खेल खेला करते थे उसमें दोस्तों, परिवार और पड़ोसियों के साथ सीधे संपर्क होता था और खेल के मैदान, गलियों और घरों के आंगन में खेले जाते। आज के मनोरंजन की बात करें तो जैसा कि आपने बताया कि इंटरनेट और स्मार्टफोन पर होता है, इसमें दुनिया के लोगों से ऑनलाइन जुड़ाव तो होता है लेकिन वास्तविक जीवन में सामाजिक दूरियां बढ़ जाती हैं।
0: और पूरे तरीके से बात करें तो जो बच्चों का डिजिटल होना सही नहीं है, आप अपनों से दूर होते जा रहे हैं और मशीनी, मतलब कहें कि हम कहीं किसी के घर भी जाएंगे रश्मित, देखेंगे तो हर बच्चे के हाथ में, चाहे वो कितना भी छोटा क्यों ना, उसके हाथ में मोबाइल होगा, वो उसी में ही, वो मतलब उसकी जो क्रिएटिविटी है वो उसी में ही होगी।
1: बिल्कुल, आपने देखी क्रिएटिविटी की बात करी तो वाकई में देखिए जो पारंपरिक खेल होते थे ना विद्या, उसमें थोड़े से संसाधन कम होते थे लेकिन सारे बच्चे खुद ही सोचते थे कि कौन से नियम गढ़े जाएं, कौन से साधन होए जाएं, सभी समस्याओं का समाधान वो खुद करते थे। लेकिन आजकल डिजिटल में हमें स्क्रीन पर सब कुछ पहले से ही मिल जाता है, ग्राफिक्स दिखने लग जाते हैं, एनिमेशंस होते हैं, जिससे बच्चों की जो कल्पना शक्ति है उसका उपयोग थोड़ा सा कम हो चुका है, वो क्रिएटिव नहीं हो पाते। इसी के साथ हम थोड़ी सी कोस्ट की बात करें या लागत की बात करें तो पहले के खेल जो होते थे वो मुफ्त और बिना किसी लागत के होते थे, बहुत सारी चीज़ें हमें उसके लिए नहीं चाहिए होती थी। लेकिन आज के जो खेल हैं जो कि डिजिटल हैं, उसके लिए हमें स्मार्टफोन चाहिए, कंप्यूटर चाहिए, इंटरनेट कनेक्शन चाहिए और महंगे उपकरण भी चाहिए।

0: रश्मित प्रोग्राम चल रहा है नमस्कार उदयपुर और आखिरी पड़ाव पर हम आ गए हैं। आज हम जानकारी देंगे टेनिस खेल की प्रमुख स्पर्धाएं और इतिहास के बारे में। आज हम जिस टेनिस खेल को पसंद करते हैं उसके इतिहास के बारे में हम बात करें तो मध्ययुगीन गेंदों के खेलों से लेकर पेशेवर कोर्ट तक यह खेल विकसित होकर एक वैश्विक घटना बन गया है। दुनिया के सबसे लोकप्रिय और ये भी कह सकते हैं कि महंगा खेल टेनिस माना जाता है। इसका आधुनिक स्वरूप 19वीं शताब्दी में इंग्लैंड में विकसित हुआ।
1: बिल्कुल, देखिए आधुनिक टेनिस की जो शुरुआत है विद्या वो 1873 में ब्रिटेन के वॉल्टर क्लैप्टन विंगफील्ड में लॉन टेनिस के रूप में हुई थी और इसके बाद 1877 में विंबलडन चैंपियनशिप का पहला आयोजन हुआ जिसे आधुनिक टेनिस की सबसे बड़ी प्रतियोगिता माना जाता है।

0: और इस खेल का जिक्र करें तो टेनिस में दो खिलाड़ी सिंगल्स या चार खिलाड़ी डबल्स एक नेट के दोनों ओर खेलते हैं। टेनिस की सबसे प्रतिष्ठित प्रतियोगिताएं ग्रैंड स्लैम कहलाती है। इनमें चार प्रमुख टूर्नामेंट शामिल है, जिसमें सबसे पहले ऑस्ट्रेलियन ओपन की बात करें तो टेनिस की दुनिया में इसे हैप्पी स्लैम भी कहा जाता है और इससे पहले घास के मैदान पर खेला जाता था, पर अब इसे हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है। इसकी शुरुआत जनवरी माह से होती है और उसके बाद फ्रेंच ओपन की बात करें तो मई से जून तक ये खेला जाता है, इसे क्ले कोर्ट पर खेला जाता है। और बात करें सबसे पुराने टेनिस टूर्नामेंट की तो वो है विंबलडन चैंपियनशिप्स, जो जून से जुलाई में खेला जाता है और इसके बाद आखिर में यूएस ओपन खेला जाता है। और इसके अलावा पुरुष टेनिस में एटीपी फाइनल्स और महिला टेनिस में डब्ल्यूटीए फाइनल्स काफी इंपॉर्टेंट होते हैं।
1: बिल्कुल, देखिए आपने फ्रेंच ओपन की बात की तो जून का माह चल ही रहा है तो 24 मई से शुरू हो चुका है हमारे देश में भी फ्रेंच ओपन 2026 और आज है महिला एकल फाइनल के तहत मीरा एंड्रीवा 44 का से भिड़ेंगी और ये दोनों खिलाड़ियों का पहला ग्रैंड स्लैम फाइनल है, इसीलिए इस बार महिला वर्ग में नया चैंपियन मिलने वाला है। वहीं दूसरी ओर कल की बात करें यानी 7 जून की तो पुरुष एकल फाइनल का ये मुकाबला होने वाला है फ्रेंच ओपन के तहत, जिसमें अलेक्जेंडर ज्वेरेव और फ्लेवियो कोबोली का एक दूसरे से सामना होगा। ज्वेरेव अपने पहले ग्रैंड स्लैम खिताब की तलाश में हैं जबकि कोबोली अपने करियर का पहला ग्रैंड स्लैम फाइनल खेल रहे हैं। तो हमारे श्रोता भी अगर टेनिस के शौकीन हैं तो वो ज़रूर इस मैच का आनंद ले सकते हैं।
0: और रश्मित, प्रोग्राम से हमारे चलने का वक्त हो गया है तो आज के नमस्कार उदयपुर से लें विदा। आज के इस प्रोग्राम में मैं थी आपकी दोस्त विद्या और मेरे साथ
1: और मैं थी रश्मित, तो दीजिएगा इजाज़त। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम नमस्कार उदयपुर। ये आकाशवाणी का उदयपुर केंद्र है। सुबह के 9:30 हुए हैं। आइए अब सुने सुगम संगीत, पहली गजल जगजीत सिंह की आवाज में।

ये गजल थी जगजीत सिंह की आवाज में। सुगम संगीत का आनंद आप ले रहे हैं आकाशवाणी के उदयपुर केंद्र से। अगली गजल जगजीत सिंह की आवाज में।

नंदास की गई इस गजल के साथ ही सुगम संगीत बस यहीं तक। हम आकाशवाणी के उदयपुर केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 266.66 मीटर यानी 1125 किलो हर्ट्स पर। सुबह के 10 बजे हैं। आइए अब सुने शीर्षक गीत कार्यक्रम, जिसमें आज हम आपको सुनवा रहे हैं जिंदगी शीर्षक पर कुछ नगमे। पहला गीत फिल्म आंधी से, आवाज़ें लता मंगेशकर और किशोर कुमार की।

0: सुनो आरती, ये जो फूलों की बेलें नजर आती हैं ना, दरअसल ये बेलें नहीं है, अरबी में आयतें लिखी हैं। इसे दिन के वक्त देखना चाहिए, बिल्कुल साफ नजर आती है। दिन के वक्त ये सारा पानी से भरा रहता है। दिन के वक्त जब ये फुहारे,
1: क्यों कर रहे हो? कहां आ पाऊंगी मैं दिन में?
0: ये जो चांद है ना, इसे रात में देखना, ये दिन में नहीं निकलता।
1: ये तो रोज निकलता होगा।
0: हाँ, लेकिन बीच में अमावस आ जाती है। वैसे तो अमावस 15 दिन की होती है, लेकिन इस बार बहुत लंबी थी।
1: 9 बरस लंबी थी ना।

0: तीनों कॉलेज में।
1: डोंट वरी।
0: फीस तो देखो।
2: क्या हाल है, क्या हुआ?
1: फीस की टेंशन।
2: राहुल का बैंक अकाउंट तो है ही,
3: रास्ता क्लियर। बैंक से जरूरत भर के हिसाब से स्टूडेंट एजुकेशन लोन इजीली मिलेगा, और उसमें भी 4 लाख रुपए तक, नो कोलैटरल।
2: वो कहाँ है? मिठाई।
4: RBI कहता है
5: करो से ही शुरुआत, बनो फाइनेंशियली स्मार्ट।
6: जल्दी टिफिन पैक करो राजू, मोबाइल छोड़ो।
7: अरे दीदी वो बैंक का नंबर चाहिए, रिफंड ही नहीं आया। मिल गया, अब भी कॉल करता हूँ दीदी।
6: बिना नंबर जांचे अक्सर जालसाज बैंक की नकली वेबसाइट और फर्जी नंबर से पैसों की धोखाधड़ी करते हैं।
7: तो फिर सही नंबर,
6: बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट या तो कार्ड।
7: आपने तो बचा लिया दीदी।
6: काम से नहीं।

0: RBI कहता है,
1: सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव।
2: शीर्षक गीत, ये प्रोग्राम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के उदयपुर केंद्र से। हम आपको सुनवा रहे हैं जिंदगी शीर्षक पर कुछ चुनिंदा नगमे। अगली आवाज किशोर कुमार और लता मंगेशकर की, फिल्म का नाम काला पत्थर।

ये गीत था फिल्म बड़े दिलवाला से, आवाज़ें थी किशोर कुमार और लता मंगेशकर की। शीर्षक गीत की अगली पेशकश तलत अजीज की आवाज़ में, फिल्म का नाम उमराव जान।

शीर्षक गीत कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के उदयपुर केंद्र से। अगला नगमा दूरियां फिल्म से, आवाजें भूपिंदर और अनुराधा पौडवाल की।

श्रोता, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम शीर्षक गीत। ये आकाशवाणी का उदयपुर केंद्र है। मीडियम वेव 266.6 मीटर यानी 1125 किलोहर्ट्ज पर ही आकाशवाणी का उदयपुर केंद्र है। इस समय सवेरे के 11 बज चुके हैं। आइए आनंद लेते हैं शास्त्रीय संगीत का।

0: दो से चलने वाली सुपर फास्ट एक्सप्रेस के यात्रियों
1: आई एम हियर
2: दीप तुम्हें नहीं इसे मोबाइल चार्ज करना
1: दिमाग चार्ज कर अपना
3: ऐसे पब्लिक पोर्ट से फोन चार्ज किया तो पर्सनल डेटा होगा पब्लिक
1: देखा
2: पापा रुको मैं पे करता हूँ नो सिग्नल
3: अब क्या करोगे
2: फ्री वाईफाई है ना
1: बुद्धू सुधर जा
3: पेमेंट्स के लिए नो ओपन वाईफाई
2: यानी फ्रॉड को करो बाय बाय
3: RBI कहता है
4: करो सही शुरुआत बनो फाइनेंशियली स्मार्ट
5: खो गया इंतजाम
6: किसका गुड्डी की फीस का दिखा 20,000 का लोन तुरंत पता है कौन दे रहा है ब्याज कितना है लोन विनियमित संस्थानों से ही ले और कर्ज उतना जितनी जरूरत वो भी जांच कर हो गया इंतजाम पगार एडवांस में भेजिए
7: RBI कहता है
4: सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव

0: जनगणना 2027 को सफल बनाना हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। जब अधिकृत प्रगणक आपके घर आए उनका परिचय पत्र और QR कोड देखकर पुष्टि जरूर करें।
1: प्रगणक डिजिटल माध्यम से जानकारी संग्रह करेंगे। आपकी सही जानकारी से भविष्य की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद होती है।
0: आपकी सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।
2: शुदा अभी तक आप सुन रहे थे शास्त्रीय संगीत। ये आकाशवाणी का उदयपुर केंद्र है। इस समय सवेरे के 11:30 हो चुके हैं। आइए आपको सुनवाते हैं सुगम संगीत कार्यक्रम के अंतर्गत जन गजलें।

0: तीनों कॉलेज में।
1: डोंट वरी,
0: फीस तो देखो।
2: क्या हाल है, क्या हुआ?
1: फीस की टेंशन,
2: राहुल का बैंक अकाउंट तो है ही।
3: रास्ता क्लियर, बैंक से जरूरत भर के हिसाब से स्टूडेंट एजुकेशन लोन इजीली मिलेगा और उसमें भी 4 लाख रुपए तक, नो कोलैटरल।
2: वो कहाँ है?
3: मिठाई।
4: RBI कहता है
5: करो से ही शुरुआत, बनो फाइनेंशियली स्मार्ट।
6: जल्दी टिफिन पैक करो राजू, मोबाइल छोड़ो।
7: अरे दीदी वो बैंक का नंबर चाहिए, रिफंड ही नहीं आया है। मिल गया, अब भी कॉल करता हूँ दीदी।
6: बिना नंबर जांचे अक्सर जालसाज बैंक की नकली वेबसाइट और फर्जी नंबर से पैसों की धोखाधड़ी करते हैं।
7: तो फिर सही नंबर,
6: बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट या तो कार्ड।
7: आपने तो बचा लिया दीदी।
6: काम से नहीं।
8: RBI कहता है
9: सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव।
10: शुद्ध और सुगम संगीत कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी उदयपुर से, तो आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत।

0: जनगणना 2027 को सफल बनाना हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। जब अधिकृत प्रगणक आपके घर आए, उनका परिचय पत्र और QR कोड देखकर पुष्टि जरूर करें।
1: प्रगणक डिजिटल माध्यम से जानकारी संग्रह करेंगे। आपकी सही जानकारी से भविष्य की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद होती है।
0: आपकी सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।

श्रोताओं, सुगम संगीत कार्यक्रम बस यहीं तक। ये आकाशवाणी का उदयपुर केंद्र है। आकाशवाणी के इस सुरमय मंच पर आपका हार्दिक स्वागत है और मैं हूँ मोनिका और आपका प्रिय कार्यक्रम लेकर हाजिर हूँ फिल्म संगीत। कहते हैं कि संगीत वह जादू है जो दिलों को जोड़ता है, यादों को ताजा करता है, जीवन के हर रंग को अपने मधुर धुनों में समेट लेता है। हिंदी सिनेमा में गीतों में वीडियो से हमारे सुख दुख प्रेम विरह उत्सव और संवेदनाओं को स्वर दिया है। तो आइए अगले कुछ समय तक हम सब मिलकर फिल्मी संगीत के इस खूबसूरत संसार की सैर करेंगे और जहां हर गीत एक कहानी है और हर धुन एक एहसास। शुरुआत करते हैं आज के पहले गीत से। यह गीत अपने मधुर बोलों और मनमोहक संगीत के कारण श्रोताओं के दिलों में विशेष स्थान।

श्रोता कहते हैं कि भारतीय संस्कृति में चूड़ियों की खनक केवल एक आभूषण की आवाज नहीं होती थी, बल्कि यह प्रेम, उत्साह और जीवन की मधुर भावनाओं का प्रतीक भी मानी जाती है। जब दिल में किसी खास के लिए भावनाएं जगती हैं, तो हर छोटी सी बात भी एक मधुर संगीत लगने लगती है। अगला गीत कुछ ही ऐसे ही प्यार के एहसासों से अपने सुरों में समेटे हुए लेकर हाजिर हूँ आपका लिए। अगला गीत आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत।

श्रोता कहते हैं कि प्यार की दुनिया में मुलाकातें अक्सर यादगार बन जाती हैं। कभी एक नज़र, कभी एक मुस्कान, कभी कुछ अनकहे शब्द दिल में ऐसी जगह बना लेते हैं कि उनकी याद लंबे समय तक साथ रहती है। प्रेम की यही कोमल अनुभूति संगीत में ढलकर और भी खूबसूरत हो जाती है। अगला गीत ऐसी ही मीठी भावनाओं का एहसास कराता है। इसकी मधुर धुन और भावपूर्ण शब्द दिल को छू लेते हैं और सुनने वालों को प्रेम के सुहाने सफर पर ले जाते हैं।

0: श्रोता कहते हैं कि आंखें अक्सर जो बात कह जाती हैं, जिन्हें शब्दों में बयां करना आसान नहीं होता। प्रेम की शुरुआत कई बार एक नज़र से होती है, फिर नैनों की भाषा दिल के बीच एक अनकहा रिश्ता बना देती है। हिंदी फिल्म संगीत में कुछ अनेक गीत ऐसे हैं जिन्होंने आंखों की इसी खामोश बातचीत को बड़े सुंदर ढंग से अभिव्यक्त किया है। अगला गीत प्रेम के इसी मधुर एहसास को सुरों में पिरोता है। इसी कोमल धुन और भावपूर्ण बोल सीधे दिल तक पहुंचते हैं। नैनों की इस प्यारी बातचीत और प्रेम की मधुर अनुभूति से सजे इस गीत का आनंद लेते हैं।
1: सा रे गा मा, तुम भी गाओ।

श्रोता कहते हैं कि प्रेम जब दिल में अपनी जगह बना लेता है तो जीवन का हर रंग और भी खूबसूरत लगने लगता है। किसी के स्नेह, विश्वास और साथ का एहसास मन को एक नई ऊर्जा भर देता है। ऐसे ही प्रेम की गहराई और उसके मधुर एहसास को व्यक्त करता है यह हमारा अगला गीत। इस गीत में प्यार की मासूमियत, अपनापन और दिल की धड़कनों में बसे किसी खास शख्स की खूबसूरत तस्वीर उभरती है। मधुर संगीत और भावपूर्ण शब्द ऐसे सुनने वालों के दिल के करीब ले जाते हैं। प्यार की मिठास और भावनाओं की गर्माहट से सजे इस गीत का आइए आनंद लेते हैं।

श्रोता कहते हैं कि जीवन की भाग दौड़ में जब दो दिल एक दूसरे के साथ एक साथ रहना चाहते हैं तो हर दूरी छोटी लगने लगती है। मिलन की यही भावना प्रेम और को और भी गहरा बना देती है। जब दिलों में अपनापन हो तो साथ चलने में सपने भी सुहाने लगते हैं। अगला गीत इसी साथ निभाने की खूबसूरत भावनाओं को बड़े मधुर अंदाज में प्रस्तुत करता है। इसकी दिलकश धुन और भावपूर्ण बोल ऐसे सदाबहार गीतों की श्रेणी में विशेष स्थान दिलाते हैं। तो आइए सुनते हैं प्रेम गीत फिल्म का ये गीत और प्रेम की मधुर अनुभूति से सजे इस गीत का आनंद लेते हैं और खो जाते हैं इस सुरमई दुनिया में

0: श्रोता, आप सुन रहे हैं आपका अपना पसंदीदा कार्यक्रम फिल्म संगीत। कहते हैं कि कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जिसमें शब्द कम और एहसास ज्यादा होते हैं। जब किसी की खुशी हमारी दुआ बन जाए तो उसकी याद हर पल साथ रहे, तब दिल की धड़कनें भी उसी का नाम गुनगुनाने लगती हैं। ऐसी ही खूबसूरत जज्बातों को बयां करता है ये अगला गीत। यह गीत प्यार, समर्पण और दिल की गहराइयों को बेहद मधुर अंदाज में पेश करता है। तो अपने इस हर काम को छोड़कर थोड़ी देर के लिए रोकिए और इस सुरीले नगमे का आनंद लीजिए। तो खो जाइए इनकी मीठी धुनों में। पेश है आपके लिए ये सुरीला गीत।
1: बदलो बदलो, आदत बदलो।
2: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
1: बदलो बदलो, आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो RBI के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। RBI कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

श्वेता कहते हैं कि प्यार की शुरुआत अक्सर शब्दों से नहीं बल्कि नजरों से होती है। एक छोटी सी मुलाकात, एक प्यारी सी मुस्कान, दो नैनों का मिलना, बस यहीं से शुरू हो जाती है एक खूबसूरत कहानी। आज का अगला गीत भी इसी मीठे एहसास को बेहद खूबसूरती से बयां करता है। इसकी मधुर धुन और दिल को छूने वाले बोल हर श्रोताओं के दिल में प्यार की एक नई लहर जगा देते हैं। तो तैयार हो जाइए सुरीले सफर के लिए। पेश है खूबसूरत सा गीत और सुनिए, महसूस कीजिए इस प्यारे से नगमे का आनंद लीजिए।

दोस्तों इसी गीत के साथ ही हमारा आज का फिल्म संगीत कार्यक्रम बस यहीं समाप्त होता है। उम्मीद है कि आज पेश किए गए सब गीतों ने आपके दिलों को छुआ होगा और आपके दिल को सुरों से मिठास में पिरोया होगा। आपका साथ और प्यार ही हमारी सबसे बड़ी प्रेरणा है। इसी स्नेह और अपनापन के साथ अब मुझे दीजिए इजाज़त। फिर मुलाकात होगी एक नए कार्यक्रम में नए गीतों और नई यादों के साथ। तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए। मुस्कुराते रहिए, सुनते रहिए हमारा रेडियो।

श्रोता फिल्म संगीत कार्यक्रम को हम आगे भी जारी रखेंगे। ये आकाशवाणी का उदयपुर केंद्र है। दोपहर के 1 बजने को ही कुछ ही पलों में हमारे जयपुर अजमेर केंद्र से हिंदी में प्रादेशिक समाचार होंगे। कृपया समाचारों की प्रतीक्षा कीजिए।

आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ मैं सिद्धार्थ जैन। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आज भीलवाड़ा जिले के खारी का लांबा गांव में ग्रामीणों से संवाद किया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने किसान, पशुपालक और युवाओं की अपेक्षाओं के अनुरूप प्रदेश के

0: सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन जमा करने की आखिरी तारीख बढ़ाकर 7 जून कर दी है। सीबीएसई ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि छात्र अब रविवार मध्यरात्रि तक अपने आवेदन जमा कर सकेंगे। इससे पहले आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 6 जून निर्धारित थी। सीबीएसई ने सभी पात्र छात्रों से बढ़ी हुई समय सीमा का ध्यान रखते हुए निर्धारित अवधि के भीतर आवेदन प्रक्रिया पूरी करने की अपील की है। सवाई माधोपुर के रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान से एक बार फिर खुशखबरी मिली है। बाघिन T-124 रिद्धि नन्हे शावकों के साथ नजर आई है। शावक देखे जाने के बाद वन्य जीव प्रेमियों और पर्यटन व्यवसायियों में खुशी की लहर है। वहीं वन विभाग ने एहतियात के तौर पर क्षेत्र में निगरानी बढ़ा दी है।
1: रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान से एक बार फिर खुशखबरी मिली है। पर्यटकों को नालघाटी वन क्षेत्र में बाघिन T-124 रिद्धि दो नन्हे शावकों के साथ नजर आई है। पर्यटकों के अनुसार शावक एक से दो सप्ताह के हैं तथा इनकी संख्या अधिक भी हो सकती है। 2019 में जन्मी बाघिन रिद्धि प्रसिद्ध बाघिन मछली की वंशज है तथा एरोहेड की बेटी है जो तीसरी बार माँ बनी है। शावक देखे जाने की खबर के बाद वन्य जीव प्रेमियों और पर्यटन व्यवसायियों में हर्ष की लहर है। वहीं वन विभाग की ओर से क्षेत्र में सघन निगरानी और गश्त के दिए गए हैं। सतीश वर्मा, आकाशवाणी समाचार, सवाई माधोपुर।
0: पद्म पुरस्कार 2027 के नामांकन के लिए ऑनलाइन आवेदन अगले महीने की 31 तारीख तक राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल पर भेजे जा सकते हैं। गृह मंत्रालय ने कहा है कि पद्म पुरस्कारों के लिए आवेदन और अनुशंसाएं भेजने की प्रक्रिया 15 मार्च से शुरू की गई है। देश की सर्वोच्च नागरिक पुरस्कारों की श्रेणी में आने वाले पद्म पुरस्कारों में पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री शामिल हैं। इस बीच राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू वर्ष 2026 के दूसरे नागरिक अलंकरण समारोह में 65 विभूतियों को पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। ये समारोह राष्ट्रपति भवन में 23 जून को आयोजित किया जाएगा। और अब मौसम। राज्य में आंधी बारिश की गतिविधियां जारी रहने के आसार हैं। मौसम विभाग ने प्रदेश के अधिकांश जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। पिछले 24 घंटों के दौरान राज्य में कहीं कहीं हल्की बरसात दर्ज की गई। प्री मानसून गतिविधियों के चलते करौली, दौसा, डूंगरपुर, नागौर और जयपुर सहित कई शहरों का अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस से नीचे पहुंच गया। सबसे अधिक 14 मिलीमीटर पानी बीकानेर के डूंगरगढ़ और झालावाड़ के डग में बरसा। 42.2 डिग्री सेल्सियस तापमान के साथ फलौदी सबसे गर्म स्थान रहा। इससे लोगों को भीषण गर्मी से बड़ी राहत मिली है। हालांकि विभाग ने 8 जून से फिर से तापमान में बढ़ोतरी की आशंका व्यक्त की है। इस बीच अगले 24 घंटे तक पूर्वी और दक्षिणी राजस्थान के कई हिस्सों में आंधी और बारिश की गतिविधियां जारी रह सकती हैं। भारत आज पुरुष अंडर 18 एशिया कप 2026 हॉकी टूर्नामेंट में फाइनल में मेजबान जापान से खेलेगा। जापान के काका मेगाराहा में यह मुकाबला भारतीय समयानुसार दोपहर 3:30 बजे शुरू होगा। इससे पहले कल भारत ने सेमीफाइनल में पाकिस्तान को 5-3 से और जापान ने मलेशिया को 8-1 से हराकर फाइनल में जगह बनाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 28 जून को आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। ये इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 135वीं कड़ी होगी। इसके लिए श्रोता अपने सुझाव टोल फ्री नंबर 1800117800 पर भेज सकते हैं। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन शाम 6:30 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
2: ध्वनि तरंगों के तार पर आप हैं आकाशवाणी उदयपुर के संगीत। समय दोपहर के 1:05 हो चुके हैं। अब से कुछ ही पलों में महिलाएं सुनेंगी अपना चहेता कार्यक्रम सहलियारी बाड़ी।

0: तो ममता जी, अपनी बेना ने मनभावन राजस्थानी गीत हुणायूं सा, लारे लारे संदेश भी हुणाया, कार्यक्रम ने आगे बढ़ावा और बेना ने जानकारी करावा कि अपनी जो बेना है, अपनों देखो आजकल स्मार्टफोन तो अपनी बेना रखे ही है, और हर एक बहन में या भी चाह वे कि हर दिन नवी नवी चीज़ा ही के, तो ऑनलाइन रा जो प्रशिक्षण रा जो प्लेटफॉर्म है वे कसा कसा बेना रे वास्ते उपयोगी है, वंडी जानकारी बेना ने करा कि आज रो जो यो डिजिटल युग है अन मैंने बेना सशक्तिकरण और आत्मनिर्भरता में ने नरे हारा ऑनलाइन जो प्रशिक्षण प्लेटफॉर्म है ये भी बहुत बड़ी भूमिका निभाई रहा है। इंटरनेट और स्मार्टफोन की यह जो बढ़ती उपलब्धता है अन मैंने बेना रे वास्ते शिक्षा और कौशल विकास रा नया नया द्वार खोल देता है।
1: बिल्कुल सा, आज जो घर बैठी जो महिला है वनारे वाते विभिन्न तरीका रा ऑनलाइन जो प्लेटफॉर्म है वनारे माध्यमों आप देखा कि बेना नई नई तकनीका हिकी रही, नया नया कौशल हिकी रही है। और आप भारत सरकार द्वारा संचालित अगर आप आना ऑनलाइन प्लेटफॉर्म री बात करा तो देखो अना में स्वयं, दीक्षा, स्किल इंडिया, डिजिटल हब, ई स्किल इंडिया, नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन NSDC या पचे NAPTEL जैसा प्लेटफॉर्म निःशुल्क या पचे कम लागत पे गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण अपनी महिला ने उपलब्ध कराई रहा है सा।
0: अंडे अलावा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी लिंक्डइन है, गूगल है, नरे हरा ऐसा जो प्लेटफॉर्म है वे बेनारे वास्ते डिजिटल मार्केटिंग, डेटा एनालिटिक्स, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी और उद्यमिता जैसा आधुनिक विषय में ने भी प्रशिक्षण प्रदान कर दिया है सर।
1: और अपनी महिला रवाते विशेष रूप डिजाइन किया प्लेटफॉर्म री बात करा आपा तो बना मैं आपा देखा महिला हार्ट वेग्यो है, वुमन एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म वेग्यो है, अणि तरीका नरे विभिन्न स्वयं सहायता समूह है और गैर सरकारी संस्था द्वारा संचालित जो प्रशिक्षण पोर्टल है वे भी है। और अना प्लेटफॉर्मों अपनी जो महिला बहना है वे स्वरोजगार, वित्तीय प्रबंधन, हस्तशिल्प, सिलाई कढ़ाई, खाद्य प्रसंस्करण और लघु उद्योग जैसा संबंधित प्रशिक्षण भी प्राप्त करी है सा।
0: ऑनलाइन प्रशिक्षण रो सब बड़ो लाभ यो है कि बेना जो है अपनी सुविधा और समय रे अनुसार सीख सके सा, चाहे वे गृहिणिया वो, चाहे छात्र वो, चाहे कामकाजी बेना वो अपनी दैनिक जिम्मेदारियां रे लारे लारे नया नया कौशल विकसित कर सके है, अणु वणारी रोजगार क्षमता भी बढ़े है और वे आर्थिक रूप अधिक सशक्त हो सके सा।
1: बिल्कुल सा। और भाई सा देखो आज आप देखा कि नरी हरी जो महिला है वे ऑनलाइन प्रशिक्षण प्राप्त करी ने डिजिटल उद्यमी बनी रही है, फ्रीलांस रो काम करी रही है, ऑनलाइन शिक्षा भी दे रही है, कंटेंट क्रिएटर भी बनी रही है और सफल व्यवसायी बनी ने वे ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म रे माध्यमों अपना जे उत्पाद है और वणा ने सेवा देश विदेश में ग्राहका तक भी पहुंचाई रही है सा।
0: अबाणु भी डिजिटल जो साक्षरता है, इंटरनेट की उपलब्धता है, तकनीकी संसाधन है वे बहुत ही ज़्यादा बढ़ी रहा है और अपने जो बेना है वे डिजिटल शिक्षा अपनावरे वास्ते वणाने अपने प्रोत्साहित भी करना छावे और आवश्यक तकनीकी सहायता भी वणाने उपलब्ध करानी छावे से।
1: बिल्कुल सा। और ऑनलाइन ट्रेनिंग प्लेटफॉर्म जो महिला रवाते केवल सीखवा रो माध्यम नहीं है बल्कि आत्मनिर्भरता, आत्मविश्वास और आर्थिक सशक्तिकरण रो मजबूत आधार भी है। यदि अधिक व अधिक जो महिला बेना है वे अना प्लेटफॉर्म रो लाभ उठाएगा तो वे अपने परिवार, समाज और राष्ट्र विकास में अधिक प्रभावी योगदान दे सकेगा सा।
0: तो या तो बेना ने आपा जानकारी कराई कि बेना रे वास्ते कसा कसा ऑनलाइन ट्रेनिंग रा जो प्लेटफॉर्म है वे और बेना ने किस तरह लाभ लेना छावे, अबे पाछा अपने बेना ने मनोरंजन की दुनिया में ले चला और होनावा प्यारो सो राजस्थानी गीत।

0: पर्यावरण और अणु आत्मनिर्भरता रो माध्यम अपने किस्तर बन सके सा। तो देखो आपनो देश एक कृषि प्रधान देश है और जटे बागवानी क्षेत्र तेजियों विकसित वीरो है। पौधशाला वो स्थान है जटे आप विभिन्न प्रकार का पौधा फलदार वृक्ष फूल और सब्जियाँ और औषधि एवं सजावटी पौधा रो उत्पादन करीने वनारो संवर्धन कियो जाई सके सा।
1: और यो जो वर्तमान समय है अणमें बढ़ती लगी पर्यावरण जागरूकता वृक्षारोपण अभियान और घर और कार्यालय में बागवानी री जो बढ़ती रुचि के कारण पौधशाला व्यवसाय जो है वो लाभकारी और रोजगार देवा वालों एक व्यवसाय बन गयो है। अणमें फल व्या साग सब्जियां भी पुष्प उत्पादन रे वास्ते गुणवत्तापूर्ण पोष सामग्री री आवश्यकता वेवे है। झंडी पूर्ति पौधशाला करे है और हौ गुणवत्ता रा जो रूखड़ा वेवे वे किसान री उत्पादकता बढ़ावाने और बेहतर उत्पादन प्राप्त करवा में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभावे सा।
0: बिल्कुल सा। और पौधशाला व्यवसाय की बात करा भाई सा तो ये मुख्य रूप पांच प्रकार रावे। जेणी में फलदार पौधा की बात करा तो ये पौधशाला में आपा देखा आम अमरूद अनार नींबू ये सब वेवे। सजावटी पौधा में आपा देखा गुलाब पाम क्रोटन और अन्य शोभाकार जे पौधा वेवे है। और सब्जी की पौधशाला में आपा देखा आणी में टमाटर मिर्च बैंगन ये सब पौध तैयार करना वेवे। औषधि पौधा में तुलसी एलोवेरा अश्वगंधा और लेमन ग्रास जैसा पौधा वेवे है सा।
1: अंडे लारे लारे वन पौधशाला भी वेवे है। जन्मे ने छायादार और वानिकी वृक्षारे पौध तैयार वेवे है और पौधशाला स्थापित करवारे वास्ते उपयुक्त भूमि वेणी छावे सिंचाई री सुविधा वेवे गुणवत्तापूर्ण बीज छावे है पॉलीबैग है जैविक खाद है और उचित देखभाल री आवश्यकता वेवे है। आधुनिक नर्सरिया में अगर आप बात करा तो देखा हाँ कि पॉली हाउस है ग्रीन हाउस है मिस्ट चैम्बर है ड्रिप सिंचाई है ऐसी तकनीका रो उपयोग भी कियो जावे है जणु रूखड़ा री गुणवत्ता और उत्पादन में ने वृद्धि।
0: और आज आपा देखा कि पौधशाला रो जो व्यवसाय है वने सीखूं पहली आपने तुलना रे वाते बहुत ही आसान वेग्यो है क्योंकि जो व्यक्ति एनी क्षेत्र में कार्य करनो चाहिरो वने आपने जिला रा कृषि विज्ञान केंद्र कृषि विश्वविद्यालय और बागवानी विभाग या पछे ICRO प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लेने पौध रो उत्पादन ग्राफ्टिंग बडिंग एयर लेयरिंग और नर्सरी प्रबंधन री तकनीका वे सीखी सके सा।
1: राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड भी नर्सरी विकास गुणवत्तापूर्ण रोपण सामग्री और मान्यता प्राप्त नर्सरी जो है वनारे संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी उपलब्ध करावे है। अंडे अलावा राज्य सरकार भी अपने उद्यान विभाग और वन विभाग की जो नर्सरिया है वनु प्रमाणित और गुणवत्तापूर्ण पौधा भी प्राप्त किया जा सके।
0: बिल्कुल सा। और महिला युवा और स्वयं सहायता जो समूह है वनारे वाते यो व्यवसाय विशेष रूप लाभदायक है क्योंकि अन्य कम पूंजी और सीमित भूमि में भी प्रारंभ किया जा सके। अनेक महिला आज नर्सरी व्यवसाय के माध्यम आत्मनिर्भर बनी रही है और अपने परिवार की आय में महत्वपूर्ण योगदान दे रही है सा।
1: तो या तो आप अपनी बहना ने जानकारी करें कि पौधशाला व्यवसाय किस तरह कर सके अपनी बहना किस तरह रोजगार ले सके किस तरह आत्मनिर्भर बन सके। अब आप कार्यक्रम में और भी प्यारो सो राजस्थानी गीत अपनी बहना ने हुनावा सा।
0: हाँ सा।

0: तो ममता भाईसा आपणी बेना ने प्यारो सो राजस्थानी गीत हुणायो सा और आपा अबे बेना रे वास्ते हर दिन नवी नवी योजना लेन आवा सा। अणी योजना लावारो उद्देश्य भी यो वेवे कि बेना ने अणी योजना री जानकारी वेवे और बेना ज़्यादा ज़्यादा लाभ लेवे। तो आज आपणी बेना रे वास्ते लेन आया हाँ प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। अणी री जो शुरुआत है या आपणे 2015 में सूक्ष्म और लघु उद्यमा ने वित्तीय सहायता प्रदान करवा रे उद्देश्य दीदी ही और अणी योजना रो जो मुख्य उद्देश्य यो है कि जतरा भी छोटा व्यवसायिक दुकानदार कारीगर महिला युवा महिला व्या युवा भी और किसान स्वरोजगार शुरू करवा रहा इच्छुक लोगों ने बिना अधिक आपने जो औपचारिकता है वणा ने ऋण उपलब्ध कराना है सा।
1: बिल्कुल सा। और यह योजना असा लोगों की सहायता करे जो अपना छोटो व्यवसाय शुरू करना चाहिए है और अपना वर्तमान व्यवसाय विस्तार करना चाहिए है सा। अणी मैं मुद्रा ऋण री श्रेणिया की अगर बात करा तो अन्य अंतर्गत तीन श्रेणी आवे है सा। एक है शिशु श्रेणी जेणी में 50,000 तक रो ऋण और नया व्यवसाय ने शुरू करवा वाला वाते मिले है सा। दूसरो है किशोर ऋण, यो आप देखा 50,000 5,00,000 तक ऋण उपलब्ध करावे चौणियों अपने व्यवसाय ने आप बढ़ाई सका। तीसरो आवे है तरुण ऋण, जो 5,00,000-10,00,000 तक रो ऋण अणी में स्थापित व्यवसाय जो है वन्ने विस्तार कर सका सा।
0: मुद्रा ऋण जो है वे कसा कसा कार्य वास्ते लियो जाई सके अणी में किराणा री दुकान है ब्यूटी पार्लर है सिलाई बुटीक डेरी रे व्यवसाय रे वास्ते नर्सरी रे व्यवसाय रे वास्ते मोबाइल रिपेयरिंग खाद्य प्रसंस्करण इकाई ई रिक्शा और परिवहन सा व्यवसाय रे वास्ते हस्तशिल्प और कुटीर उद्योग रे वास्ते और ऑनलाइन व्यवसाय और सेवा गतिविधियां रे वास्ते ऋण दियो जा सके।
1: बिल्कुल सा। अब यो भी बतावा कि मुद्रा ऋण आप प्राप्त किस तरह कर सका सा, तो अन्य बातें अपने निकटतम जो बैंक शाखा है वटे जानो, ग्रामीण बैंक है, सहकारी बैंक है, लघु वित्त बैंक है या पीछे NBFC अपने संपर्क करना है। अणी में अपने मुद्रा ऋण रो आवेदन प्राप्त करी सका। आवश्यक दस्तावेज टापा जमा करी ने व्यवसाय री जानकारी और ऋण री आवश्यकता बतानी वेवे और बैंक रे द्वारा आवेदन री जांच रे बाद में ऋण स्वीकृत कियो जाई सके सा।
0: आवश्यक दस्तावेज जटे बात करा मुद्रा ऋण रे वास्ते तो अणमी ने आधार कार्ड पेन कार्ड वोटर आईडी निवास प्रमाण पत्र पासपोर्ट आकार फोटो बैंक खाता रो विवरण व्यवसाय रो विवरण व्यवसाय स्थल रो प्रमाण और GST पंजीकरण या

0: जे व्यापार लाइसेंस जो है अंडे मुद्रा लोन योजना रे वास्ते आवश्यक दस्तावेज हमने आवे है सा।
1: और मुद्रा योजना आपने आम जनता ने कई लाभ मिले वने बारे में जानकारी करावा तो अणियो कई वे स्वरोजगार अवसर बढ़े है, छोटा जे व्यवसायी है वणा ने वित्तीय सहायता मिले, बेरोजगार युवा ने अपनो व्यवसाय शुरू वेणियो कर सके सा, महिला ने आर्थिक रूप में आत्मनिर्भर बनावा अवसर मिले है, ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार सृजन वेवे है और साहूकारों महंगो ऋण व्यवहार वाते आवश्यकता कम वेवे, छोटा जे उद्योग है वणा ने स्थानीय अर्थव्यवस्था ने मजबूती भी अणियो मिले है सा।
0: तो या तो मुद्रा योजना अपनी बेना रे वास्ते बहुत ही ज़्यादा लाभदायक है। बेना अणी योजना रे माध्यम सिलाई केंद्र, ब्यूटी पार्लर, डेयरी, पौधशाला, खाद्य प्रसंस्करण, हस्तशिल्प और अन्य लघु जो उद्योग है वणा ने स्थापित कर सके, वणु वणारी आय भी बढ़ेगा और परिवार की आर्थिक स्थिति ने भी वे मजबूत कर सके सर।
1: तो देखो गायत्री भाई सा, या तो भी जानकारी और अभी आपके हो तो सहेलिया ने एक प्यारो सो राजस्थानी गीत और सुनाई दे सा।
0: हाँ सर।

0: ममता भाई सा घणो ही प्यारो सो राजस्थानी गीत अपनी बेना ने हुणायो सा। और अपनो देखो अपनी बेना रे टाबरा रे सब रे छुट्टियाँ चल रही है सा, और अपने भी कटे न कटे बाहर निकलवा रो मन करे। और अगर आप अपने टाबर ने असी धार्मिक जगह पे ले जावा जना ने वणा ने मजो भी आवे, भगवान रा दर्शन भी वेवे, तो आज आप अपने बेना ने सभा ने आप ले चलना हाँ सोमनाथ तीर्थ। और यो जो सोमनाथ मंदिर है यो भगवान शिव रा 12 ज्योतिर्लिंगा में पहलो ज्योतिर्लिंग मान्यो जावे सा।
1: बिल्कुल सा, यो देखो आप देखा यो गुजरात राज्य रा अरब सागरों जता ठेवणी पे स्थित है सोमनाथ मंदिर। भगवान शिव रा 12 ज्योतिर्लिंग में आप बतायो पहलो प्रथम ज्योतिर्लिंग है। अने ऐतिहासिक महत्व की बात करा तो सोमनाथ मंदिर इतिहास अत्यंत प्राचीन है। अने कई बार विदेशी आक्रमणकारी द्वारा नष्ट किया करवारो प्रयास कीधो हो, लेकिन देखो प्रत्येक बार अनो जो पुनर्निर्माण कियो गयो। और स्वतंत्रता रे बाद में भारत रा आपा देखा प्रथम जो प्रधानमंत्री हा वणारी प्रेरणाओं वर्तमान भव्य मंदिरों निर्माण करवायो गयो है सा।
0: कसा कसा प्रमुख दर्शनीय स्थल है वणारी भी बात अपनी बेना ने बतावा, अटे सोमनाथ ज्योतिर्लिंग रा दर्शन भी कर सका हाँ। लारे लारे समुद्र तट और मंदिर परिसर है, बाण स्तंभ है, त्रिवेणी रो संगम है, प्रभास पाटन जो म्यूजियम है यो भी वटे वणियो लोगों है, भलका तीर्थ है यो भी अटे मौजूद है सा।
1: अना धार्मिक महत्व की बात करना तो हिंदू धर्म में मान्यता है कि सोमनाथ रा जो दर्शन है और मणारी जो पूजा है वणियों मनोकामना पूर्ण वेवेसा और आध्यात्मिक शांति आपने प्राप्त वे। प्रत्येक वर्ष में आपा देखा लाखों श्रद्धालु अटे दर्शन रे वाते आवे है सा।
0: बिल्कुल सा, सोमनाथ तीर्थ री जटे आपा जानकारी करी रहा तो अंडी जो मंदिर री वास्तुकला है या बहुत ही ज़्यादा आकर्षक है। अंडो जो निर्माण है वो चालुक्य शैली में किधो लोको है। समुद्र रे किनारा पे स्थित यो मंदिर जो है दूरों ही अपनी भव्यता और सुंदरताओं श्रद्धालु और पर्यटक ने आकर्षित करे है। सूर्यास्त रे समय पे यो जो मंदिर है और समुद्र रो जो यो दृश्य है ये बहुत ही ज़्यादा मनमोहक दिखाई देवे है सर।
1: सोमनाथ आवा वाला पर्यटक केवल मंदिर दर्शन नहीं करे बल्कि आसपास अनेक जो दर्शनीय स्थल है वहाँ भ्रमण भी करे। अणि में त्रिवेणी संगम, भालका तीर्थ, गीता मंदिर, सूर्य मंदिर, सोमनाथ संग्रहालय ये सब प्रमुख है। त्रिवेणी संगम वो स्थान है जटे हिरण, कपिला और सरस्वती नदियारो संगम मान्यो जावे सा।
0: तो आपा तो अपनी बेना ने ये इस बात कहा कि सोमनाथ तीर्थ केवल मंदिर इस नहीं है बल्कि भारत री आध्यात्मिक विरासत है, सांस्कृतिक गौरव है और अटूट आस्था रो प्रतीक है। और आपने इतिहास, धर्म और प्रकृति रा अद्भुत संगम रो अनुभव करवावे तो आपने हमेशा यो ध्यान रखनो है कि जीवन में कभी एक बार तो आपने सोमनाथ तीर्थ रा दर्शन करवा अवश्य जानो छावे और आपने यो काम अवश्य करनो है। तो या तो आपा जानकारी करे सोमनाथ तीर्थ री और अबे घड़ी री तरफ नाला। तो कार्यक्रमों विदारो टेम वेग्यो सा चला सा
1: राम राम सा।

अभी बहने सुन रही थी अपना चहेता कार्यक्रम सेलेरी बाड़ी। ये आकाशवाणी उदयपुर है। एक बार फिर से आपको ले चलते हैं गीत और संगीत की दुनिया में, हमारे फिल्म संगीत कार्यक्रम में।

कहते हैं कि जिंदगी में जो लम्हा मिले उसे चुरा लो, जिंदगी प्यार से अपनी सजा लो, जिंदगी यूं ही गुजर जाएगी, बस कभी खुद हंसो तो कभी रोते हुए को हंसा लो।

चाय की कुल्हड़, बारिश सी ठंडक, सुबह की ट्रेन में सब कुछ है तड़प, जो छूट गए रात में मिल जाएंगे शायद, हर स्टेशन पर लिखी है नई एक छाप।

0: QR कोड स्कैन करो, 5,000 का कैशबैक पाओ। वाह, दिल बन गया।
1: UPI पिन एंट्रिंग सिर्फ पैसे भेजने के लिए है।
2: RBI कहता है
1: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

कहते हैं कि तेरे संग चलूं तो राहें भी मुस्कुराती हैं, तेरी हंसी सुनूं तो उदासी भी शर्माती है। कहते हैं कि मोहब्बत में मंजिल नहीं होती, पर तेरे संग हर महफिल खुद चल के आती है।

तेरे बिना घर पे सुना नहीं लगता, पर दिल कहीं भी लगता नहीं। हंस लूं बोल लूं सबके साथ, फिर भी कहीं कुछ लगता नहीं।

कहते हैं कि संगीत कभी पुराना नहीं होता, बस हमारी यादें उससे नई हो जाती है। फिर मिलेंगे, फिर गाएंगे, फिर उसी जादू में खो जाएंगे। इस फिल्म संगीत कार्यक्रम से दीजिए इजाजत।

श्रोता प्रेम संगीत कार्यक्रम अब यहीं तक ही आकाशवाणी उदयपुर है। आइए सुनते हैं विकास चर्चा। विकास चर्चा में हमारा आज का विषय है प्रधान कौशल यु विकास योजना। श्रोता आज बात करेंगे भारत के युवाओं को रोजगार उन्मुखी बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण पहल प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। इस योजना का उद्देश्य युवाओं को उद्योगों की आवश्यकता के अनुसार कौशल प्रशिक्षण देकर रोजगार और स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराना है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना वर्ष 2015 में शुरू हुई थी। इसके अंतर्गत युवाओं को विभिन्न क्षेत्रों में निःशुल्क कौशल प्रशिक्षण दिया जाता है तथा प्रशिक्षण पूर्ण होने पर प्रमाण पत्र भी प्रदान किया जाता है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य युवाओं को रोजगार क्षमता बढ़ाना और देश में कुशल कार्यबल तैयार करना है। इस योजना के तहत निर्माण, स्वास्थ्य, आईटी, खुदरा व्यापार, इलेक्ट्रॉनिक्स, पर्यटन, आतिथ्य सेवा जैसे पारंपरिक क्षेत्रों के साथ साथ कृत्रिम बुद्धिमत्ता, ड्रोन तकनीक, रोबोटिक्स, साइबर सुरक्षा और अन्य उभरते क्षेत्रों में प्रशिक्षण उपलब्ध कराया जा रहा है। युवाओं को निःशुल्क प्रशिक्षण, कौशल प्रमाणन और रोजगार मार्गदर्शन तथा कई मामलों में प्लेसमेंट सहायता भी मिलती है। इससे

रोजगार पाने की संभावना बढ़ती है और स्वरोजगार के अवसर भी विकसित होते हैं। इस योजना के माध्यम से लाखों युवकों को प्रशिक्षण प्रदान किया गया है। महिलाओं, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य वंचित वर्गों की भागीदारी भी उल्लेखनीय रही है। इसका उद्देश्य देश की युवा शक्ति को आत्मनिर्भर और रोजगार के लिए तैयार बनाना है।

आज का समय कौशल का समय है, केवल डिग्री ही नहीं लेकिन व्यावहारिक ज्ञान और तकनीकी दक्षता भी आवश्यक है। युवा अपनी रुचि और क्षमता के अनुसार प्रशिक्षण प्राप्त करें और उपलब्ध अवसरों का लाभ उठाएं, यही हमारा संदेश है।

इस योजना में पात्रता की बात करें तो आवेदक भारतीय नागरिक होना चाहिए, उम्मीदवार के पास वैध आधार कार्ड होना चाहिए, बैंक खाता होना चाहिए, आयु सीमा आमतौर पर 15 से 45 वर्ष के बीच होनी चाहिए। यदि आप अपना पंजीकरण करना चाहते हैं तो या नजदीकी प्रशिक्षण केंद्र का पता लगाना चाहते हैं तो कौशल भारत मिशन की आधिकारिक वेबसाइट का उपयोग कर सकते हैं।

0: श्रोता भी आप सुन रहे थे विकास चर्चा। विकास चर्चा में हमारा आज का विषय था प्रधान कौशल विकास योजना। यह आकाशवाणी उदयपुर दोपहर की 2:15 होने को है। वक्त है दोपहर समाचारों का, जिसका प्रसारण होगा हमारे दिल्ली केंद्र से।
1: आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्यों के साथ देश की आर्थिक वृद्धि को गति देने के उपायों पर चर्चा की। रिजर्व बैंक ने भारत में निवेश को आसान बनाने के लिए विदेशी निवेशकों के सरकारी प्रतिभूतियों से जुड़े नियमों को सरल बनाया। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर आज शाम नई दिल्ली में नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल से बातचीत करेंगे। सीबीएसई ने अंकों के सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि कल तक बढ़ाई। पंजाब में आज सुबह फिरोजपुर फाजिलका मार्ग पर एक ट्रक से वाहन की टक्कर में 9 लोगों की मौत। केरलम और माहे में कल तक मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी। श्रेयस अय्यर सूर्यकांत यादव की जगह T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के कप्तान बने वैभव सूर्यवंशी पहली बार टीम में शामिल। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्यों के साथ बैठक की अध्यक्षता की। प्रधानमंत्री और परिषद ने वैश्विक उथल पुथल के दौर में भारत की आर्थिक वृद्धि को और बढ़ावा देने के लिए विभिन्न विचारों और उपायों पर चर्चा की। जीवन स्तर और व्यापार में सुगमता लाने के लिए विभिन्न सुधारों पर भी विचार विमर्श किया गया। सदस्यों ने पश्चिम एशिया संघर्ष के भारत और विश्व पर पड़ने वाले प्रभाव का भी आकलन प्रस्तुत किया। प्रधानमंत्री ने कहा है कि वैश्विक आर्थिक संकट के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था की नींव असाधारण रूप से मजबूत बनी हुई है। श्री मोदी ने दमण में कल लगभग 2,970 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने एक जनसभा में कहा कि भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है।
2: वर्ष 2025-26 में भारत ने 7.7% की ग्रोथ रेट हासिल की है।

0: और पिछला क्वार्टर जो 31 मार्च को खत्म हुआ उसमें भी भारत की ग्रोथ 7.8% रही है और ये दुनिया में तेज गति से आगे बढ़ने वाली बड़ी इकोनॉमी है।
1: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि ऐसे समय में जब कई देश आर्थिक अनिश्चितताओं का सामना कर रहे हैं, भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बनी हुई है। एक रिपोर्ट।
2: वित्त वर्ष 2025-26 में दर्ज 7.7% की सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर का जिक्र करते हुए श्री राजनाथ सिंह ने कहा कि ये उपलब्धि पिछले 12 वर्ष में भारतीय अर्थव्यवस्था की दृढ़ता और मजबूती का संकेत है। रक्षा मंत्री ने कहा कि राष्ट्र निर्माण के प्रति श्री मोदी की अटूट प्रतिबद्धता, नवाचार, बुनियादी ढांचा और उद्यमिता तथा वैश्विक चुनौतियों से देश को उबारने की उनकी क्षमता ने भारत को एक आत्मविश्वासपूर्ण, दृढ़ और वैश्विक स्तर पर सम्मानित आर्थिक शक्ति में बदल दिया है। उन्होंने कहा कि ये उल्लेखनीय वृद्धि नए अवसर पैदा कर रही है और 14 करोड़ भारतीयों की आकांक्षाओं को मजबूत कर रही है। समर्थ की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से सरफिरोजी।
1: रिजर्व बैंक ने विदेशी निवेशकों के सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश से जुड़े नियमों में महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। नए प्रावधानों के अंतर्गत सामान्य निवेश करने वाले विदेशी निवेशकों को अब कई तरह की निवेश सीमाओं से छूट दी गई है। आरबीआई ने केंद्र और राज्य सरकार की प्रतिभूतियों के लिए पहले से लागू सामान्य और दीर्घकालिक निवेश सीमाओं को भी एक कर दिया है। नए दिशा निर्देश तत्काल प्रभाव से लागू हो गए हैं। राज्य वित्त आयोगों के लिए डाटा सेट संबंधी समिति की रिपोर्ट 8 जून को जारी की जाएगी। केंद्र सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार डॉ वी अनंता नागेश्वरन ने इस रिपोर्ट को जारी करेंगे। पंचायती राज मंत्रालय ने कहा है कि इस रिपोर्ट का जारी होना राजकोषीय विकेंद्रीकरण के लिए प्रमाण आधार को मजबूत करने की दिशा में सरकार की निरंतर प्रतिबद्धता में एक महत्वपूर्ण प्रयास है। मंत्रालय के अनुसार यह रिपोर्ट राज्य वित्त आयोगों के लिए आवश्यक प्रमुख डाटा सेटों का एक सुव्यवस्थित और व्यापक विवरण प्रस्तुत करती है। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर आज शाम नई दिल्ली में नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल से बातचीत करेंगे। नेपाल के विदेश मंत्रालय ने बताया है कि बैठक में व्यापार, निवेश, संपर्क, ऊर्जा और जन संबंधी सहित प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के उद्देश्यों से आपसी हित के मुद्दों पर चर्चा होगी। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि यह दौरा भारत और नेपाल के बीच विशेष साझेदारी को और मजबूत करेगा।
3: With Nepal, we have an expansive agenda.
4: नेपाल के साथ हमारा एजेंडा बहुत व्यापक है। इसमें विकास के लिए सहयोग से लेकर लोगों के बीच आपसी संबंध और व्यापार तथा निवेश शामिल हैं। इसलिए जब दोनों देशों के विदेश मंत्री मिलेंगे तो इन सभी संबंधों पर चर्चा होगी। हम नेपाल के साथ अपनी इस बहुआयामी साझेदारी को और मजबूत करने के इच्छुक हैं।
3: पार्टनरशिप दैट वी हैव विद नेपाल।
1: भारत के 3 दिन के दौरे पर आए नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल ने कल नई दिल्ली में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल से मुलाकात की। भारत लैटिन अमेरिका और कैरेबियन व्यापार तथा निवेश मंच का आयोजन आज मध्य प्रदेश के इंदौर में किया जा रहा है। इसमें 15 लैटिन अमेरिकी और कैरेबियन देशों के राजदूत और राजनयिक प्रतिनिधि भाग लेंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newzoneair.gov.in और हमारे NewsOn AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने अंक सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि बढ़ाकर 7 जून कर दी है। CBSE ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि छात्र अब कल मध्यरात्रि तक अपने आवेदन जमा कर सकेंगे। इससे पहले आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 6 जून निर्धारित थी। CBSE ने सभी पात्र छात्रों से बढ़ी हुई समय सीमा का ध्यान रखते हुए निर्धारित अवधि के भीतर आवेदन प्रक्रिया पूरी करने की अपील की है। पंजाब में आज सुबह फिरोजपुर फाजिलका सड़क पर एक ट्रक से वाहन की टक्कर में 9 लोगों की मौत हो गई और 22 अन्य घायल हो गए। सभी पीड़ित एक ही परिवार के सदस्य थे और ब्यास नदी में अपने रिश्तेदार की अस्थियों को विसर्जित करने जा रहे थे। वरिष्ठ पुलिस अधिकारी दुर्घटनास्थल पर पहुंचे और स्थानीय लोगों की मदद से बचाव अभियान चलाया गया। दिल्ली पुलिस ने मालवीय नगर होटल अग्निकांड मामले में रसोइये को गिरफ्तार किया है। इस होटल में 3 जून को आग लगने से 21 लोगों की मौत हो गई और 40 अन्य घायल हो गए। इससे पहले पुलिस ने होटल मालिक को भी गैर इरादतन हत्या और अन्य संबंधित धाराओं के अंतर्गत

0: गिरफ्तार किया था, जांच जारी है। संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा है कि पिछले 12 वर्ष में भारत की सौर ऊर्जा क्षमता 2.8 गीगावाट से बढ़कर 155 गीगावाट हो गई है। श्री शेखावत ने आज सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि 40 लाख से अधिक घरों में सौर ऊर्जा का उपयोग हो रहा है। कृषि क्षेत्र में सौर ऊर्जा क्षमता का दोगुना होना पर्यावरण संरक्षण के साथ साथ प्रगति का भी प्रमाण है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि पश्चिम बंगाल में लंबे समय से लंबित रेलवे परियोजनाओं का समाधान होने से राज्य में रेलवे अवसंरचना विकास के एक नए युग की शुरुआत होगी। श्री वैष्णव ने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के साथ कोलकाता के नबन्ना में आयोजित एक संयुक्त प्रेस वार्ता के दौरान बताया कि वर्ष 2026-27 के रेल बजट में पश्चिम बंगाल के लिए 14,205 करोड़ रूपये आवंटित किए गए हैं। उन्होंने कहा कि राज्य में 10 अमृत भारत स्टेशन पहले ही पूरे हो चुके हैं, जबकि 9 वंदे भारत एक्सप्रेस और कई अमृत भारत रेलगाड़ियां चल रही हैं। रेल मंत्री ने अगले 5 वर्ष में कोलकाता मेट्रो के लिए 60 नई रेलगाड़ियों को शुरू करने की भी घोषणा की।
1: मेट्रो के लिए 60 न्यू ट्रेन्स, नई जनरेशन की ट्रेन्स अगले 5 वर्षों में इंडक्ट करेंगे। नई जनरेशन की ट्रेन्स आने से कोलकाता के निवासियों को बहुत अच्छी फैसिलिटी मिलेगी, वो भी एक बहुत बड़ा आगे स्टेप लिया जाएगा।
0: मुख्यमंत्री शिवेंदु अधिकारी ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार मिलकर 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक लागत की रेलवे अवसंरचना परियोजनाओं को लागू करेंगे। स्वास्थ्य मंत्री और भाजपा के पूर्व अध्यक्ष जेपी नड्डा ने आज राष्ट्रीय परिवार सर्वेक्षण स्वास्थ्य सर्वेक्षण 6 के निष्कर्षों पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की टिप्पणियों का खंडन किया। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री नड्डा ने कहा कि जन स्वास्थ्य इतना महत्वपूर्ण है कि इस पर राजनीतिक बयानबाजी नहीं करनी चाहिए। श्री नड्डा ने बताया कि पूर्ण टीकाकरण कवरेज बढ़कर 87.1% हो गया है, जबकि स्वास्थ्य बीमा कवरेज 4.9% से बढ़कर 60.2% हो गया है। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि यह प्रगति स्वास्थ्य सेवा, पोषण, स्वच्छता, वित्तीय समावेशन और अंतिम छोर तक सेवा पहुंचाने में निरंतर निवेश का परिणाम है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ईरान के सर्वोच्च नेता मुज्तबा खामेनेई के सैन्य सलाहकार मोहसिन रेजाई ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से इसराइल से स्वतंत्र होकर निर्णय लेने, होर्मुज जलटमरू मध्य में नाकाबंदी समाप्त करने और ईरान की जब्त संपत्तियों को छोड़ने का आह्वान किया है। रेजाई ने एक टेलीविजन चैनल के साथ साक्षात्कार में कहा कि दोनों पक्षों के बीच वार्ता गतिरोध में है और ट्रंप को इस गतिरोध को तोड़ना होगा। भारत ने कहा है कि पाकिस्तान संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अपनी अस्थायी सदस्यता का दुरुपयोग जम्मू कश्मीर के बारे में झूठे दावे फैलाने के लिए कर रहा है। भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने चेतावनी दी कि पाकिस्तान को अपनी जिम्मेदारियों का ध्यान रखना चाहिए।
2: मैं पाकिस्तान को याद दिलाना चाहता हूं कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का सदस्य होना एक बड़ी जिम्मेदारी है। ये पक्षपाती और झूठी बातें फैलाने का मंच नहीं है। मैं ये बात साफ साफ कहना चाहता हूं। जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न और अटूट हिस्सा था, है और हमेशा रहेगा। पाकिस्तान की खोखली बयानबाजी और झूठे दावों से ये बुनियादी सच्चाई नहीं बदलेगी।
0: मॉरिशस ने पिछले 21 दिनों में कांगो, युगांडा और दक्षिण सूडान की यात्रा करने वाले या वहां से गुजरने वाले विदेशी नागरिकों के प्रवेश पर अस्थायी प्रतिबंध लगा दिया है। ये कदम इबोला वायरस के प्रकोप को देखते हुए उठाया गया है। मौसम विभाग ने केरलम और माहे में कल तक मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। पूर्वोत्तर भारत, कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कारायकाल में अगले 2 दिन में तेज वर्षा हो सकती है। पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों, तेलंगाना, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, रायलसीमा, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप में भी आज ऐसी ही स्थिति का अनुमान है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, उत्तराखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, झारखंड, जम्मू कश्मीर में बिजली चमकने और तेज हवाओं का अनुमान है। हिमाचल प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में आज मौसम साफ बना हुआ है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि बीते दिनों की गर्मी के बाद सुहावने मौसम से जनजीवन को काफी राहत मिली है।
3: हिमाचल प्रदेश में जनजातीय जिला लाहौल स्पीति के रोहतांग और कुंजम दर्रों पर बीते रोज हल्का हिमपात तथा कुछ क्षेत्रों में हल्की वर्षा दर्ज की गई, जिससे मौसम सुहावना हो गया है। बड़ी संख्या में पर्यटक हिमाचल के विभिन्न पर्यटन स्थलों की ओर रुख कर रहे हैं। इस बीच मौसम विभाग ने आज चंबा, कांगड़ा और

0: कुल्लू जिलों के लिए अंधड़, ओलावृष्टि, वर्षा और बिजली गिरने की संभावना को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। रितेश कपूर, आकाशवाणी समाचार, शिमला।
1: भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई ने इंग्लैंड और आयरलैंड के साथ होने वाली टी20 श्रृंखला के लिए भारतीय टीम की घोषणा कर दी है। श्रेयस अय्यर को सूर्य कुमार यादव की जगह टीम का कप्तान बनाया गया है। तिलक वर्मा उप कप्तान होंगे। वैभव सूर्यवंशी को पहली बार टीम में शामिल किया गया है। वैभव ने आईपीएल 2026 में सर्वोच्च रन बनाए थे। प्रिंस यादव को भी टीम में जगह मिली है। भारत और अफगानिस्तान के बीच एकमात्र क्रिकेट टेस्ट मैच न्यू चंडीगढ़ के मुल्तानपुर में खेला जा रहा है। भारतीय कप्तान शुभमन गिल ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। चायकाल तक भारत ने 2 विकेट के नुकसान पर 209 रन बना लिए थे। भारत आज पुरुष अंडर 18 एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट के फाइनल में मेजबान जापान से खेलेगा। ये मुकाबला जापान के काकामिगाहारा में भारतीय समयानुसार दोपहर 3:30 बजे से शुरू होगा। युवा कार्य और खेल मंत्री डॉ मनसुख मांडविया ने कहा है कि युवा राष्ट्र की सच्ची शक्ति हैं और विकसित भारत के सपने को साकार करने वाली प्रेरक शक्ति हैं। नई दिल्ली में आयोजित मेरा भारत युवा सम्मेलन में डॉ मांडविया ने ये बात कही। अमेरिका के सिएटल में मैंगो मैजिक फेस्टिवल भारतीय आम का प्रचार और स्वाद परीक्षण के दूसरे चरण का आज आयोजन किया गया। अमेरिका की सीनेटर मंका ढींगरा ने कहा कि खाद्य पदार्थों का आदान प्रदान देशों के बीच केवल पोषण की जरूरतें ही नहीं करता बल्कि ये मजबूत व्यापारिक, आर्थिक और सांस्कृतिक संबंधों की नींव भी रखता है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्यों के साथ देश की आर्थिक वृद्धि को गति देने के उपायों पर चर्चा की। रिजर्व बैंक ने भारत में निवेश को आसान बनाने के लिए विदेशी निवेशकों के सरकारी प्रतिभूतियों से जुड़े नियमों को सरल बनाया। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर आज शाम नई दिल्ली में नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल से बातचीत करेंगे। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने अंकों के सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि कल तक बढ़ाई। पंजाब में आज सुबह फिरोजपुर फाजिलका मार्ग पर एक ट्रक से वाहन की टक्कर में 9 लोगों की मौत। केरलम और माहे में कल तक मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी। और श्रेयस अय्यर सूर्यकांत यादव की जगह टी20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के कप्तान बने। वैभव सूर्यवंशी पहली बार टीम में शामिल। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आपने चुन गया है आकाशवाणी उदयपुर को। इस समय दोपहर की 2:30 हो चुके हैं। कुछ ही पलों में किसान परिवार सुनेंगे अपना दैनिक कार्यक्रम कृषि जगत।

0: राम राम ममता बैसा, राम राम
1: राम राम गायत्री बैसा, राम राम
0: कृषि जगत कार्यक्रम हुणवा वाला सगला किसान भाई बहना ने आपनो राम राम सा।
1: देखो गायत्री बैसा, कार्यक्रम रो टाइम भी और आपा किसान भाई रे वते हो हो जानकारी राजस्थानी लोकगीत लेने आया हाँ सा, और आपनी जानकारी रे माध्यम किसान भाई अपनी खेतीबाड़ी में वनी जानकारी रो लाभ उठावे तो वनाने खेतीबाड़ी में नरो हरो मुनाफो मिले। आज आपा किसान भाई रे वाते किसान री बात में जानकारी लेने आया हाँ कि वर्षा जल संचयन री तैयारी अपने किसान भाई किस तरह करे सा।
0: अभानो देखो, अबे या गर्मी रो मौसम है, अबे थोड़ा टाइम बाद में ने वर्षा रो मौसम आई जाएगा, और अनि वर्षा रे जल रो अगर संचयन किसान भाई करेगा तो किसान भाई रे वास्ते बहुत ही बढ़िया रहेगा। किसान भाई रे जो सिंचाई रे वास्ते भी बहुत ही लाभदायक रहेगा, और यो वर्षा रो जो जल संचयन या आधुनिक समय री एक आवश्यकता भी बन चुक्यो है। जिस तरह जनसंख्या बढ़ रही है, भूजल रो दोहन भी वही रो है, तो जल संकट जो है एक या वैश्विक चुनौती बनतो जा रो है। अनि वास्ते वर्षा रे जल रो संचयन, वर्षा रे जल ने बहवाऊ रोकनो और वनडे भविष्य में उपयोग रे वास्ते एकत्रित करनो जणो आपनो भूजल स्तर में भी सुधार आवे सा।
1: बिल्कुल सा, और वर्षा जल संचयन रे तैयारी री अगर आप उद्देश्य री बात करा तो अनु है कि उपयोग करनो, पानी ने टैंक में जमा करनो ताकि वणी आपा कपड़ा धोई सका, सफाई कर सका, वणी पानी ने आपा बागवानी रे वास्ते इस्तेमाल कर सका, पानी ने अब जमीन रे भीतर भेजनो ताकि कहवे कि बोरवेल है, कुआ है, अणारो जल स्तर बढ़ सके। वर्षा जल संचयन री तैयारी मानसून शुरू हुए पहली करनी चाहे ताकि कहवे कि बारिश री जो एक एक बूंद है वन्ने आपा सहेजी सका सा।
0: मानसून आवो पहला आपानी छत पू धूल मिट्टी हुका पत्ता कचरो

0: अंडे झाड़ू लगे साफ कर लेनो है। अगर छत में कोई दरार है सीलन है तो वंडे वाटर प्रूफिंग या पचे सीमेंट टू ठीक करवाई लेनो है। और जल निकास री जांच रे वास्ते छतरे किनारे पे लागी लगी नालिया नीचे आवा वाला पाइप वड़ाने चेक करनो है कि कोई टूट्यो लोको तो नहीं है, कटे चौक तो नहीं वेरो, अगर असो वेरो वे तो वंडे बदल देनो है सा।
1: बिल्कुल सा। अणी में एक वे की फिल्टर सिस्टम लगानो। देखो बारिश रोड जो टेम वे वणी में शुरुआती जो पानी वे वणी में नरो हारो कचरो वने लड़ला रहे अणी वाते वने साफ करवा वाते बहुत ही जरूरी है कि आप फिल्टर टैंक लगावा। पाइप रे अंत में एक छोटो सो फिल्टर चेम्बर बनानो है जनी परता में आपा देखा अणी में नीचे बड़ा पत्थर और छोटी जा बजरी वे व सब ऊपरे कम कम 2 फीट मोटी साफ रेतरी परत लगानी या प्राकृतिक रूप पानी ने छाणी देवे है सा।
0: लारे लारे संग्रहण टैंक री भी बात बतावा किसान भाइयों ने कि छणियों लोगों जो साफ पानी है वंडे अपने टैंक में इकट्ठो करनो, साफ पानी ने प्लास्टिक या पचे कंक्रीट रा बड़ा टैंक या रेन बैरल में भी जमा कर सको। अंडो उपयोग जो है पीवारे पानी रे अलावा बागवानी में ने कपड़ा धोवा में भी कर सके और भूजल स्तर ने भी बढ़ाई सके सा।
1: बिल्कुल सा। और 2-3 मीटर गहरा या पचे 1-2 मीटर चौड़ा गड्ढा बनाना अन्य पत्थर और रेतु भरी देना। अतिरिक्त जे पाइप है अणा ने गड्ढा में जोड़ी ने भूमि रो जल स्तर अणियो बढ़ेगा। बारिश की शुरुआत तो पहली अपने 10-15 मिनट में छतरो सारो कचरो अणी में धूली जावे हैसा।
0: और अणी शुरुआती गंदा पानी ने टैंक में जावा रोकवा रे वास्ते फ्लश डाइवर्टर रो भी उपयोग कर सको। और यो जो शुरुआती गंदो पानी है अंडे बाहर ने निकाल देवे और बाद में साफ पानी ने टैंक में जावा देवे सा।
1: अभी आप बात करा कि अपने गांव में जो खेती बाड़ी रा क्षेत्र है वणी में अने तैयारी अपने किसान भाई किस तरह करे तो खेता रे चारों तरफ ऊंची मेड़ बनानी ताकि कहवे कि पानी खेतु बाहर ने नहीं बेवे। और ढलान वाली जो जमीन है वणा ने खोदीन राखी ताकि पानी रुकी रुकी ने जमीन में समाई सके सा।
0: वर्का रे जल रो संचय जल री जीवन है रे सिद्धांत रे प्रति अपनी प्रतिबद्धता है। अगर आज आपा बारिश री हर एक बूंद ने सहज नो हीक लांगा तो काल रे वास्ते यो जो जल संकट है यो काफी हद तक कम पे सकेगा सा।
1: बिल्कुल सा। और यो न केवल आपा देखा अपनी आर्थिक बचत करे हैं अपने बल्कि आवा वाली जी पीढ़ियां है वना रवाते एक सुरक्षित पर्यावरण ने भी सुनिश्चित करे है। वर्षा जल संचयन की दिशा में आपनो एक छोटो सो प्रयास अपने निवेश भविष्य रवाते एक अच्छो कदम वे सके है सा।
0: तो आपा तो अपने कार्यक्रम रे माध्यम अपने किसान भाइया ने ये बात कहा कि अबे जो मानसून आवा वालो है वर्का रो टेम आवा वालो है अणि टेम पे वर्का रे जल रो संचयन करनो है, पानी री हर एक बूंद ने बचानो है, पानी ने सहज ने राखनो है क्योंकि जल है तो कल
1: है सा।
0: तो या तो आप जानकारी करें वर्का रे जल रे संचयन री किस तरह तैयारी कर सका। अभी आप अपने किसान भाइया ने पाछा मनोरंजन री दुनिया में ले चला और हुणावा प्यारो सो राजस्थानी गीत।

0: बदलो बदलो आदत बदलो।
1: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
0: बदलो बदलो आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो RBI के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
2: तो देखो गायत्री भाई साहब प्यारो सो राजस्थानी लोकगीत आपा कार्यक्रम में सुनाए और लाला रेपा किसान भाई ने संदेश भी सुनाया सा। और देखो किसान भाई रे वते आपा जानकारी लेने आया हाँ कि खेत तालाब योजना कई है और आने किसान भाई ने कई कई लाभ भेज सके सा। तो देखो खेत

0: लाभ योजना की बात करा तो भारतीय कृषि क्षेत्र में जल रोजो संरक्षण है वनी सिंचाई रे प्रबंधन रे वाते यो एक क्रांतिकारी कदम है और अपने भारत में कृषि मुख्य रूप मानसून पे निर्भर करे है और जलवायु परिवर्तन कारण और बारिश री अनिश्चितता रे कारण किसान भाई री चिंता बड़ी थकी रहे कि वनारे कदी भी फसल ने नुकसान हो सके अणी वाते सरकार वनारे वाते या लाभकारी योजना लई है सा।
1: खेत तालाब योजना री ऐसी स्थिति में ने खेता में ने वरकारे जल ने संचित करनो मंडो सही उपयोग करवा रहे उद्देश्य सरकार द्वारा या खेत तालाब योजना अलग अलग राज्य में अलग अलग नामाओं शुरू भी की दी लकी है। राज्य सरकार रे द्वारा खेती बाड़ी रे वास्ते जो किसान भाई है वनारे वास्ते चलाई जावा वाली या जो खेत तालाब योजना है या बहुत ही महत्वपूर्ण जल संरक्षण योजना है सा।
0: बिल्कुल सा अणि योजना रा मुख्य उद्देश्य री बात करा तो बारिश रे पानी ने इकट्ठो करनो सिंचाई दी सुविधा उपलब्ध कराणो और भूजल रो जो स्तर है वन्ने बढ़ाणो है सा अने तहत किसाना ने तालाब बनावर वाते सरकार द्वारा सब्सिडी दीदी जावे है सा।
1: अणि खेत तालाब योजना रा कई कई लाभ है लाभ री जटे बात करा तो सिंचाई रे वास्ते सुनिश्चित जल री उपलब्धता खेतीबाड़ी रा जो भी उत्पादकता और आय में वृद्धि करनो है भूजल रे स्तर में भी सुधार करनो है और लारे लारे नदा रो संरक्षण और पर्यावरण रो भी अनवेने बहुत ही लाभ है और आजीविका रा नया और पूरक साधन ने उपलब्ध कराणो भी अंडो प्रमुख लाभ है सा।
0: बिल्कुल सा अणि योजना रा सब आप प्राथमिक और प्रत्यक्ष लाभ री बात करा तो फसला रे विकास में कुछ असा चरण वेवे जणी टेम पे फूल आवे समय वणी टेम पे दाणा निकलता टेम पानी की सख्त जरूरत पड़े फसला ने यदि वणी टेम पे मानसून नी आवे तो पूरी फसल बर्बाद हो सके तो खेत तालाब योजना में जमा पानी रो यो संकट है अणी वाते जीवन रक्षक सिंचाई यो प्रदान करे है सा।
1: लारे लारे रबी और जायद फसला री खेती जो कि पारंपरिक रूप जना भी क्षेत्र में सिंचाई रा साधन नहीं वेवे तो वटे किसान भाई केवल खरीफ री फसल ले पावे या मानसून री फसल ले पावे तो खेत तालाब में पानी जमा वेवाऊ किसान भाई रबी और अटा तक की जायद री जो फसल है वन में भी खेती सफलतापूर्वक करी सके सर।
0: दूसरों आप बात करा कि खेती बाड़ी में उत्पादकता और आय में वृद्धि वेवे यदि फसला रे टेम पे वणा ने पर्याप्त पानी मिल जावे तो अन्नो सीधो असर खेतरी जो पैदावार है वणी पे पड़े। फसल सघनता की बात करा तो अणी में वृद्धि वेवे एक खेत में आप साल में दो या तीन फसला लेनो संभव हो जावे और अणियों जमीन री जा उत्पादकता है वा भी बढ़े सा।
1: फसल विविधीकरण की बात बतावा तो पानी की उपलब्धता वेवा पे किसान भाई जो है केवल पारंपरिक फसला जिस तरह की गेहूं है धान है अटा तक सीमित नहीं रहे वे ज़्यादा ज़्यादा मुनाफो देवा वाली जो भी नकदी फसला है साग सब्जियां है फल है फुलारी खेती भी शुरू कर सके जणू वणारी आर्थिक स्थिति में भारी सुधार आवे सा।
0: भूजल स्तर में सुधार की बात करा तो खेत तालाब में केवल सतह पे पानी जमा करवारो साधन नहीं है बल्कि यो पर्यावरण और जल विज्ञान रे वाते बेहद ही फायदेमंद है सा। तालाब में जो इकट्ठो पानी है वो धीरे धीरे जमीन रे नीचे रिसे अणि आसपास रा जो क्षेत्र है वनारो भूजल स्तर भी बढ़े है सा।
1: और या जो खेत तालाब योजना है अंडो एक और उद्देश्य और लाभ यो है कि मृदा रो संरक्षण और पर्यावरण ने भी अणु काफी लाभ वेवे क्योंकि मानसून रे दौरान तेज बारिश कतरी बार खेती रा जो खेत वेवे वनारा ऊपरी उपजाऊ मिट्टी बहन निकल जावे तो अंडे मृदा प्रदन केवा तो अणु कही है कि खेत तालाब अणुओ मिट्टी रा कटाव पे रोक वेवे है क्योंकि वरकारो पानी सीधा बेवारी बजाय खेत रे ढलान रे अनुसार तालाब में आइन रुकी जावे और मिट्टी रो बहाव कम भी जावे।
0: लारे लारे पोषक तत्वारो संरक्षण भी अणी में वे पानी रे लारे बेवा वाला जे मिट्टी रा उपजाऊ कण है वे तालाब री तलहटी में बही जावे और किसान तालाब री सफाई करता टेम अणा ने गाद ने निकाली ने वापस अपना खेत में डाली दे तो यो प्राकृतिक खाद रे रूप में काम करे है सा।
1: लारे लारे आजीविका यानी खेत तालाब योजना केवल खेती तक सीमित नहीं वेवे बल्कि यो किसान भाई यारे कमाई रो अन्य विकल्प भी प्रदान करे जिस तरह की किसान भाई खेत तालाब रे अंतर्गत मछली पालन करी सके है और यो एक कम अतिरिक्त लागत में ने किसान भाई ने एक नियमित और मोटी कमाई रो जरियो भी देवे है सा।
0: स्थानीय पारिस्थितिक तंत्र में सुधारी बात करा तो एक बड़ो जल निकाय जो है यानी उपस्थिति रे आसपास हवा में नमी वणी थकी राखे जणी अत्यधिक गर्मी रे दिना में भी फसला ने लू तेज गर्म हवाओं सुरक्षित राखी सके सा।
1: और अन्य महीने सरकारी सब्सिडी भी मिले है और वित्तीय सहायता भी मिले है सा तो भारी अनुदान भी अन्य महीने नरी हारी अलग अलग राज्य में अलग अलग मिले है और अणु बिजली और ईंधन की बचत भी भेज सके सा
0: और कम लागत में अधिक सिंचाई कर सके किसान भाई अणु किसान भाई आत्मनिर्भर भी बने है सा।
1: तो आपा कार्यक्रम के माध्यम किसान भाई ने ये बात कहा कि खेत तालाब योजना रो किसान भाई ने लाभ लेनो है जणू किसान भाई रे खेतीबाड़ी में ने उत्पादकता बढ़े और अगर उत्पादकता खेतीबाड़ी में बढ़ेगा तो किसान भाई रे आमदनी में भी बढ़ोतरी वेगा और आमदनी में बढ़ोतरी वेगा तो चारी मेर खुशियाँ ही खुशियाँ वेगा क्यों नहीं किसान भाई री खुशी ने और भी दोगुनी करा और होना वा प्यारो सो राजस्थानी गीत।
0: हाँ सा।

0: तत्व वाली बहुत ही ज़्यादा जरूरत वे जिस तरह की नाइट्रोजन है, जिंक है, मैग्नीज है, सल्फर, कैल्शियम, बोरॉन है, पोटाश है, जिंक सल्फर है, अणारी बहुत ही ज़्यादा जरूरत वे। और अणा पोषक तत्वारा कई कई फायदा री जटे बात करा तो फसल में अगर आयरन वेगा तो इल्ली फसल रे पास में नहीं आएगा, और अगर फसल में सल्फर वेगा तो फणी फसल ने फंगस यानी फफूंद नहीं लागेगा सा।
1: बिल्कुल सा। और इस तरीके देखो फसल में अगर जिंक वेगा तो कोई भी वायरस रो प्रकोप है जो फसल में नहीं वेगा। फसल में तांबो, मैग्नीज यू वेगा तो फसल में कई वेगा कि बैक्टीरियल ब्लास्ट जैसी जो बीमारी है वह फसल में कदी नहीं आएगा सा।
0: फसल में ने अगर कैल्शियम वेगा तो रस चूसक जो कीट है वे फसल ने बड़े नहीं आएगा। और वर्तमान में ने आपा देखा कि मिट्टी री ऊपरी सतह में ने उक्त खनिज तत्व नहीं वेवे, अणी वास्ते फसल में बीमारियाँ आई रही है तो खनिज तत्व की कमी फसल री उपज भी गिरे है, तो अणा खनिज तत्व की कमी ने भी किसान भाइया ने पूरी करनी चाहे सा।
1: फसल में बोरान कैल्शियम नहीं वेगा तो बड़ा में नई कोपला नहीं आवे है और फूल नहीं आवे और फल फाटी जावे, तो बोरान कैल्शियम जो है वो फसला में वेणो बहुत ही आवश्यक है। फसल में फास्फोरस नहीं वेगा तो पत्ता टेढ़ा मेढ़ा आएगा और फसल की जो ऊंचाई है वह नहीं वेगा, तो फसला ने पोषक तत्व में फास्फोरस भी देना जरूरी है सा।
0: फसल में पोटाश नहीं वेगा तो फसल में जो कंसा है वे नहीं आएगा, फल भी कम लगेगा, फल भी छोटा रह जाएगा। और फसल में ने अगर जिंक सल्फेट नहीं वेगा तो फलारो स्वाद नहीं आएगा, तो फसला रे वास्ते ये जितना भी पोषक तत्व है चाहे आयरन वो, सल्फर वो, जिंक वो, पोटाश वो, बोरॉन, कैल्शियम वो, फास्फोरस वो, तांबो वो, मैंगनीज वो, ये जो भी पोषक तत्व है ये फसला रे वास्ते बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। फसला री वृद्धि और विकास में ने ये बहुत ही उपयोगी वे वैसा।
1: तो किसान भैया ने बात रो ध्यान रखे कि आपने यदि वे फसल उगई रहा है तो वना फसला में हर तरीका रो पोषक तत्व वेगा, तो वना ने जो फसल है वणी प्राप्त करवा में नरोई हारो मुनाफा वेगा, और यदि नरोई हारो मुनाफा वेगा तो वनारी अच्छी जो है आय भी वनारी सुधरेगा सा। तो देखो गायत्री वैसा या तो ये जानकारी, और अब आपके हो तो चलता चलता किसान भाई ने एक राजस्थानी लोकगीत कार्यक्रम में और सुनावा सा।
0: हाँ सर।

0: वही सा किसान भैया ने प्यारो सो राजस्थानी गीत हुनायो सा नरिहारी जानकारी अभी करी और अबे घड़ी की तरफ नाला तो कार्यक्रम विदारो टेम वेगियो सा चाला सा
1: राम राम सा।

अभी किसान परिवार सुन रहे थे अपना दैनिक कार्यक्रम कृषि जगत। ये आकाशवाणी उदयपुर है। थोड़ी ही देर में हमारे दिल्ली केंद्र से हिंदी में समाचार होंगे। कृपया समाचारों की प्रतीक्षा कीजिए।

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्यों के साथ बैठक की अध्यक्षता की। प्रधानमंत्री और परिषद ने वैश्विक उथल पुथल के दौर में भारत की आर्थिक वृद्धि को और बढ़ावा देने के लिए विभिन्न विचारों और उपायों पर चर्चा की। जीवन स्तर और व्यापार में सुगमता लाने के लिए विभिन्न सुधारों पर भी विचार विमर्श किया गया। सदस्यों ने पश्चिम एशिया संघर्ष के भारत और विश्व पर पड़ने वाले प्रभाव का भी आकलन प्रस्तुत किया। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने विदेशी निवेशकों के सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश से जुड़े नियमों में महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। नए प्रावधानों के अंतर्गत सामान्य निवेश करने वाले विदेशी निवेशकों को अब कई तरह की निवेश सीमाओं से छूट दी गई है। आरबीआई ने केंद्र और राज्य सरकार की प्रतिभूतियों की पोस्ट में श्री सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने आर्थिक विकास को स्थिरता, आत्मविश्वास, निरंतरता और विश्वसनीयता के साथ जोड़ा है। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर आज शाम नई दिल्ली में नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल से बातचीत करेंगे। नेपाल के विदेश मंत्रालय ने बताया कि बैठक में व्यापार, निवेश, संपर्क, ऊर्जा और जन संबंधों सहित प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के उद्देश्य से आपसी हित के मुद्दों पर चर्चा होगी। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि यह दौरा भारत और नेपाल के बीच विशेष साझेदारी को और मजबूत करेगा।
1: With Nepal, we have an expansive agenda.
2: नेपाल के साथ हमारा एजेंडा बहुत व्यापक है। इसमें विकास के लिए सहयोग से लेकर लोगों के बीच आपसी संबंध और व्यापार तथा निवेश शामिल हैं। इसलिए जब दोनों देशों के विदेश मंत्री मिलेंगे तो इन सभी संबंधों पर चर्चा होगी। हम नेपाल के साथ अपनी इस बहुआयामी साझेदारी को और मजबूत करने के इच्छुक हैं।
1: Partnership that we have with Nepal.
0: भारत ने कहा है कि पाकिस्तान संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अपनी अस्थायी सदस्यता का दुरुपयोग जम्मू कश्मीर के बारे में झूठे दावे फैलाने के लिए कर रहा है। भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने चेतावनी दी कि पाकिस्तान को अपनी जिम्मेदारियों का ध्यान रखना चाहिए। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने अंक सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि बढ़ाकर 7 जून कर दी है। सीबीएसई ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि छात्र अब कल मध्यरात्रि तक अपने आवेदन जमा कर सकेंगे। इससे पहले आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 6 जून निर्धारित थी। पंजाब में आज सुबह फिरोजपुर फाजिलका सड़क मार्ग पर एक ट्रक से वाहन की टक्कर में 9 लोगों की मौत हो गई और 22 अन्य घायल हो गए। सभी पीड़ित एक ही परिवार के सदस्य थे और ब्यास नदी में अपने एक रिश्तेदार की अस्थियों को विसर्जित करने के लिए जा रहे थे, तभी ये दुर्घटना हुई।

0: दिल्ली पुलिस ने मालवीय नगर होटल अग्निकांड मामले में एक रसोइये को गिरफ्तार किया है। इस होटल में 3 जून को आग लगने से 21 लोगों की मौत हो गई और 40 अन्य घायल हो गए। इससे पहले पुलिस ने होटल मालिक को भी गैर इरादतन हत्या और अन्य संबंधित धाराओं के अंतर्गत गिरफ्तार किया था। जांच जारी है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि पश्चिम बंगाल में लंबे समय से लंबित रेलवे परियोजनाओं का समाधान होने से राज्य में रेलवे अवसंरचना विकास के एक नए युग की शुरुआत होगी। श्री वैष्णव ने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के साथ कोलकाता के नबन्ना में आयोजित एक संयुक्त प्रेस वार्ता के दौरान बताया कि वर्ष 2026-27 के रेल बजट में पश्चिम बंगाल के लिए 14,205 करोड़ रूपये आवंटित किए गए हैं। संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा है कि पिछले 12 वर्षों में भारत की सौर ऊर्जा क्षमता 2.8 गीगावाट से बढ़कर 155 गीगावाट हो गई है। श्री शेखावत ने आज सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि हर घर और खेत को ऊर्जा का केंद्र बनाने के संकल्प के साथ भारत 500 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता के लक्ष्य की ओर तेजी से अग्रसर है। मौसम विभाग ने केरलम और माहे में कल तक मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों तेलंगाना, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, रायलसीमा, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप में भी आज ऐसी ही स्थिति का अनुमान है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 266.6 मीटर यानी 1125 किलो हर्ट्ज पर ये आकाशवाणी उदयपुर है। इस समय दोपहर के 3:05 हो चुके हैं। इसी के साथ ही हमारी दोपहर सभा के प्रसारण अब यहीं संपन्न होते हैं। सांध्यकालीन सभा के प्रसारणों के साथ संध्या 5 बजे आपसे पुनः भेंट होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए।

मीडिया वेव 266.66 मीटर यानी 1125 किलोहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का उदयपुर केंद्र है। शाम के 5 बज रहे हैं। शुरू करते हैं आज की सायंकालीन सभा के प्रसारण। सबसे पहले हमारे युवा साथी सुनेंगे अपना दैनिक कार्यक्रम युववाणी।

0: हेलो, गुड इवनिंग दोस्तों। स्वागत है आपके पसंदीदा कार्यक्रम युववाणी में। आज मैं हूं आपके साथ आपका रेडियो दोस्त मोहित और मेरे साथ हैं गार्गी।
1: दोस्तों, आज का कार्यक्रम होने वाला है जानकारी, प्रेरणा और मनोरंजन से भरपूर। शुरुआत करेंगे शहर की बात से, जिसमें जानेंगे छत्रपति संभाजी नगर, नाणेंद और लातूर शहर के बारे में। आज के युवा में बात होगी नेहा कक्कड़ और अजिंक्य रहाणे की। मेगा प्रोजेक्ट्स में जानेंगे कोकण रेलवे की कहानी, साथ ही जानेंगे डी रमा नायडू, सुनील दत्त, बोयन बोर्ग और कार्ल गुस्ताव युंग के बारे में।

0: दोस्तों, आज के शहर की बात में हम आपको महाराष्ट्र के तीन खास शहर छत्रपति संभाजीनगर, नांदेड़ और लातूर की सैर करवाएंगे। दोस्तों, ये तीनों शहर इतिहास, संस्कृति, शिक्षा, पर्यटन और धार्मिक महत्व के लिए जाने जाते हैं।
1: सबसे पहले बात छत्रपति संभाजीनगर की, जिसे पहले औरंगाबाद कहा जाता था। साल 2023 में इसका नाम बदलकर छत्रपति संभाजीनगर रखा गया। यह मराठवाड़ा का सबसे बड़ा शहर और क्षेत्र का प्रमुख औद्योगिक एवं पर्यटन क्षेत्र है।
0: इस शहर की स्थापना 1610 में मलिक अंबर ने की थी। बाद में औरंगजेब ने इसे अपनी दक्कड़ राजधानी बनाया। शहर में बने 52 ऐतिहासिक दरवाजों के कारण इसे सिटी ऑफ गेट्स भी कहा जाता है।
1: अजंता और एलोरा गुफाएं, बीबी का मकबरा, दौलताबाद, किला पंचचक्की और कृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग यहाँ के प्रमुख आकर्षण हैं। शहर में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर मराठवाड़ा विश्वविद्यालय और AURIC जैसी परियोजनाएँ भी हैं।
0: बिल्कुल, और परिवहन की बात करें तो छत्रपति संभाजीनगर रेलवे स्टेशन देश के कई बड़े शहरों को जो है वो आपस में जोड़ता है। यहाँ का अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है वो भी है यहाँ पर, और यहाँ महाराष्ट्र के विभिन्न शहरों के लिए नियमित बस सेवाएं भी उपलब्ध है।
1: दोस्तों, अब चलते हैं नांदेड़ की ओर। गोदावरी नदी के किनारे बसा नांदेड़ मराठवाड़ा का दूसरा सबसे बड़ा शहर और सिख धर्म का एक प्रमुख तीर्थ स्थल है। यहाँ स्थित तख्त श्री हजूर साहिब सिख धर्म के 5 तख्तों में से एक है,
0: और यहीं गुरु गोविंद सिंह जी ने गुरु ग्रंथ साहिब को सिक्के का शाश्वत गुरु घोषित किया था। इसीलिए हर साल लाखों श्रद्धालु यहां दर्शन के लिए आते हैं।
1: नांदेड़ का इतिहास नंद वंश, मौर्य साम्राज्य, मुगल शासन और हैदराबाद रियासत से जुड़ा रहा है। आज यह शिक्षा, कृषि और धार्मिक पर्यटन का महत्वपूर्ण केंद्र है।
0: बिल्कुल, और नांदेड़ में हुजूर साहिब नांदेड़ रेलवे स्टेशन प्रमुख रेल जंक्शन है। शहर का अपना हवाई अड्डा भी है और बस सेवाओं के माध्यम से यह महाराष्ट्र तथा पड़ोसी राज्यों से अच्छी कनेक्टिविटी भी रखता है।
1: अब बात करते हैं लातूर की। लातूर को शिक्षा की नगरी भी कहा जाता है। यहाँ का लातूर पैटर्न पूरे देश में प्रसिद्ध है और जिसे प्राचीन काल में लट्ट लूर कहा जाता था।
0: बिल्कुल, और बड़ी संख्या में स्टूडेंट्स यहाँ स्टडी के लिए भी आते हैं। और यह शहर 1993 के विनाशकारी भूकंप के बाद तेजी से विकसित हुआ और आज शिक्षा तथा व्यापार का प्रमुख केंद्र बन चुका है।
1: लातूर महाराष्ट्र की प्रमुख शुगर बेल्ट का हिस्सा भी है। यहाँ गन्ना, सोयाबीन और दालों का बड़े पैमाने पर उत्पादन किया जाता है। गंज गोलाई, खरोसा गुफाएं, ओसा किला और सिद्धेश्वर मंदिर यहाँ के प्रमुख आकर्षण हैं।
0: और परिवहन सुविधाओं की बात करें तो लातूर रेलवे स्टेशन शहर को देश के कई हिस्सों से जोड़ता है। यहाँ हवाई अड्डा भी संचालित है और बस सेवाओं के माध्यम से पुणे, मुंबई, नागपुर, हैदराबाद और अन्य शहरों तक आसानी से पहुँचा जा सकता है।
1: जी हाँ दोस्तों, छत्रपति संभाजीनगर अपनी ऐतिहासिक धरोहर और पर्यटन के लिए, नांदेड़ अपनी धार्मिक आस्था और सांस्कृतिक विरासत के लिए, और लातूर शिक्षा, कृषि तथा विकास के लिए अपनी एक खास पहचान रखते हैं।
0: और ये तीनों शहर मिलकर महाराष्ट्र की समृद्धि, संस्कृति, इतिहास और विकास की खूबसूरत तस्वीर भी पेश करते हैं।
1: तो दोस्तों, इसी के साथ आज के शहर की बात में बस इतना ही।

0: जनगणना 2027 को सफल बनाना हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। जब अधिकृत प्रगणक आपके घर आए उनका परिचय पत्र और QR कोड देखकर पुष्टि जरूर करें।
1: प्रगणक डिजिटल माध्यम से जानकारी संग्रह करेंगे। आपकी सही जानकारी से भविष्य की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद होती है।
0: आपकी सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।
2: दोस्तों अब आज के युवानी सेगमेंट में हम बात करेंगे दो ऐसी हस्तियों की जिन्होंने अपने अपने क्षेत्र में मेहनत और प्रतिभा के दम पर अपनी एक खास पहचान बनाई।
3: जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं मशहूर गायिका नेहा कक्कड़ और भारतीय क्रिकेटर अजिंक्य रहाणे की। और खास बात यह है कि आज यानी 6 जून को इन दोनों का जन्मदिन है।
2: बिल्कुल, सबसे पहले बात करते हैं नेहा कक्कड़ की। 6 जून 1988 को ऋषिकेश में जन्मी नेहा ने मात्र 4 साल की उम्र में से ही भजन और जागरणों में गाना शुरू किया था। साल 2005 में उन्होंने इंडियन आइडल में हिस्सा लिया और यहीं से उनके करियर को नई पहचान मिली।
3: संघर्ष और मेहनत के दम पर नेहा ने बॉलीवुड में अपनी खास जगह बनाई। लंदन ठुमकदा, काला चश्मा, दिलबर, आंख मारे, मिले हो तुम और सनी सनी जैसे कई सुपरहिट गाने उनकी पहचान बन चुके हैं।
2: बिल्कुल, और नेहा कक्कड़ सिर्फ एक सफल गायिका ही नहीं बल्कि

0: लोकप्रिय रियलिटी शो इंडियन आइडल की जज भी रह चुकी है।
1: ये यूट्यूब डायमंड अवार्ड पाने वाली पहली भारतीय गायिका बनी है। उनका नाम फोर्ब्स इंडिया सेलिब्रिटी 100 और फोर्ब्स एशिया डिजिटल स्टार्स की सूची में शामिल रहा है।
0: बिल्कुल, और अब बात करते हैं भारतीय क्रिकेट के शानदार बल्लेबाज अलिंक्य रहाणे की। 6 जून 1988 को महाराष्ट्र में जन्मे रहाणे ने अपने शांत सोच, अनुशासन और बेहतरीन बल्लेबाजी के लिए वे जो है वो जाने जाते हैं।
1: रहाणे ने 2011 में भारत के लिए अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में डेब्यू किया था। टेस्ट क्रिकेट में उन्होंने कई महत्वपूर्ण शतक लगाए। इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड तथा दक्षिण अफ्रीका जैसे देशों में शानदार प्रदर्शन कर भारत को यादगार जीत दिलाने में योगदान दिया है।
0: उनके करियर का सबसे यादगार साल 2020-21 रहा, जब उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के दौर पर भारतीय टीम की कप्तानी संभाली और उनकी लीडरशिप में भारत ने बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी जीतकर इतिहास रचा। उनकी कप्तानी की जो आज है वो अभी भी मिसाल दी जाती है।
1: रहाणे को वर्ष 2016 में अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इसके अलावा उन्हें CET इंडियन क्रिकेट ऑफ द ईयर और MA चिदम्बरम ट्रॉफी जैसे प्रतिष्ठित सम्मान भी मिल चुके हैं। IPL में भी वे कई टीमों में महत्वपूर्ण हिस्सा रहे हैं।
0: दोस्तों, नेहा कक्कड़ और अजिंक्य रहाणे दोनों ही यह साबित करते हैं कि मेहनत, लगन और आत्मविश्वास से जो है कोई भी लक्ष्य जो है इजी हासिल किया जा सकता है। इसी के साथ दोनों को जन्मदिन की ढेरों शुभकामनाएं।

0: दोस्तों, अब आज के मेगा प्रोजेक्ट्स में हम बात करेंगे भारत की सबसे चुनौतीपूर्ण और ऐतिहासिक रेलवे परियोजनाओं में से एक कोंकण रेलवे की।
1: कोंकण रेलवे भारत के पश्चिमी तट पर स्थित 756 किलोमीटर लंबा रेल मार्ग है जो महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटक को जोड़ता है। इसका मुख्यालय नवी मुंबई में है।
0: एक समय इस क्षेत्र से जो है वो रेलवे यात्रा बेहद कठिन होती थी। पहाड़ों, नदियों, घाटियों और घने जंगलों के कारण यहाँ रेलवे लाइन बिछाना लगभग असंभव माना जाता था।
1: इस महत्वाकांक्षी परियोजना को साकार करने में जॉर्ज फर्नांडिस, मधु दंडवते और प्रसिद्ध इंजीनियर ई श्रीधरन की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। इसके लिए कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन लिमिटेड का गठन किया गया था।
0: यह एशिया की सबसे बड़ी रेलवे परियोजनाओं में गिनी जाती है। पूरे मार्ग में 2116 से अधिक पुल और 92 सुरंग बनाई गई है। रत्नागिरी के पास लगभग 6.5 किलोमीटर लंबी करबुंडे सुरंग और शरावती नदी पर लगभग 2 किलोमीटर लंबा पुल इसकी प्रमुख उपलब्धियां हैं।
1: निर्माण के दौरान भूस्खलन, बाढ़, सुरंगों के धंसने और कठिन मौसम जैसी कई चुनौतियां आईं, लेकिन इंजीनियरों और श्रमिकों ने इसे सफलतापूर्वक पार किया।
0: इस मार्ग पर पहली ट्रेन यात्रा 20 मार्च 1993 को उडुपी और मंगलुरु के बीच चली। इसके बाद विस्तार हुआ और 26 जनवरी 1998 को पूरी लाइन राष्ट्र को समर्पित कर दी गई।
1: कोंकण रेलवे ने मुंबई, गोवा, मंगलुरु, कोची और तिरुवनंतपुरम के बीच यात्रा का समय कम किया तथा पर्यटन, व्यापार और रोजगार को नई गति दी। तकनीकी दृष्टि से भी यह परियोजना खास है। यहाँ एंटी कोलिजन डिवाइस विकसित किए गए हैं और भारत की पहली रो रो सेवा शुरू हुई है जिसमें ट्रकों को सीधे रेल वेगनों पर ले जाया जाता है।
0: हाल के वर्षों में पूरे मार्ग का जो है विद्युतीकरण पूरा हो चुका है, साथ ही कई हिस्सों में दोहरी रेलवे लाइन और आधुनिक सुविधाओं का विस्तार भी किया जा रहा है।
1: आज तेजस एक्सप्रेस, वंदे भारत, नेत्रावती एक्सप्रेस, मत्स्यगंधा एक्सप्रेस, मंगला एक्सप्रेस और राजधानी एक्सप्रेस जैसी कई महत्वपूर्ण ट्रेनें इसी मार्ग से गुजरती हैं।
0: बिल्कुल, ये एक रेल परियोजना नहीं बल्कि भारतीय इंजीनियरिंग कौशल, आधुनिक तकनीक और दृढ़ संकल्प का शानदार प्रतीक भी है।
1: और यही कारण है कि कोंकण रेलवे को भारत के सबसे सफल, चुनौतीपूर्ण और प्रेरणादायक मेगा प्रोजेक्ट्स में गिना जाता है।

0: दोस्तों आज यानी 6 जून को भारतीय सिनेमा की दो ऐसी महान हस्तियों का जन्मदिन है जिन्होंने अपने अपने क्षेत्र में इतिहास रचा। दोस्तों एक है भारतीय फिल्म उद्योग के दिग्गज निर्माता डी रामा नायडू, दूसरे हैं हिंदी सिनेमा के महान अभिनेता और समाजसेवी सुनील दत्त।
1: दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं दग्गुबाती रामा नायडू की, जिनका जन्म 6 जून 1936 को आंध्र प्रदेश के करमचेडु गांव में हुआ था। उन्होंने 1964 में सुरेश प्रोडक्शन की स्थापना की, जो आगे चलकर भारत की सबसे बड़ी फिल्म निर्माण कंपनियों में से एक बनी।
0: उन्होंने केवल तेलुगु ही नहीं बल्कि हिंदी, तमिल, कन्नड़ और मलयालम, बंगाली, मराठी, भोजपुरी और कई अन्य भाषाओं में भी फिल्में बनाई। उन्होंने 150 से अधिक फिल्मों का निर्माण किया और इसी उपलब्धि के लिए उनका नाम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हुआ।
1: उनकी चर्चित फिल्मों में रामड्डू भीमड्डू, प्रेम नगर, बो बिल्ली, राजा मल्लीश्वरी और दृश्यम जैसी फिल्में शामिल हैं। भारतीय सिनेमा में उनके असाधारण योगदान के लिए उन्हें 2009 में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार

0: और 2012 में पद्म भूषण और साथ ही 1964 में नेशनल फिल्म अवार्ड्स फॉर बेस्ट फीचर फिल्म इन हिंदी यादें मूवी के लिए दिया गया था। 1968 में पद्मश्री और 1998 में राजीव गांधी नेशनल सद्भावना अवार्ड्स और साथ ही 2005 में ग्लोरी ऑफ इंडिया अवार्ड्स बाय IIFS लंदन से सम्मानित किया गया था।
1: फिल्मों के अलावा वे सामाजिक कार्यों से भी जुड़े रहे। उन्होंने रामा नायडू चैरिटेबल ट्रस्ट के माध्यम से कई जन कल्याणी कार्य किए और 1999 से 2004 तक लोकसभा सांसद के रूप में भी सेवाएं दी।
0: तो दोस्तों अब बात करते हैं सुनील दत्त की, जिनका जन्म 6 जून 1929 को अविभाजित भारत के जेलम जिले में हुआ था। उनका वास्तविक नाम बलराज दत्त था। फिल्मों में आने से पहले वे रेडियो सिलोन में उद्घोषक के रूप में भी कार्य कर चुके हैं।
1: सुनील दत्त ने मदर इंडिया से देश भर में पहचान बनाई। इसके बाद साधना, वक्त, मेरा साया, मिलन, पड़ोसन और मुन्ना भाई MBBS जैसी फिल्मों में उनके अभिनय को खूब सराहा गया। वे 5 दशकों तक भारतीय सिनेमा के मुख्य सितारों के रूप में भी शामिल रहे।
0: 1968 में उन्हें भारतीय सिनेमा में योगदान के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया। बाद में उन्हें फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी मिला। वे अभिनेता होने के साथ साथ निर्माता और निर्देशक भी रहे तथा उनकी फिल्में यादें अपने अनोखे प्रयोग के लिए आज भी याद की जाती है।
1: सुनील दत्त का जीवन केवल फिल्मों तक सीमित नहीं रहा। वे 5 बार लोकसभा सांसद चुने गए और केंद्र सरकार में युवा एवं खेल मंत्री भी रहे। सामाजिक सद्भाव और शांति के लिए उन्हें कई पद यात्राएं की और लोगों के बीच भाईचारे का संदेश भी दिया।
0: तो दोस्तों एक और दग्गुबाती रमा नायडू ने भारतीय फिल्म निर्माण को नई ऊंचाइयां दी, तो दूसरी ओर सुनील दत्त ने अभिनय, समाज सेवा और राजनीति तीनों क्षेत्र में अपनी अलग पहचान बनाई। इसी के साथ हम इन दोनों महान हस्तियों को जन्मदिन की ढेरों बधाई देते हैं और भारतीय सिनेमा में उनके अमूल्य योगदान को याद करते हैं।

0: समझे हैं? हाँ?
1: दोस्तों अब बात करेंगे दो ऐसी हस्तियों की जिन्होंने अपने अपने क्षेत्र में अमिट पहचान बनाई। एक और है टेनिस जगत के दिग्गज खिलाड़ी बियोन बर्ग, जिनका जन्मदिन है, वहीं दूसरी ओर है प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक कार्ल गुस्ताव युंग, जिनकी आज पुण्यतिथि है।
2: बिल्कुल मोहित, शुरुआत करते हैं बियोन बर्ग से। उनका जन्म 6 जून 1956 को स्वीडन के स्टॉकहोम में हुआ था। उन्होंने अपने करियर में 11 ग्रैंड स्लैम खिताब जीते, जिनमें 6 फ्रेंच ओपन और लगातार 5 विंबलडन चैंपियनशिप शामिल है।
1: उन्हें उनके शानदार प्रदर्शन के लिए 1976 से 1980 तक लगातार ATP प्लेयर ऑफ द ईयर चुना गया। उन्हें 1979 में BBC ओवरसीज स्पोर्ट पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर भी मिला और 1987 में इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फ्रेम में शामिल भी किया गया। उनकी फिटनेस, मानसिक दृढ़ता और खेल भावनाओं के कारण उन्हें आइसबर्ग के नाम से भी जाना जाता है।
2: वहीं कार्ल गुस्ताव युंग आधुनिक मनोवैज्ञानिक के सबसे प्रभावशाली विचारकों में से एक थे। उन्होंने एनालिटिकल साइकोलॉजी की स्थापना की।
1: युंग ने ज्यूरिक के हॉस्पिटल में शोध का कार्य किया और मानव मन को समझने के लिए नए दृष्टिकोण प्रस्तुत किए।
2: उनके योगदान को देखते हुए उन्हें क्लार्क यूनिवर्सिटी, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड और यूनिवर्सिटी ऑफ जिनेवा सहित अनेक प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में मादक डायरेक्टर उपाधि से सम्मानित किया गया और उन्हें 1932 में ज्यूरिक साहित्य पुरस्कार भी प्राप्त हुआ था।
1: और आज यानी 6 जून 1961 को उनका निधन हुआ, लेकिन उनके विचार आज भी दुनिया भर में अध्ययन और शोध का आधार बने हुए हैं। वहीं बियोन बर्ग का नाम आज भी टेनिस इतिहास में स्वर्णिम अध्यायों में लिखा जाता है।
2: इसी के साथ बियोन बर्ग को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं और कार्ल गुस्ताव युंग को उनकी पुण्यतिथि पर विनम्र श्रद्धांजलि।

0: दोस्तों अब बात करते हैं पीएम युवा 3.0 योजना की। यह केंद्र सरकार की एक खास पहल है जिसका उद्देश्य देश के युवा लेखकों को आगे बढ़ाना है और उनकी लेखन प्रतिभा को निखारना है। इस योजना की शुरुआत 11 मार्च 2025 को की गई थी।
1: बिल्कुल मोहित, भारत को युवाओं का देश कहा जाता है और इसी सोच के साथ ये योजना शुरू की गई है। इसके तहत 30 वर्ष या उससे कम आयु के युवा लेखक अपनी पुस्तक का प्रस्ताव भेज सकते हैं और चयन होने पर उन्हें अनुभवी लेखकों का मार्गदर्शन मिलेगा।
0: इस बार योजना के लिए 3 प्रमुख विषय तय किए गए हैं। राष्ट्र निर्माण में भारतीय प्रवासी समुदाय का योगदान, भारतीय ज्ञान परंपरा और आधुनिक भारत के निर्माता 1950 से 2025 तक। प्रतिभागियों को इन विषयों पर लगभग 10,000 शब्दों तक जो है पुस्तक का प्रस्ताव जो है वो तैयार करना पड़ेगा।
1: योजना के तहत पूरे देश से 50 युवा लेखकों का चयन किया जाएगा। चयनित प्रतिभागियों को 6 माह तक 50,000 रुपये प्रति माह की छात्रवृत्ति दी जाएगी, यानी कुल 3 लाख रुपये की सहायता मिलती है। इसके अलावा पुस्तक प्रकाशित होने पर 10% रॉयल्टी भी प्रदान की जाती है।
0: और खास बात यह है कि चयनित लेखकों को प्रसिद्ध लेखकों और विशेषज्ञों से प्रशिक्षण और मार्गदर्शन भी मिलता है। उन्हें पुस्तक प्रकाशन की प्रक्रिया, साहित्य कार्यक्रम और पुस्तक मेलों से भी जोड़ा जाता है जिससे उनकी लेखन क्षमता और बेहतर हो सके।
1: कुल मिलाकर पीएम युवा 3.0 योजना का उद्देश्य देश में पढ़ने और लिखने की संस्कृति को बढ़ावा देना, नई लेखकीय प्रतिभाओं को मंच देना और भारतीय ज्ञान, संस्कृति तथा विचारों को दुनिया तक पहुँचाना है। दोस्तों, यह योजना युवा लेखकों के लिए एक बड़ा अवसर साबित हो रही है।

0: UPI पिन एंट्रिंग सिर्फ पैसे भेजने के लिए है।
1: RBI कहता है,
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: दोस्तों, अब समय है कार्यक्रम के खास हिस्से आज के इतिहास का, यानी 6 जून के दिन इतिहास में क्या क्या खास घटनाएं हुई, आइए जानते हैं।
4: सबसे पहले बात करते हैं साल 1674 की। तो आज ही के दिन महान मराठा योद्धा छत्रपति शिवाजी महाराज का रायगढ़ किले में राज्याभिषेक हुआ था। इस अवसर पर उन्हें छत्रपति की उपाधि प्रदान की गई और मराठा साम्राज्य को नई पहचान मिली।
3: बात करें साल 1933 की, तो आज के दिन दुनिया का पहला ड्राइव इन मूवी थिएटर अमेरिका के न्यू जर्सी में शुरू किया गया था। इसमें लोग अपनी कार में बैठकर बड़े पर्दे पर फिल्म देखते थे।
4: अब बात करते हैं साल 1946 की। तो आज ही के दिन दुनिया की सबसे प्रसिद्ध बास्केटबॉल लीग NBA की स्थापना हुई थी। आज NBA दुनिया की प्रमुख पेशेवर बास्केटबॉल प्रतियोगिताओं में गिनी जाती हैं।
3: बात करें साल 1984 की, तो आज के दिन प्रसिद्ध वीडियो गेम टेट्रिस पहली बार जारी किया गया था। यह गेम बाद में दुनिया के सबसे लोकप्रिय और सबसे ज़्यादा खेले जाने वाले वीडियो गेम में शामिल है।
4: 1844 में आज ही के दिन लंदन में YMCA यानी यंग मैंस क्रिश्चियन एसोसिएशन की स्थापना हुई थी। यह संस्था आज दुनिया के अनेक देशों में युवाओं के विकास और सामाजिक गतिविधियों के लिए जानी जाती है।
3: तो दोस्तों, ये थी 6 जून से जुड़ी कुछ खास ऐतिहासिक घटनाएं।

0: तो दोस्तों चलते हैं अब खेल जगत की ओर।
1: बिल्कुल, इंग्लैंड दौरे से पहले भारतीय क्रिकेट टीम को लेकर एक दिलचस्प खबर सामने आई है। युवा बल्लेबाज साई सुदर्शन को टेस्ट टीम में तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी का मौका मिल सकता है। हाल के प्रदर्शन को देखते हुए टीम प्रबंधन का उन पर भरोसा भी जताया जा रहा है।
0: तो दोस्तों अब आपको बता दें, विभव सूर्यवंशी भारतीय क्रिकेट टीम में चुने गए हैं और ये सबसे युवा क्रिकेटर है जो भारतीय क्रिकेट टीम में चुने गए हैं। इनकी उम्र 15 साल 71 दिन की उम्र में इनका सिलेक्शन हुआ है और श्रेयस अय्यर T20 में नए कप्तान रहेंगे।
1: अब बढ़ते हैं फुटबॉल की ओर। अगले साल होने वाले फीफा विश्व कप में पनामा सबसे युवा टीमों में से एक होगी।
0: वहीं एथलेटिक्स में श्रीलंका के रमेश थरंगा चर्चा में, उन्हें 92.62 मीटर का भाला फेंककर शानदार प्रदर्शन किया है। दोस्तों अब बात करते हैं रोजगार समाचार की, जहां हम आपको बताते हैं देश भर से निकली नई नौकरियां और भर्तियों के अवसरों की जानकारी।
1: बिल्कुल गार्गी, जून और जुलाई 2026 में युवाओं के लिए कई शानदार अवसर सामने आए हैं, जिसमें पहले बात करते हैं SSC CGL 2026 की, जिसमें 12,000 से अधिक पदों पर भर्ती जारी की जा रही है।
0: वहीं भारतीय रेलवे ने RRB असिस्टेंट लोको पायलट के 11,000 से अधिक पदों पर आवेदन आमंत्रित किए हैं। रेलवे में करियर बनाने वालों का सपना देखने वाले युवाओं के लिए यह सुनहरा अवसर है।
1: तो दोस्तों आज के प्रोग्राम में इतना ही। इस सॉन्ग के साथ लेते हैं आपसे इजाजत। आज मैं था आपके साथ आपका रेडियो दोस्त मोहित, और मेरे साथ थी
0: गार्गी। नमस्कार।

0: आकाशवाणी के उदयपुर केंद्र से हो रहा था। शाम के 6 बजने वाले हैं। आकाशवाणी दिल्ली से सुनिए समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं आकर्षिता सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज प्रधानमंत्री आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्यों के साथ बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में वैश्विक उथल पुथल के दौर में भारत की आर्थिक वृद्धि को बढ़ाने के उपायों पर चर्चा हुई। जीवन यापन और व्यापार को सुगम बनाने के लिए विभिन्न सुधारों पर भी विचार विमर्श किया गया। सदस्यों ने भारत और विश्व पर पश्चिम एशिया संघर्ष से पड़ने वाले प्रभाव का भी आकलन प्रस्तुत किया। प्रधानमंत्री ने देश की आर्थिक परिवर्तन और दीर्घकालिक विकास प्राथमिकताओं से संबंधित विषयों पर विचार विमर्श किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि ऐसे समय में जब कई देश आर्थिक अनिश्चितताओं का सामना कर रहे हैं, भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था के रूप में अपनी विशिष्टता बनाए हुए है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने आर्थिक विकास को स्थिरता, आत्मविश्वास, निरंतरता और विश्वसनीयता के साथ जोड़ा है। युवा और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा है कि युवा देश की सबसे बड़ी शक्ति है और वर्ष 2047 तक विकसित भारत का सपना पूरा करने में अग्रणी भूमिका निभाएंगे। नई दिल्ली में विकसित भारत के लिए युवा माई भारत यूथ कन्वेंशन में श्री मांडविया ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र निर्माण में युवाओं की आकांक्षाओं, विचारों और स्वैच्छिक योगदान की भावनाओं को साझा करने के लिए देश को ये मंच प्रदान किया है।
2: देश का 65 पॉपुलेशन बिलो 35 है, यानी कि देश युवा देश है। ये देश की युवा की शक्ति को विकसित भारत के राह पर ले जाने के लिए संयोजने का काम नरेंद्र मोदी जी ने करा है।
1: संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में भारत की सौर ऊर्जा क्षमता 2.8 गीगावाट से बढ़कर 155 गीगावाट हो गई है। श्री शेखावत ने कहा कि हर घर और हर खेत को ऊर्जा का केंद्र बनाने के संकल्प के साथ भारत 500 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि पश्चिम बंगाल में लंबे समय से लंबित रेलवे परियोजनाओं का समाधान होने से राज्य में रेलवे अवसंरचना विकास के एक नए युग की शुरुआत होगी। कोलकाता के नबन्ना में श्री वैष्णव ने बताया कि वर्ष 2026-27 के रेल बजट में पश्चिम बंगाल के लिए 14,205 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। रेल मंत्री ने अगले 5 वर्षों में कोलकाता मेट्रो के लिए 60 नई रेलगाड़ियों को शुरू करने की घोषणा की। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष नितिन नवीन झारखंड के 2 दिन के दौरे पर आज रांची पहुंचे। उन्होंने कहा कि झारखंड उनकी जन्मस्थली और दूसरा घर है। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी और पार्टी के अन्य पदाधिकारियों तथा कार्यकर्ताओं ने श्री नवीन की यात्रा को संगठन के लिए महत्वपूर्ण बताया। केंद्र सरकार ने कानूनी माप प्रणाली के अंतर्गत खाद्य तेलों के लिए मानक पैकिंग लागू की है। इससे बाजार में अधिक पारदर्शिता और एकरूपता आएगी। उपभोक्ता कार्य विभाग ने खाद्य तेलों और घी की शुद्ध मात्रा तथा मानक पैक आकार निर्धारित करने संबंधी मानक संचालन प्रक्रिया में संशोधन किया है। स्वीकृत पैक आकार 200 ग्राम, 500 ग्राम, 1 से 5 किलो, 15 और 20 किलो हैं। न्यू चंडीगढ़ में भारत और अफगानिस्तान के बीच एकमात्र टेस्ट मैच के पहले दिन का खेल समाप्त होने तक भारत ने 3 विकेट पर 368 रन बना लिए हैं। कप्तान शुभमन गिल 103 और ऋषभ पंत 50 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद हैं। केएल राहुल ने भी 100 रन की पारी खेली। जापान में भारतीय अंडर 18 पुरुष टीम ने एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट जीत लिया है। फाइनल में भारत ने जापान को 4-1 से हराया। आशीष तानीपूटी ने 3 और कप्तान केतन कुशवाहा ने 1 गोल किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय हॉकी टीम को बधाई दी है। श्री मोदी ने कहा कि टीम ने पूरे टूर्नामेंट में असाधारण कौशल और टीम वर्क का प्रदर्शन किया। प्रधानमंत्री ने अंडर 18 एशिया कप में कांस्य पदक जीतने पर भारतीय महिला टीम को भी बधाई दी है। मौसम विभाग ने केरलम और माही में कल तक मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों, तेलंगाना, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, रायलसीमा, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप में भी आज ऐसी ही स्थिति बनी रहने की संभावना है।

0: समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: इस वक्त आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का उदयपुर केंद्र। श्रोताओं, आनंद लीजिए फिल्म संगीत का। सबसे पहले सुनते हैं महालक्ष्मी अय्यर की आवाज में फिल्म सुर का ये गाना।

किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाज़ में अभी आपने बसेरा फिल्म का गाना सुना। श्रोताओं, आप सुनिए सुरेश वाडकर की का गाया गाना। फिल्म का नाम है उत्सव।

हम दिल दे चुके सनम, इस फिल्म का गाना अभी आप सुन रहे थे। कविता कृष्णमूर्ति, मोहम्मद सलामत और डोमिनिक की आवाज़ में ये फिल्म संगीत का आखिरी गाना था। और इसके साथ ही फिल्म संगीत का प्रोग्राम अब यहीं समाप्त

0: आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्यों के साथ जीवन स्तर सुधार और कारोबारी सुगमता के उपायों पर चर्चा की। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने एसएमएस अस्पताल का औचक निरीक्षण किया, कहा स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। केंद्रीय युवा कार्य और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने युवाओं को विकसित भारत के सपने को साकार करने वाली प्रेरक शक्ति बताया। और राज्य में प्री मॉनसून गतिविधियों के कारण अधिकतर स्थानों पर तापमान में गिरावट, आज और कल भी आंधी बारिश का सिलसिला जारी रहने के आसार। समाचारों के साथ मैं जितेंद्र सिंह पूनिया, और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज प्रधानमंत्री आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्यों के साथ बैठक की। इस दौरान वैश्विक उथल पुथल के दौर में भारत की आर्थिक वृद्धि को और बढ़ावा देने के लिए विभिन्न उपायों पर चर्चा की गई। साथ ही लोगों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने और व्यापार सुगमता के लिए भी कई सुधारों पर मंथन किया गया। सदस्यों ने पश्चिम एशिया संघर्ष के देश दुनिया पर पड़ने वाले प्रभाव का भी आकलन प्रस्तुत किया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आज जयपुर में एसएमएस अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। श्री शर्मा धनवंतरी ओपीडी यूनिट पहुंचे। इस दौरान उन्होंने अस्पताल की व्यवस्थाओं को लेकर मरीजों से फीडबैक लिया। मुख्यमंत्री ने विभिन्न वार्डों के रोगियों से भी बातचीत कर इंतजामों की जानकारी ली। श्री शर्मा ने अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर मृणाल जोशी और अधिकारियों को मरीजों के लिए जांच सुविधाएं और जरूरी दवाइयों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। मीडिया से बातचीत में मुख्यमंत्री ने कहा कि एसएमएस देश का प्रतिष्ठित अस्पताल है, यहां प्रदेश के साथ ही दूसरे राज्यों से भी मरीज इलाज के लिए आते हैं, ऐसे में स्वास्थ्य सेवाओं का मजबूत होना आवश्यक है। उन्होंने कहा कि अस्पताल में जहां भी सुधार की गुंजाइश है, इसके लिए जरूरी कदम उठाए जाएंगे।
1: या दूसरे प्रदेशों से भी पेशेंट आते हैं, यहाँ की व्यवस्थाएं अच्छी हो, समय पे काम हो, किसी भी मरीज को कोई परेशानी नहीं हो, आज यही देखने के लिए मैं आया हूँ। मैंने मरीजों से भी बात की, तभी मरीजों ने कहा है कि समय पे हमारी जांच हो रही है, दवाइयाँ भी मिल रही हैं, उनका काम हो रहा है, कि हम सबका दायित्व है कि हम उन सबकी सेवा करें, उनको किसी तरह की परेशानी नहीं हो। हमारी सरकार पूरी तरह से आम जन के साथ, हर व्यक्ति के साथ है, उनकी हर समस्या का समाधान करने के लिए हम पूरा प्रयास कर रहे हैं, लेकिन सुधार की आवश्यकता हमेशा है। जो होगा उसको और सुधार करके अच्छा कैसे करें, इस पर हम चर्चा करें।
0: मुख्यमंत्री के साथ चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग की प्रमुख शासन सचिव गायत्री राठौड़ और एसएमएस मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर दीपक माहेश्वरी सहित अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे। केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा है कि पिछले 12 वर्षों में देश की सौर ऊर्जा क्षमता 2.8 गीगावाट से बढ़कर 155 गीगावाट हो गई है। श्री शेखावत ने आज सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि 40 लाख से अधिक घरों में सौर ऊर्जा का उपयोग हो रहा है। कृषि क्षेत्र में सौर ऊर्जा क्षमता का दोगुना होना पर्यावरण संरक्षण के साथ साथ प्रगति का प्रमाण है। उन्होंने कहा कि देश के किसान अब केवल खाद्य उत्पादक ही नहीं बल्कि ऊर्जा उत्पादक भी हैं। श्री शेखावत ने कहा कि हर घर और हर खेत को ऊर्जा का केंद्र बनाने के संकल्प के साथ भारत 500 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता के लक्ष्य की ओर तेजी से अग्रसर है। श्री शेखावत आज जोधपुर पहुंचे। मीडिया से बातचीत में श्री शेखावत ने कहा कि पिछले 12 सालों में सुशासन से देश की तस्वीर बदली है।
2: यदि इस 12 साल के कालखंड को केवल एक वाक्य में समाहित करना हो तो मैं ये कहूंगा कि 12 साल पहले 2014 से पूर्व देश में जिस तरह से लोकतंत्र के प्रति, व्यवस्था के प्रति,

0: अविश्वास का माहौल पैदा हो गया, वहां से निकल करके देश को हम भी विकसित हो सकते हैं, आत्मनिर्भर हो सकते हैं, इस विश्वास से परिपूरित करके 2047 तक आत्मनिर्भरता का लक्ष्य देश के 140 करोड़ लोगों के संकल्प के रूप में उभरा, ये 12 साल की सफलता है।
1: भारतीय जनता पार्टी के नवनियुक्त प्रदेश संगठन महामंत्री अजय कुमार आज अपने पहले दौरे पर जयपुर पहुंचे। संगठन महामंत्री ने भाजपा प्रदेश कार्यालय में प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक लेकर संगठन के कामों और गतिविधियों की जानकारी ली। वे कल भाजपा मीडिया टीम और प्रवक्ताओं की विशेष बैठक लेंगे। उनका ये प्रवास संगठन को मजबूती देने और कार्यकर्ताओं में नई ऊर्जा देने के लिहाज से काफी अहम माना जा रहा है। मुख्य सचिव वी श्रीनिवास ने प्रदेश में विभिन्न विभागों की लंबित और प्रक्रियाधीन भर्तियों की आज समीक्षा की। उन्होंने विभागों को भर्ती प्रक्रिया से संबंधित आवश्यक कार्यवाहियों को जल्द पूरा करने के निर्देश दिए। आज जयपुर में हुई बैठक में मुख्य सचिव ने गृह विभाग, प्रशासनिक सुधार विभाग, पंचायती राज विभाग, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी, शिक्षा और चिकित्सा तथा नर्सिंग की भर्तियों की विभागवार समीक्षा की। मुख्य सचिव ने कहा कि भर्ती प्रक्रियाओं की नियमित मॉनिटरिंग की जाए और विभाग स्तर पर लंबित मामलों को प्राथमिकता से निस्तारित किया जाए। मुख्य सचिव ने स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 के तहत आज प्रदेश के चार शहरों जयपुर, उदयपुर, अलवर और नाथद्वारा के स्वच्छता सर्वेक्षण की तैयारियों और नवाचारों की समीक्षा की। उन्होंने नगर निकायों के साफ सफाई के कामों को अधिक प्रभावी और जन भागीदारी आधारित बनाने के निर्देश दिए। बैठक में इन शहरों में स्वच्छता प्रबंधन, कचरा संग्रहण, अपशिष्ट प्रसंस्करण और जन जागरूकता के लिए किए जा रहे कामों की जानकारी दी गई। मुख्य सचिव ने स्वच्छता व्यवस्था में ऑटोमेटेड पेनल्टी सिस्टम के नवाचार की सराहना करते हुए साफ सफाई में तकनीक के ज्यादा से ज्यादा उपयोग पर जोर दिया। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने अंक सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि बढ़ाकर 7 जून कर दी है। CBSE ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि छात्र अब कल मध्य रात्रि तक अपने आवेदन जमा कर सकेंगे। इससे पहले आवेदन जमा कराने की अंतिम तिथि 6 जून निर्धारित थी। CBSE ने सभी पात्र छात्रों से बढ़ी हुई समय सीमा का ध्यान रखते हुए निर्धारित अवधि के भीतर आवेदन प्रक्रिया पूरी करने की अपील की है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। इसके साथ ही आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर भी समाचार सुन सकते हैं और संबंधित फोटो और वीडियो देख सकते हैं। केंद्रीय युवा कार्य और खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने युवाओं को विकसित भारत के सपने को साकार करने वाली प्रेरक शक्ति बताया है। नई दिल्ली में आयोजित मेरा भारत युवा सम्मेलन में डॉ. मांडविया ने कहा कि भारत दुनिया के सबसे युवा देशों में से एक है। यहाँ की 65% आबादी 35 साल से कम आयु की है। उन्होंने कहा कि सरकार राष्ट्र निर्माण और विकसित भारत के लक्ष्य के लिए युवा ऊर्जा और क्षमता को सही दिशा देने के लिए लगातार प्रयास कर रही है।
2: देश का 65 पॉपुलेशन बिलो 35 है, यानी कि देश युवा देश है। ये देश की युवा की शक्ति को विकसित भारत के राह पर ले जाने के लिए संयोजने का काम नरेंद्र मोदी जी ने करा है।
1: बहरोड में आज अलवर सांसद खेल उत्सव के तहत समर कैंप का शुभारंभ हुआ। केंद्रीय वन और पर्यावरण मंत्री तथा अलवर सांसद भूपेंद्र यादव और उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने कार्यक्रम में शिरकत की। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री ने कहा कि खेलों से अनुशासन, टीम भावना और नेतृत्व क्षमता का विकास होता है। उन्होंने कहा कि समर कैंप से युवाओं की प्रतिभा को पहचानने का भी अवसर मिलता है।
3: हम सबको इससे बहुत कुछ सीखने को मिलता है, हमको प्रेरणा मिलती है कि हम लोग भी हमारे क्षेत्र में इस तरह का आयोजन करें। इसमें बहुत सारा जो हिडन टैलेंट है स्पोर्ट्स के क्षेत्र में वो निकल कर बाहर आए। पूरा ओवरऑल पर्सनैलिटी डेवलपमेंट पे भी ध्यान दिया गया है। योगा, मेडिटेशन, डिसिप्लिन, फिटनेस, डाइट, इन सब चीजों को यहाँ पर प्रशिक्षण मिला है इस पूरे कैंप में।
1: फिट इंडिया मूवमेंट और संडे ऑन साइकिल अभियान के तहत कल लोगों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहने का संदेश दिया जाएगा। बाड़मेर में पुलिस

0: की ओर से साइकिल रैली निकाली जाएगी। वहीं पाली में साइकिल रैली के जरिए लोगों को नियमित व्यायाम करने के लिए जागरूक किया जाएगा। चूरू जिले में पर्यावरण संरक्षण और हरियाली बढ़ाने के लिए विभिन्न ग्राम पंचायतों में खेजड़ी वाटिकाएं विकसित की गई हैं। राज्य वृक्ष और थार कल्प वृक्ष मानी जाने वाली खेजड़ी के संरक्षण के प्रयास के तहत ये पहल की गई है। वन विभाग ने एक जिला एक वनस्पति के रूप में खेजड़ी का चयन कर करीब 1.5 करोड़ खेजड़ी पौध तैयार की है। हमारे चूरू संवाददाता ने बताया कि जल्द ही इनका वितरण भी शुरू किया जाएगा।
1: राज्य वृक्ष खेजड़ी को बढ़ावा देने के उद्देश्य से चूरू जिले को एक जिला एक वनस्पति के रूप में खेजड़ी वृक्ष का चयन वन विभाग ने कर लिया है, जिसके तहत जिले में 5 तहसील मुख्यालयों पर खेजड़ी के वृक्ष के लिए वाटिका तैयार कर ली गई है, जिसमें 1,52,00,000 खेजड़ी के पौधे तैयार कर लिए गए हैं, जिनको आगामी दिनों में विभिन्न संस्थाओं व विभाग द्वारा लगाए जाएंगे। श्रवण शर्मा, आकाशवाणी समाचार, चूरू।
0: राज्य में प्री मॉनसून गतिविधियों के कारण अधिकतर स्थानों पर तापमान में 5 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट आई है। इससे कई शहरों का दिन का तापमान 35 डिग्री सेल्सियस से नीचे पहुंच गया है। पिछले कई दिनों से तेज गर्मी और तपिश झेल रहे लोगों को बदले मौसम से काफी राहत मिली है। हालांकि पश्चिमी राजस्थान के कुछ जिलों में तेज गर्मी का असर बना हुआ है। जैसलमेर, श्रीगंगानगर और बाड़मेर में दिन का पारा 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर मापा जा रहा है। मौसम विभाग के अनुसार आज प्रदेश के 25 जिलों में आंधी और बरसात के आसार हैं। राज्य के ऊपर बने परिसंचरण तंत्र के प्रभाव से आंधी बारिश की गतिविधियां आज और कल कई हिस्सों में जारी रह सकती हैं। वहीं 8 जून से एक बार फिर गर्मी का असर बढ़ने और हीट वेव चलने की चेतावनी बताई गई है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई ने इंग्लैंड और आयरलैंड के साथ होने वाली टी20 श्रृंखला के लिए भारतीय टीम की घोषणा कर दी है। श्रेयस अय्यर को टीम का कप्तान बनाया गया है, वहीं तिलक वर्मा उप कप्तान होंगे। वैभव सूर्यवंशी को पहली बार टीम में शामिल किया गया है। वैभव ने आईपीएल 2026 में सबसे ज्यादा रन बनाए थे। प्रिंस यादव को भी टीम में जगह मिली है। मुंबई में मुख्य चयनकर्ता अजीत अगरकर और बीसीसीआई सचिव देवजीत सैकिया की अध्यक्षता में भारतीय टीम की चयन समिति की बैठक के बाद टीम का ऐलान किया गया। जापान में होने वाले एशियाई खेलों और भारत के श्रीलंका दौरे के लिए भी टीम का चयन किया गया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्यों के साथ जीवन स्तर सुधार और कारोबारी सुगमता के उपायों पर चर्चा की। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने एसएमएस अस्पताल का औचक निरीक्षण किया, कहा स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। केंद्रीय युवा कार्य और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने युवाओं को विकसित भारत के सपने को साकार करने वाली प्रेरक शक्ति बताया। और राज्य में प्री मॉनसून गतिविधियों के कारण अधिकतर स्थानों पर तापमान में गिरावट, आज और कल भी आंधी बारिश का सिलसिला जारी रहने के आसार। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर है। अब आप सिद्धार्थ जैन से नागौर जिले की चिट्ठी सुनिए। इसका आलेख श्यामलाल ने तैयार किया है। राज्य के उत्तर पश्चिमी मारवाड़ क्षेत्र में स्थित जिला नागौर 7 जिलों से घिरा हुआ है। महाभारत काल में इसे जंगलादेश के नाम से जाना जाता था। नागौर खींवसर और कुचामन के किले के साथ ही मकराने के मार्बल के लिए ये जिला अपनी अलग पहचान रखता है। रामदेव पशु मेले और वीर तेजाजी मेले में भाग लेने के लिए देश भर से लोग यहाँ पहुँचते हैं। नागौर जिले की चिट्ठी में आज कई मंत्रियों के दौरे और सामाजिक तथा विकास से जुड़े समाचार शामिल हैं। सबसे पहले बात केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के दौरे की। केंद्रीय मंत्री बीते दिनों नागौर आए और उन्होंने मेड़ता सिटी में आयोजित राव दूधा प्रतिमा का अनावरण समारोह में हिस्सा लिया। उन्होंने राव दूधा की वीरता, न्याय प्रियता और नारी सम्मान के प्रति उनके समर्पण को याद करते हुए कहा कि उनका जीवन आज भी प्रेरणा का स्रोत है। रक्षा मंत्री ने मेड़ता के मीरा महोत्सव के लिए केंद्र सरकार की ओर से 5 करोड़ रुपए की राशि देने की घोषणा भी की। समारोह में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी शामिल हुए। विश्व पर्यावरण दिवस पर जिले में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस दौरान पर्यावरण संरक्षण से जुड़ी इस दौरान पर्यावरण संरक्षण से जुड़ी गतिविधियां रखी गई। इस अवसर पर हरियालो राजस्थान अभियान

0: अभियान 2026 की शुरुआत हुई, जगह जगह पौधरोपण किया गया। साथ ही एक पेड़ माँ के नाम अभियान का तीसरा चरण भी शुरू हुआ। इससे एक दिन पहले वन विभाग की ओर से नागौर में लवकुश वाटिका से रन फॉर एनवायरमेंट का आयोजन किया गया। जिला कलेक्टर देवेंद्र कुमार ने इसे हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। दौड़ में प्रशासनिक अधिकारियों, पुलिस जवानों, विद्यार्थियों और एनसीसी कैडेट सहित सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। पर्यावरण दिवस के अवसर पर वंदे गंगाजल संरक्षण जन अभियान का समापन हुआ। इस अभियान की शुरुआत नागौर के जड़ा तालाब के पूजन के साथ हुई। इस दौरान पौधे लगाए गए और जल संरक्षण का संदेश दिया गया। अभियान के दौरान 12 दिन तक अलग अलग गतिविधियों के माध्यम से लोगों को अभियान से जोड़ा गया। इस दौरान जगह जगह साफ सफाई की गई और जल संरचनाओं की मरम्मत के कार्य हुए। जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री कन्हैया लाल चौधरी ने अभियान के तहत नागौर के प्रताप सागर तालाब की पाल पर जल पूजन कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस दौरान लोगों को जल संरक्षण की शपथ दिलाई गई। श्री चौधरी ने जिला कलेक्ट्रेट में जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ बैठक की और विभिन्न विभागों की योजनाओं तथा विकास कार्यों की प्रगति का जायजा लिया। जिले के ग्रामीण इलाकों में सड़क तंत्र को मजबूत बनाया जाएगा। राज्य सरकार ने इस वर्ष के बजट में सभी विधानसभा क्षेत्रों के लिए 62 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की थी। सार्वजनिक निर्माण विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव प्रवीण गुप्ता ने इस संबंध में सभी जिला कलेक्टरों को निर्देश जारी किए हैं। जिला परिषद सभागार में बीते दिनों जिला विकास समन्वय और निगरानी समिति दिशा की बैठक हुई। बैठक में सांसद हनुमान बेनीवाल और राज्य मंत्री डॉक्टर मंजू बाघमार ने अधिकारियों के साथ विकास कार्यों की गुणवत्ता, बिजली, पानी और सड़क निर्माण से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की। जिले में जनगणना 2027 के तहत प्रगणक घर घर जाकर मकानों का सूचीकरण का काम कर रहे हैं। इससे पहले 1 मई से 15 मई तक स्वयं गणना का काम किया गया। इसके लिए प्रशासन ने सभी विभागाध्यक्षों को कार्मिकों के साथ स्वयं गणना सुनिश्चित करने और हर कर्मचारी को कम से कम 10 अन्य परिवारों को प्रेरित करने के निर्देश दिए थे। राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी जन जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से चलाया गया ग्राम रथ अभियान ग्रामीण इलाकों में जागरूकता का प्रभावी माध्यम बना। अभियान के दौरान अधिकारियों ने योजना की पात्रता, आवेदन प्रक्रिया और लाभ प्राप्त करने के तरीकों के बारे में सरल भाषा में जानकारी दी। जिले में 9 से 14 वर्ष आयु वर्ग की बालिकाओं को सर्वाइकल कैंसर से बचाने के लिए टीके लगवाए गए। इस राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत जिला अस्पताल सहित विद्यालयों में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए। इसका उद्देश्य बालिकाओं को सर्वाइकल कैंसर से बचाव और टीकाकरण के महत्व के प्रति जागरूक करना था। नागौर जिले की चिट्ठी में इतना ही। नमस्कार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर में पेश है प्रादेशिक समाचार। खास समाचार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आर्थिक सलाहकार परिषद सागर जीवन स्तर माय सुधार और कारोबारी सुगमता रा जतन रबारा माय चर्चा कीनी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जयपुर रा एसएमएस अस्पताल रो चकदौरो कीनो, कहो स्वास्थ्य सेवा ने मजबूत बनावन सारू सगला जरूरी जतन करिया जावेला। युवा कार्य और खेल मंत्री मनसुख मांडविया नौजवाना ने विकसित भारत रो सपनो साचो करण वाली ताकत बताया। और राज्य में चौमासाओं पहली रही हलचल रे कारण घनखर ठोड़ा पारो उतरियो, काल ताई आंधी बारिश रो दौर चाल तो रहवन रा आसार। समाचारां सागे मैं सुदर्शन नाहर। अरे बस समाचार विगतवार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज हमारी आर्थिक सलाहकार परिषद सागे मीटिंग कीनी। वह दुनिया में चाल रही उथल पुथल बीच भारत री माली बरकत ने बधावो देवन सारू करिया जावन वाला न्यारा न्यारा जतन रे बारा माय चर्चा कीनी। मीटिंग में जनता री जिंदगी ने और बेहतर बनावन और कारोबार करण माय आसानी लावन सारू विचार करीचियो। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज जयपुर रा सवाई मानसिंह अस्पताल री धनवंतरी ओपीडी यूनिट रो दौरो कीनो। वह मरीजाओं अस्पताल री व्यवस्थावां रे बारा माय जानकारी लीनी। श्री शर्मा मरीजां सारू भांत भांत री

0: जांचा ना सुबिता जरूरी दवाइया री उपलब्धता और गर्मी माए छाया पानी री व्यवस्था तय करन रा हुकम दीना। मुख्यमंत्री हड्डी रोग कार्डियोलॉजी वार्ड और न्यूरोलॉजी वार्ड री व्यवस्थावां रा बारा माई मरीजां जानकारी लीनी। ई मौके वे कहो के अस्पताल माई चोखो काम फियो है पन फेर ही सुधार री गुंजाइश है।
1: या दूसरे प्रदेशों से भी पेशेंट आते हैं, यहाँ की व्यवस्थाएं अच्छी हो, समय पे काम हो, किसी भी मरीज को कोई परेशानी नहीं हो, आज यही देखने के लिए मैं आया हूँ। मैंने मरीजों से भी बात की, तभी मरीजों ने कहा है कि समय पे हमारे जांच हो रही है, दवाइयाँ भी मिल रही हैं, उनका काम हो रहा है, कि हम सबका दायित्व है कि हम उन सबकी सेवा करें, उनको किसी तरह की परेशानी नहीं हो। हमारी सरकार पूरी तरह से आम जन के साथ, हर व्यक्ति के साथ है, उनकी हर समस्या का समाधान करने के लिए हम पूरा प्रयास कर रहे हैं, लेकिन सुधार की आवश्यकता हमेशा है। जो भी होगा उसको और सुधार करके अच्छा कैसे करें, इस पर हम चर्चा करें।
0: केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत कहो है कि लारला 12 साल माए देश माए सूरज री रोशनी बिजली बनावन रो बूतो 2.8 गीगावाट बधर 155 गीगावाट फेंक्यो है। वह सोशल मीडिया पोस्ट रे जरिए कहो कि देश माए 40 लाख हों बत्ता घरा माए सूरज री रोशनी बनी बिजली काम ली जा रही है। शेखावत कहो कि खेतीबाड़ी माए सूरज री रोशनी बनी बिजली दूनी तादाद माए काम ले उनो आबो हवा ने बचावन सागे बरकत री मिसाल है। केंद्रीय मंत्री कहो कि देश रा किसान अब जिनसा री उपज लेवन सागे बिजली पैदा कर रहा है। श्री शेखावत आज जोधपुर पधारिया वठे खबर नवीसा सागे बातचीत करता थका वह कहो कि लारला 12 साल माए सुशासन देश री तस्वीर बदली है।
2: यदि इस 12 साल के कालखंड को केवल एक वाक्य में समाहित करना हो तो मैं ये कहूंगा कि 12 साल पहले 2014 से पूर्व देश में जिस तरह से लोकतंत्र के प्रति, व्यवस्था के प्रति अविश्वास का माहौल पैदा हो गया, वहां से निकल करके देश को हम भी विकसित हो सकते हैं, आत्मनिर्भर हो सकते हैं, इस विश्वास से परिपूरित करके 2047 तक आत्मनिर्भरता का लक्ष्य देश के 140 करोड़ लोगों के संकल्प के रूप में उभरा, ये 12 साल की सफलता है।
0: भारतीय जनता पार्टी रा नुआ बनाईजा प्रदेश संगठन महामंत्री अजय कुमार आज पहला दौरा सारू जयपुर पधारिया। वह भाजपा रा प्रदेश दफ्तर माए पार्टी रा ओहदादारा सागे मीटिंग कीनी। वारो काल भाजपा मीडिया टीम और प्रवक्तावां सागे खास मीटिंग करन रो कार्यक्रम है। मुख्य सचिव वी श्रीनिवास प्रदेश रा न्यारा न्यारा महकमा माए भर्तियां रा काम रो आज जायजो लीनो। वह गृह, प्रशासनिक सुधार, पंचायती राज, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी, शिक्षा और चिकित्सा और नर्सिंग री भर्तियां रो विभागवार जायजो लीनो। मुख्य सचिव महकमा ने भर्ती रा काम जुड़ी जरूरी कार्रवाई बेगी पूरी करन रा हुकम दीना। श्री श्रीनिवास भर्ती रा काम माथे लगातार निगरानी राखन बाबत कहो। मुख्य सचिव स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 रातेत जयपुर, उदयपुर, अलवर और नाथ द्वारा माए स्वच्छता सर्वेक्षण री तैयारियां और नवाचारां रा बारा माए जानकारी लीनी। मीटिंग माए 8 होड़ा साफ सफाई रो प्रबंधन, कचरो भिड़ोकरण, गंदी चीजा रा प्रसंस्करण और जन जागरूकता सारू कराया जा रहा कामा री जानकारी दी रीजी। मुख्य सचिव साफ सफाई रा काम माए ऑटोमेटेड पेनल्टी सिस्टम रा नवाचार री सराहना करता थका साफ सफाई माए तकनीक रो बत्तों बत्तो इस्तेमाल करन बाबत कहो। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE अंक सत्यापन और परीक्षा री कॉपी उजू जंचावन सारू अर्जी देवन री आखिरी तारीख आज 6 जून नू बधार 7 जून करतीनी है। ई पाछे विद्यार्थी अब काल आधी रात ताई अर्जी दाखिल कर सके है। ऐसा समाचार आप आकाशवाणी जयपुर अजमेर सुन रहा हो। केंद्रीय युवा कार्य और खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया नौजवानों ने विकसित भारत रो सपनो सांचो करण री प्रेरणा देवन वाली ताकत बताया है। वह नई दिल्ली माए राखी जिया मेरा भारत युवा सम्मेलन माए बोल रहा है। डॉक्टर मांडविया कहो कि भारत दुनिया रा सब नौजवान देशों माए शामिल है, जठे करीब 65% आबादी 35 साल कम उम्र रा लोगां री है। वह कहो कि सरकार विकसित भारत बनावन और नौजवानों री ताकत और बूता ने सही दिशा देवन सारू लगातार कोशिश कर रही है।
3: देश का 65 पॉपुलेशन बिलो

0: 35 है, यानी कि देश युवा देश है। ए देश की युवा की शक्ति को विकसित भारत के राह पर ले जाने के लिए संयोजने का काम नरेंद्र मोदी जी ने करा है।
1: अलवर सांसद खेल उत्सव रा तेत बहरोड़ माए आज समर कैंप शुरू हो। केंद्रीय वन और पर्यावरण मंत्री और अलवर रा सांसद भूपेंद्र यादव, उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी सागे इनरी शुरुआत कीनी। ए मौके दिया कुमारी कहो के खेलाओं अनुशासन, टीम भावना और अगुवाई करण रा बूता

0: भूपेन्द्र यादव उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी संग इनरी सर्वात कीनी ए मौके दिया कुमारी कहो के खेलाओं अनुशासन टीम भावना और अगुवाई करण रा बूतारो विकास फै है। उप मुख्यमंत्री कहो के समर कैंपों मोटियारा री प्रतिभा री पछाण रो मौको ही मिले है।
1: हम सबको इससे बहुत कुछ सीखने को मिलता है, हमको प्रेरणा मिलती है कि हम लोग भी हमारे क्षेत्र में इस तरह का आयोजन करें। इसमें बहुत सारा जो हिडन टैलेंट है स्पोर्ट्स के क्षेत्र में वो निकल कर बाहर आए। पूरा ओवरऑल पर्सनैलिटी डेवलपमेंट पे भी ध्यान दिया गया है। योगा, मेडिटेशन, डिसिप्लिन, फिटनेस, डाइट, इन सब चीज़ों को यहाँ पर प्रशिक्षण मिला है इस पूरे कैंप में।
0: फिट इंडिया मूवमेंट और संडे ऑन साइकिल अभियान रातेत काल स्वास्थ्य रो ध्यान रखन रे बारा माय जाग जगावन सारू खास कार्यक्रम रख्या जावेला। बाड़मेर माय पुलिस री ओर साइकिल रैली निकाली जावेला। पाली माय साइकिल रैली रे जरिए रोजिना कसरत करण जुड़ी जाग जगाई जावेला। राज्य वृक्ष अर थार कल्प वृक्ष कहो जावन वालो खेजड़ी रा रूखड़ा ने बचावन री कोशिशां रा तेत चूरू जिला री न्यारी न्यारी ग्राम पंचायतां माय खेजड़ी वाटिका विकसित करी ची है। वन विभाग एक जिला एक वनस्पति रातेत खेजड़ी रा करीब 1.5 करोड़ पौधा तैयार कीना है। माना खबर नवीस बतायो के ए पौधा बांटन रो काम बेगोई शुरू करियो जावेला।
2: राज्य वृक्ष खेजड़ी को बढ़ावा देने के उद्देश्य से चूरू जिले को एक जिला एक वनस्पति के रूप में खेजड़ी वृक्ष का चयन वन विभाग ने कर लिया है, जिसके तहत जिले में 5 तहसील मुख्यालयों पर खेजड़ी के वृक्ष के लिए वाटिका तैयार कर ली गई है, जिसमें 1,52,00,000 खेजड़ी के पौधे तैयार कर लिए गए हैं, जिनको आगामी दिनों में विभिन्न संस्थाओं व विभाग द्वारा लगाए जाएंगे। श्रवण शर्मा, आकाशवाणी समाचार, चूरू।
0: अरब मौसम राज्य में चौमासा पहली री हलचल बीच घनखर ठोड़ा पारो 5 डिग्री सेल्सियस ताई उतरियो है। कई शहरों में दिन रा बगत तापमान 35 डिग्री सेल्सियस नीचे उतर गयो है। हालांकि राज्य रा आतुणी हल्का माय कठे कठे जोरदार तावड़ो पड़ रियो है। जैसलमेर, श्रीगंगानगर और बाड़मेर माय पारो 40 डिग्री सेल्सियस ने पार कर गयो। मौसम विभाग रे मुजब आज प्रदेश रा 25 जिला माय आंधी बारिश रा आसार है। आंधी बारिश आज और कल कई हल्का माय चालती रहवन री संभावना है। महकमो 8 जून उजू गर्मी रो असर बधवा सागे लू बाजन सारू चेतायो है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI इंग्लैंड और आयरलैंड सागे T20 मुकाबला सारू भारत री टीम रो ऐलान कर दिनो है। श्रेयस अय्यर ने टीम रा कप्तान और तिलक वर्मा ने उप कप्तान बनाई चिया है। 15 साल रा खिलाड़ी वैभव सूर्यवंशी ने पहली दफा भारत री टीम में शामिल करी चियो है। वैभव इस साल री IPL होड़ में सबों 72 रन बनाया है। नौजवान खिलाड़ी प्रिंस यादव नई टीम में शामिल करी चिया है। जापान में फेवन वाला एशियाई खेलना और भारत रा श्रीलंका दौरा सारोई टीम चुनी ची। भारत और अफगानिस्तान री क्रिकेट टीम बीच ई सीरीज रा आज शुरू हुआ एकला टेस्ट मैच में भारत पहली पारी में 368 रन बना लेना है और वारा 3 बल्लेबाज आउट हुआ। कप्तान शुभमन गिल 103 रन बनार खेल रहा है। ऋषभ पंत 50 रन बनार वारो साथ दे रहा है। इनु पहले KL राहुल 100, साई सुदर्शन 81 और यशस्वी जायसवाल 24 रन बनार आउट हुआ। राजस्थान माय श्री गंगानगर रा मानव सुथार ई पहली दफा भारत री टीम माय शामिल करण सा गए ई मैच माय खेल रहा है। आखिर माय खास समाचार एक कर फिर सुन ले रहो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आर्थिक सलाहकार परिषद सागर जीवन स्तर माय सुधार और कारोबारी सुगमता रा जतन रे बारा माय चर्चा कीनी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जयपुर रा SMS अस्पताल रो औचक दौरो कीनो। कहो स्वास्थ्य सेवा ने मजबूत बनावन सारू सगला जरूरी जतन करिया जावेला। युवा कार्य और खेल मंत्री मनसुख मांडविया नौजवाना ने विकसित भारत रो सपनों सांचो करण वाली ताकत बताया। और राज्य में चौमासाओं पहली री हलचल रे कारण घनखर ठोड़ा पारो उतरियो। काल ताई आंधी बारिश रो दौर चाल तो रहवन रा आसार। इसा गई प्रादेशिक समाचार बुलेटिन पूरो भियो। नमस्कार।
3: इस समय आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का उदयपुर केंद्र। हमारे ग्रामीण परिवार अब सुनेंगे अपना दैनिक कार्यक्रम खेती और

0: મિટ્ટીની જાંચની વાત કરા તો ખેતરી જો મિટ્ટી હૈ વનો પીએચ માન ઓર પોષણરી સ્તરની જાંચ કરવાની ચાવે. જુતાઈની વાત કરા તો ખેતરી ઘેરી જુતાઈ કરીને વણી પર ધૂપ લગાવી ચાવે તાકી કહી વે કે હાનિકારક જો કીટ હે ખરપતવાર નષ્ટ થઈ જાવે ઓર જૈવિક ખાદ વર્મી કમ્પોસ્ટ યા પછી પુરાણી ગોબરી ખાદરો ભરપૂર ઉપયોગ કરવો ચાવે.
1: બિલકુલ સા ઉન્નત કિસ્મારું ચયન કરીને પોષશાળા જેને નર્સરી ઓર પ્રબંધ પ્રમાણિત જો બીજ હૈ વણાને આપણે ઉપયોગ મેં લેના હૈ और हमेशा जो कृषि विज्ञान केंद्र या अधिकृत जो डीलर हैं वटों रोग मुक्त और उच्च उपज वाला किस्मा ही अपने उपयोग में लेना है और नहीं खरीदना है अपने साथ.
0: हाईटेक नर्सरी की बात करें तो सब्जियां और फूलारी पौधे तैयार करवा रहे पोट्रे और कोकोपीट रो उपयोग करनो है. सिंचाई और पोषण प्रबंधन रे वाते सूक्ष्म सिंचाई अपने अपनानी है. पानी की बचत और पौधारी जड़ा में नमी बनाए रखवा रे वाते ड्रिप इरिगेशन या पचे स्प्रिंकलर सिस्टम रो उपयोग करनो चाहे सा.
1: बिल्कुल सा मल्चिंग की बात करें तो प्लास्टिक और मल्च बिछावर लिए खरपतवार नियंत्रण रहे हैं और मिट्टी रो तापमान भी सही रहे हैं सा. अंडे अलावा उर्वरक की बात करें तो मिट्टी परीक्षण के आधार पर अपने नाइट्रोजन है फॉस्फोरस है पोटास है अनारी संतुलित उपयोग अपन करना चाहे सर.
0: समय की कीट और रोग प्रबंधन की बात करें तो टेम टेम पे किसान भाई ने निगरानी रखनी चाहे. खेत में नियमित रूप में कीट जैसे कि माहू फल छेदक ऐसा रोग वही जावे तो झुलसा फफूंद अनारी किसान भाई निगरानी रखे वो टेम टेम पे अनारा उपाय करे. जैविक उपाय की बात करें तो रासायनिक कीटनाशक रे बजाय नीम रो तेल या पचे मित्र कीटर रो उपयोग करना चाहे.
1: बिल्कुल सर. अन्य अलावा देखो मचान विधि की बात करें तो जिस तरह सब्जियां हैं जिन्हें जिनमें अपन टमाटर भी गया करेला भी गया लौकी भी गया लेकिन अनारी जो बेला है वह जमीन पे फैलवार बचाव के लिए मचान विधि अपने अपनानी समय सा जनों कही वेगा कि सड़न कम वेगा और गुणवत्ता भी बढ़ेगा.
0: कटाई छटाई की बात करा तो कटाई छटाई के उपरांत अपने प्रबंधन रो समय समय पे अपने तुड़ाई करनी चाहे. फला और सब्जियां की तुड़ाई रो टेम जो है सुबह और शाम रखनो चाहे और ठंडा समय पे करनो चाहे सा.
1: बिल्कुल सा. ग्रेडिंग और पैकेजिंग की बात करा तो आकार और गुणवत्ता के अनुसार अपने उत्पाद है उन्होंने अलग अलग ग्रेडिंग देने हवादार जो केटस है उन्होंने पैक करने और बागवानी जो फसला है बनारे प्रबंधन लिए उच्च गुणवत्ता वाला रोग मुक्त बीजार चयन और सूक्ष्म सिंचाई ड्रिप अपनानी चाहिए सा.
0: बिल्कुल सा. और समय की आपा कीट प्रबंधन की बात करा तो कटाई के उपरांत सही रख रखा वाणी में शामिल है. किसान आपा देखा कि बागवानी फसला रे वाते वैज्ञानिक और व्यवहारिक प्रबंधन रा प्रमुख चरण है वणा ने अपनाना चाहे. जणी में आपा देखा कि उन्नत किस्म रो चयन वे गयो नर्सरी री आपा बात की दी रोगारी भी आपा बात की दी और अणी तरीकों किसान भाई आपा शीतगृह की बात करा तो अणी में कही वे कि जल्दी खराब वाली जो फसला है वणा ने बाजार तक पहुंचाना या पछि कोल्ड स्टोरेज में रखवार वाते उचित व्यवस्था किसान भाई ने करनी चाहे सा.
1: बिल्कुल सा. तो देखो ममता भाई सा या तो बढ़िया जानकारी दी और अबे हुनवा किसान भाई ने बढ़िया सो राजस्थानी लोक संगीत.

0: तो देखो रामा भाई, आपा कार्यक्रम में राजस्थानी लोकगीत सुनियो सा, और आपा लारे लारे आपा किसान भाई ने जानकारी करे ही रहा सा। और देखो अबे कार्यक्रम में आपा मौसम भी जानकारी करावा सा।
1: हाँ सर।
0: तो देखो मौसम विज्ञान विभाग जयपुर प्राप्त सूचना रे आधार पे अगर आप बात करा मौसम री, तो देखो मौसम शुष्क रेवारी संभावना है। हवारी गति है जो 3 और 6 किलोमीटर प्रति घंटा रे वेगू दक्षिण पश्चिम चलेगा, और अधिकतम तापमान 41 से 42 और न्यूनतम 25 से 26 रेवार लारे लारे। सापेक्ष जो आर्द्रता है वह 27 से 36 और अधिकतम 7 से 12% रेवारी।

0: संभावना है सा।
1: बिल्कुल सर, अब किसान भाई ने सामान्य जानकारी भी देता कि देखो मिट्टी की नमी बनाए रखने वास्ते पत्तिया या पचे जो सूखी घास है वहाँ ने फसल रहे अवशेष में उपयोग करना है। गर्म हवा रहे बचाव लिए खेती की सीमा पे अपने स्टोन या जूट की जाली लगे देनी चाहिए सर।
0: बिल्कुल सा। अब गेहूं रे भंडारण री बात करा तो देखो अनाज रो जो भंडारण है वने राखवा पहली भंडार गरी अच्छी तरह को सफाई कर ले और अनाज ने अच्छी तरीके सुखाई ले। कूड़ो कचरे ने जले ने या पचे दबाई ने नष्ट करी दे। दाणा में नमी 12% ज्यादा नहीं वेनी चावे और भंडार गरी जो छत है दीवार और फर्श पे एक भाग मेला थी ने अपने 50 cc ने 100 भाग पानी में मिले ने छिड़काव करना चाहे। यदि पुरानी बोरिया रो प्रयोग करनो पड़े तो वणा नो एक भाग मेला थी और 100 भाग पानी रे घोल में 10 मिनट तक भिगोई ने छाया में रखनो है सा।
1: बिल्कुल सा। बात करा पर मूंगरी तो अनी टाइम सिंचाई मूंगरी फसल रहे फूल आवारी या पचे फूल फलिया बनवा रहे अवस्था में है तो अनी अवस्था में अपने नमीरी कमीर में जो पैदावार घट सकें अंडे लिए अपने हल्की सिंचाई जारी रखनी है। गर्म मौसम में थ्रिप्स प्रकोप बढ़ जावे तो अंडे लिए नियमित रूप निगरानी भी रखनी है सर।
0: कपास री बात करा तो अणी हफ्ता में किसान भाई कपास री बुवाई रेवाते खेत ने तैयार करे और गुणवत्तापूर्ण प्रमाणित बीज कसी भी विश्वसनीय स्त्रोत वणा ने खरीदना चाहे सा।
1: हाँ सर, बात करा आप बेल वाली सब्जियां तो कशमान कुलरी जो सब्जियां में है जो लाल भृगु कीट अनारो प्रकोप बढ़े तो वन टाइम अपने अंडी रोकदाम रे लिए कार्बियम 5% चून 25 किलो प्रति हेक्टर दरों सुबह या पचे शाम रो बुरकाव करना है सर।
0: जायद मूंगफली की बात करना तो खरपतवार प्रकोप ने नियंत्रित करवा वाते उचित पेगिंग रे वाते इंटरकल्चर ऑपरेशन या हाथ उगुड़े की आवश्यकता वे है सा।
1: और देखो भिंडी की बात करा तो तेज चल हवा चल वाली संभावना ने देखता था किसान भाई ने भिंडी या पचे जो दूसरी सब्जियां हैं उन्होंने तुड़ाई करने अपने बने कर लेनी चाहिए ताकि नुकसान बच जाए।
0: ग्रीष्मकालीन हरा चारा की बात करा तो गर्मिया महीना में हरा चारे की कमी काफी आम है। अणी बात है हरा चारा की पाली जो फसला है जैसे ज्वार बाजरो मक्का और लोबिया अणारी बुवाई करनी चाहे सा। और देखो रामा भाई आपा टेम टेम पे विषय विशेषज्ञ ने अपने स्टूडियो में बुलावा और किसान भाई रवाते हो जानकारी लावा। तो देखो आज आपने डॉक्टर नीलम राठौड़ भाई सा जानकारी कर रहा है एग्रीवोल्टाइक तकनीको कृषि और आत्मनिर्भरता और अणी विषय पे अणु बात करेगा गजेंद्र सिंह जी राठौड़। तो आप सब जना या बातचीत होना और अपना किसान भाई ने भी होनावा
2: खेती और घर कार्यक्रम होने वाला हंगले किसान श्रोता ने गजेंद्र सिंह राठौड़ो राम राम सा। देखो श्रोता आपा कार्यक्रम में रोज नित नई जानकारी लावा और अणिस क्रम में आज एक नई जानकारी लावांगा और शायद वह कई लोग वनडे बारे में होने भी नहीं वेगा और वह है एक एग्रीवोल्टेक तकनीक और यह कई चीज़ें अंडी जानकारी देवाते हैं अपने स्टूडियो में पधारिया है डॉक्टर नीलम राठौड़ मैडम। आप असिस्टेंट प्रोफेसर है और आप न्यू ग्रीन और रिन्यूएबल एनर्जी रे क्षेत्र में काम कर रहे हैं तो सब पहले मैडम कार्यक्रम में आपका स्वागत। राम राम सा।
3: राम राम सा।
2: नीलम भाई साहब आप ये बताओ कि यो जो आपने एग्रीवोल्टेक जो आप एक टर्म आप लीदी यो वतेरा और झंडे बारे में और काफी लोग नहीं हुई वेगा मन लगे 99% लोग अने बारे में नहीं जानता वेगा तो यो एग्रीवोल्टेक है कई चीजें वो बताओ।
3: बिल्कुल, एग्रीवोल्टेक जैसे आप याने अगर अलग अलग करा तो अंडो कही है एग्रीकल्चर प्लस वोल्टेक तो आप यूं कह सका कि आप पावर जनरेशन भी कर रहा मतलब बिजली उत्पादन भी कर रहा और वणिज भूमि पे आप खेती भी कर सका। नॉर्मली आप कही है जैसे घरारे उपरे आप फोटोवोल्टिक सिस्टम लगावा वणियो आप बिजली उत्पादन भी रोए वो वणियो अपनो घर चल रो है बिजली रे वणियो लेकिन वंडी जो नीचे वाली भूमि है वो आप यूज नहीं कर सका। तो अणी बातें ये क्यों अलग कंसेप्ट आयो है अणी में कही है कि जटे आप खेती करा किसान भाई जटे खेती करे तो वणी भूमि रे अटे आपी सोर फोटोवोल्टेक पैनल जो है भी आपी इंस्टॉल कर सका।
2: सोलर झंडे आपके वहाँ
3: सोलर पैनल जने आपी कहा जी बहुत सब किसान भाई जो है मैंने जाने भी है तो वनडे नीचे री जो भूमि है वह आपी खेती में भी काम में ली सका और वनडे पैनल जो है अपने बिजली उत्पादन भी वीरो है तो आपने दो चीजा मिल रही है एक तो फसल उत्पादन भी वीरो है और ऊर्जा उत्पादन भी वीरो है तो अणी बात है ना एग्रीकल्चर प्लस वोल्टेज जो है अन्य मिले ही ना आपी बनायो है एग्री वोल्टेज सिस्टम
2: तो या तो घने हवा था बताई लेकिन अणी में एक चीज जो है कि जितना किसान तो वैसे ही खेती कर रहे हो और सोलर पैनल आपने वैसे आजकल घर घर भी लगी रहा है और नरी हरी योजना में भी किसान लगी रहा है तो आपने यो एग्री वोल्टेक सिस्टम की आवश्यकता क्यों पड़ रही है अलग अंडो के कारण है।
3: अब अंडा दो रीजन है एक तो ऊर्जा री मांग जो है वो बहुत बढ़ती जा रही है क्योंकि जनसंख्या जो बढ़ी रही है ऊर्जा री मांग भी बढ़ी रही है और भूमि जो है वो अपने पास में सीमित है तो अणी बात है आप ही कई

0: कर रहा है कि जड़ी भूमि पे आप ही खेती कर रहा, वटे से आप ही सोलर पैनल लगाई था और वणियों आप ही पावर जनरेशन भी कर ही सका। तो एग्री वोल्टे को कही है किसान एक ही जमीन दोहरा लाभ ली सके, जिन्हें आप ही का खेती भी वीरी है और बिजली उत्पादन भी रही है, तो अणियों आय भी बढ़ी सके और स्वच्छ ऊर्जा भी आपने मिली रही है।
1: तो यो जो एग्री वोल्टेक सिस्टम जो आप कह रहा हो या प्रणाली काम की तरह करे, मान लो अगर कोई किसान ही होचे या पचे कोई उन्नत किसान भी होचे कि भाई यह चीज आपने भी करनी है, तो किधर काम करेगा?
0: बिल्कुल बिल्कुल। अणि प्रणाली में कही है कि सोलर पैनल जो है वो जमीन ऊंचाई पे लगावा आप ही, कुछ ऊंचाई पे लगावा और वनडे नीचे जो है वो आप ही फसल उगाई सका। तो पैनल री जो रोशनी है वणियों आप ही बिजली बनाई सका और नीचे जो है फसला में आंशिक छाया मिले, मतलब कतरी बार असो वेवे कि असी फसला आप ही लगावा जड़े में छाया री जरूरत पड़े। ठीक है, तो ये पैनल जो है वो दो काम कर रहे हो, एक तो बिजली उत्पादन भी कर रहे हो, छाया भी दी रो है और पानी जो इवेपोरेशन वेवे बहुत ज़्यादा धूप में, तो वंडी भी आप ही बचत वे रही है।
1: तो यानी जो एग्री वोल्टेक अगर जो खास चीज़ आप फायदा बता दो, लेकिन अगर आप आए देखा अंडा मुख्य लाभ किसान ने ही दायदा कही है वो भी आप बताओ।
0: बिल्कुल, एक तो किसान री अतिरिक्त आय भी रही है। अब अतिरिक्त आय के तरवेगा, मान लीजिए बिजली उत्पादन दनरा अभी 6 यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहा हाँ सोलर पैनल हो और किसान के पास में 3 यूनिट इस काम में आ रहा है, तो 3 यूनिट जो है भी आप ही बेची सका, तो अणी तरीके आय जो है वो वंडी वृद्धि भी रही है। दूसरी चीज बिजली उत्पादन ऊर्जा री बचत भी रही है। तीसरी फसल में नमी जो है वो वणी रहेगा क्योंकि सोलर पैनल की वजह जो वाटर जो इवेपोरेट हुए वणी में कमी भी रही है। और सिंचाई रे बातें सौर ऊर्जा रो प्रयोग आप ही कर सका, जैसे पंप वगैरह में जो बिजली आप ही दी रहा वह सोलर पैनल दी सका। और सबों इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो पर्यावरण जो प्रदूषण है वो कम भी रो है।
1: तो यह जो आप पूरी जानकारी दी थी कि भाई अणियो ये लाभ सब वे गया, लेकिन जो आप एक बात की कि भाई अणी अंडी जो छत है वहाँ जो सोलर जो छत है वन नीचे जो खाली जमीन है टोटल छाया भी रहेगा नमी भी रहेगा, तो कोई आपा अणी एग्री वोल्टेक प्रणाली के अंतर्गत सब वनडे नीचे सब तरह की फसल उगा सका या कोई खास खास?
0: नहीं, सब तरह की तो नहीं लगाई सका, जैसे गन्ना है, गन्ना री अभी खुदरी अतरी हाइट वे है, ठीक है, तो वह वनी तरह की फसल जो है वो आप ही नहीं लगाई सका। लेकिन धनियों है, पालक है, मेथी है, हल्दी है, अदरक है, कुछ सब्जियां जड़ा ने आंशिक छाया री जरूरत वे, तो वंडो चयन आप ही कर ही सका और जड़ी में प्रकाश री आवश्यकता जो है वो वणी अनुसार आप ही कर सका।
1: वैसे जो आप जानकारी दे रहा क्योंकि सोलर पैनल भी है और एग्री वोल्टेक प्रणाली जो आप बता रहा हो, हाँ। क्योंकि यो पर्यावरण वाते तो लाभदायक है ही
0: बिल्कुल।
1: तो अगर अगर अंडे आपा कहा कि ज्यादा से ज्यादा अगर किसान अंडे लगावे हाँ। तो ये और कई तरीके लाभपूर्ण वे सके
0: बिल्कुल। अभी किसान जो है वो फसल उत्पादन तो कर ही सकीरो है और हाथे हाथे सौर ऊर्जा जो है वो बेची भी सके सरकार ने, जने आप ही स्मार्ट ग्रिड मीटर जो है वनडे थ्रू जो आजकल बिजली उत्पादन करी सरकार ने आप ही बेची सका, तो अणी तरीका आर्थिक स्थिति जो है किसान री वा भी बढ़िया वे सके और वणी वजह किसान जो है वो सिर्फ खेती पे इस निर्भर रहे, अंडी निर्भरता जो है वो कम कर ही सका।
1: और अणियो प्रदूषण और पर्यावरण के हिसाब से कतरो बढ़िया है यह चीज?
0: बिल्कुल, सबों ज्यादा फायदो जो है वो पर्यावरण ने है क्योंकि अणियो आप स्वच्छ और नवीकरणीय ऊर्जा रो है वो उत्पादन कर ही सका, तो साइंटिफिक भाषा में आप ही का कार्बन उत्सर्जन जो है वो कम वेगा अणियो और जल संरक्षण भी बढ़ा वो दी सका।
1: और अगर आपने जितर अगर देखा संभावना वर्तमान में हाँ। तो अभार विगत के वर्षों वहाँ पर देख रहे हैं कि सोलर पैनल और सोलर पार्क बन गया आपने राजस्थान या गुजरात में जगह जगह, तो कई आपने लगे कि भारत में या जो एग्री वोल्टेक की जो संभावना है हाँ। या बजे यूं कहा कि भविष्य में यो कतरो उपयोगी साबित हो सके वनडे बारे में आप थोड़ा बताओ।
0: बिल्कुल, अब आपने सभा ने पता है कि भारत जो है वो कृषि प्रधान देश है, तो और असो कोई कोनो भी नहीं है भारत में जटे सूर्य री रोशनी जो है वो अपने पे नहीं पहुँचे, तो ये सूर्य री रोशनी जो अपने पास पहुँची रही है किसान भाइयों के पास में, तो अणियों एग्री वोल्टेक टेक्नोलॉजी ग्रामीण में ऊर्जा और कृषि दोयरो विकास भी सके और एक महत्वपूर्ण समाधान भी बनी सके।
1: और अगर आप अन्य क्योंकि सब कुछ आप फायदे की बात की थी और लाभ भी आप बता दी दो कि भी आप तकनीक भी हमजी ली थी, लेकिन क्योंकि कोई भी चीज़ बड़ी आसानी हुए नहीं आज के टाइम पे, तो अगर वास्तव में अगर आप देखा अगर एग्री वोल्टेक प्रणाली में अपना में कई कठिनाई कई चुनौती भी वे सके, तो वे कई की चुनौतियां वनडे बारे में आप थोड़ा जिक्र करो।
0: हाँ, हर तकनीक री कहीं ना कहीं चुनौतियां तो वे ही से, तो अणी में यूं है कि एक तो इनिशियली जो रुपयो लगेगा वो जो है वो थोड़ो सो ज़्यादा है और किसान भाई बहुत सारा ऐसा है जना ने आल अणी तकनीक के बारे में पतो नहीं है, तो जने आप ही की सका जागरूकता री कमी है और तकनीकी जानकारी और प्रशिक्षण री भी आवश्यकता किसान ने वे है, और सबाऊ इम्पोर्टेंट ये हुए कि सभी फसला रे वाते ये उपयुक्त नहीं वेवे, तो अगर आप पैनल लगाई रहा तो वनडे अकॉर्डिंग आपने फसल जो है वो वणी में लगानी पड़ेगा।
1: एक सामान्य प्रश्न

0: यो भी है कि जिस तरह आपा सोलर पैनल री कार्य प्रणाली देखी,
1: बिल्कुल
0: लोग शहरा में घर री छत पे लगावे
1: हाँ
0: और बाकी कई जगह सोलर पंप लागे जण्यू लोग कुओं पानी निकाले वाणी पंप रे जरिए, लेकिन क्योंकि आपा अंडे नीचे खेती भी करना चाहिए रहा, तो जिधर आमतौर पर आपा कहा कि 3 किलोवाट, 5 किलोवाट, 10 किलोवाट, तो अणि में कई मिनिमम क्षमता कतरी वेणी चाहे ताकि आप खेती कर सको, या पचे यूं कहा कहीं खेत में फैला वंडो कतरो वेणो चाहे अंडो कई आइडियो है।
1: बिल्कुल, जैसे मिनिमम जो है वो 3 किलोवाट रो जो है वो तो लगानो ही पड़ेगा, क्योंकि पंप में भी अतरी जरूरत तो वेगा। जैसे अगर सोलर पंपिंग री बात है तो वंडी बिजली वदीस वंचेगा यदि कम उगम 3 किलोवाट रो सिस्टम जो है वो आपने लगानो पड़े। अब 1 किलोवाट रो सिस्टम है वो 5 यूनिट दनरा प्रोड्यूस करे, तो 3 किलोवाट लगावा तो लगभग 15 यूनिट अगर आपने प्रोड्यूस वेरी है, और किसान जो है मान लो 8 यूनिट इस काम में ली रो है तो लगभग 7 यूनिट जो है वंडा वंची रहा है। तो आनी तरीके आय री वृद्धि भी वी सके, वेचेगा तो आय री वृद्धि भी वी सके, तो मिनिमम जो है वो 3 किलोवाट रो सिस्टम रो है वंडी जरूरत तो आपने पड़ेगा ही से।
0: और अगर आप यह बात करा कि जो घर पे भी आप 3 किलोवाट, 5 किलोवाट सोलर लगावा, लेकिन यो एग्रीवोल्टिक सिस्टम अंडो उपयोग थोड़ा भिन्न प्रकार रो है,
1: हाँ
0: तो अणि में पचे आपने जो ये बिजली उत्पादन वे रो है या पचे यो बिल्कुल एक कमर्शियल तरीकों में वे, और अगर वे तो क्योंकि बाकी रहा सोलर पैनल पे तो सरकार द्वारा सब्सिडी और अनुदान ये सब चीज़ें मिल रही है, तो
1: हाँ
0: कोई अणि पे भी अणि तरह कोई अनुदान है
1: बिल्कुल
0: कि
1: बिल्कुल, यानी पे भी बहुत सारी जो सरकार है वंडी सौर ऊर्जा री योजना है, सब्सिडी भी है, बहुत सारा सुरक्षा कार्यक्रम भी है, वणियों सरकार जो है ने प्रोत्साहित भी कर रही है, और कई राज्य में सोलर पंप और सोलर प्लांट वाते सहायता भी दी जावे।
0: तो देखो नीलम मैसा यह तो बहुत बढ़िया जानकारी दीदी भाई, एग्रोवोल्टेक जो है तकनीक है, लेकिन खास तौर पर आप एक यह चीज़ भी देखी कि कोई भी नई तकनीक आवे तो आमतौर पर किसान के पास वदी उपलब्ध वे जनट में पॉपुलर वे किसान वह मतलब समाज वो वर्ग है जो शुरुआत में बड़ी चीज़ ने एक्सेप्ट नहीं करे, तो आपने कई लागे कि जितर अगर मान लो अंडे विभिन्न अपने जो कृषि एग्रीकल्चर कॉलेज है या फिर जो कृषि विभाग है अगर जटा तक अनारो अंडे प्रचारित नहीं करेगा तो अंडी जो एक्सेप्टेबिलिटी है या फिर यूं कहा कि बनाने काम में लेवारी जो वो क्षमता है वह एक बड़ी में एक देर भी सके, तो आपने कई लगे गणित संबंध में कई करना चाहे ज्यादा ज्यादा।
1: बिल्कुल, अब अंडे वाते सरकार जो है वो जैसे हर यूनिवर्सिटी में केवीके बने लगाए, कृषि विज्ञान केंद्र जने यहाँ पे कहाँ, तो वटे अणी तरीरी सब फैसिलिटीज़ जो है वो अवेलेबल है कि जागरूकता, और वी लोग कई बार जो है ट्रेनिंग भी देवे किसान ने कि कई मार्केट में नई तकनीक आई है, तो अगर केवीके में किसान भाई जावे तो ये सब तकनीक के बारे में इन्फॉर्मेशन भी मिली जावे, सब्सिडी की जानकारी भी मिली जावे, और जो भी नई तकनीक जो आई रही है मार्केट में बनी किसान जो है वो देख ही सके जानी सके वनडे बारे में, तो यह सब फैसिलिटी जो है वो सरकार दे रही है।
0: तो केवल मतलब यो या जो एग्री वोल्टेक तकनीक है यह सिर्फ नी सिर्फ खर्चा में कमी कर रही है बाकी आपने आय भी बढ़ने दे रही है, और लार ला रहे
1: बिल्कुल
0: किसान ने जो जो छायादार शेड वालों जो जगह चीरी वनडो वणियों आप सब्जी उब्जी उत्पादन करें एक तरीके को किसान आत्मनिर्भर बन सके।
1: बिल्कुल, और अतरी हाइट पे भी आप याने लगा ही सका कि जो ट्रैक्टर्स वगैरह जो चाले है, हार्वेस्टर्स वगैरह चाले, वो सब भी अंडे नीचे जो है वो चला ही सका, क्योंकि हाइट जो है वो किसान ने कतरी राखनी है वो वनडे ऊपर डिपेंड करे, तो क्योंकि बिजली उत्पादन तो वेगा ही से बने, अब आप ही कसी फसल नीचे लगे ही रहा वनडे ऊपर निर्भर करे कि आपने कतरी हाइट रखनी, तो ट्रैक्टर्स भी चाली सके नीचे, हार्वेस्टर्स और जो भी मशीनरी जो किसान यूज करे वो आराम वनडे नीचे चाली सके।
0: तो आप हाँ डॉक्टर नीलम राठौड़ और आज आप कार्यक्रम में एग्री वोल्टेक सिस्टम या एग्री वोल्टेक प्रणाली है वनडे संदर्भ में महत्वपूर्ण जानकारी अपने श्रोता लारे साझा की दी और कार्यक्रम का हिस्सा बने अंडे वाते घणो घणो धन्यवाद। राम राम सा।
1: राम राम सा।
2: तो देखो रामा भाई, एक बार आप सब जना यह बातचीत होनी और अपना किसान भाई भी अना तकनीका ने अपने ने खेती बाड़ी में नो लाभ उठाएगा सा, और अभी आप कहो तो कार्यक्रम में राजस्थानी लोकगीत सुनावा सा।
3: हाँ सर।

0: जनगणना 2027 को सफल बनाना हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। जब अधिकृत प्रगणक आपके घर आए उनका परिचय पत्र और QR कोड देखकर पुष्टि जरूर करें।
1: प्रगणक डिजिटल माध्यम से जानकारी संग्रह करेंगे। आपकी सही जानकारी से भविष्य की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद होती है।
0: आपकी सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।
2: तो देखो ममता ऐसा बढ़िया सो राजस्थानी लोक संगीत हुए और साथ साथ अपाउनिया संदेशा भी। और अब यहाँ पर जिस रोज रोज नई योजना की जानकारी देवा तो आज आप योजना लेना यहाँ कि मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना कई है और यह किस तरह काम करें।
3: बिल्कुल सा देखो मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 19 फरवरी 2015 ने राजस्थान रा श्री गंगानगर जिला सूरतगढ़ कस्बों शुरू की दी है सा। अणि योजना रा मुख्य उद्देश्य की बात करा तो किसानों ने वणारी मिट्टी की गुणवत्ता पोषक तत्व और उर्वरता की वैज्ञानिक जानकारी प्रदान करना है ताकि वे संतुलित खेती कर सके सा।
2: बिल्कुल सा अंडी योजना की मुख्य विशेषता जो है वह 12 मापदंडों जो धन है उनमें वणारी जाँच है। अणि कार्ड में मिट्टी का 12 जो प्रमुख मानक है वे वनारी स्थिति दर्ज हुए हैं। अणा में माइक्रो न्यूट्रिएंट सूक्ष्म पोषक तत्व और जो अपनी जो मिट्टी का गुण कही है वे शामिल है। और अंडी जो टैगलाइन है वह है अणि योजना रो मुख्य नारो स्वस्थ धरती खेत हरा।
3: बिल्कुल सर मिट्टी का नमूना की बात करा रामा भाई तो किसाना ने खेता मुँह रबी और खरीफ रिज की फसला वे वनारी कटाई के बाद वर्ष में 2 बार मिट्टी का नमूना एकत्रित किया जावे सा।
2: बिल्कुल सा जांच रिपोर्ट के आधार पर अपने कार्ड में यो दर्ज हुए कि यानी खेत में कणी कणी पोषक तत्व की कमी है और कतरी मात्रा में अपने खाद या बच्चे जैविक खाद की जरूरत पड़ेगा सर।
3: अणि में लाभ और महत्व की बात करा तो लागत में कमी आवे किसानों ने अपनी मिट्टी की वास्तविक जरूरत पतो चले है चणी हुए अनावश्यक और अत्यधिक रासायनिक उर्वरक का उपयोग बंद करने पैसा की बचत कर सके सा।
2: हाँ सा अंडे अलावा देखो उत्पादन में वृद्धि भी है कि जो अगर आप डंगू उर्वरक और खाद वगैरह आप उपयोग में लांगा तो पोषक तत्व के उपयोग कृषि में पैदावार में भी सुधार होगा सा।
3: आवेदन और कार्ड किस तरह प्राप्त करना है अन्य जानकारी करावा तो यह योजना अबे राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत मृदा स्वास्थ्य और उर्वरता घटक के रूप में चली रही है सा।
2: बिल्कुल सा आप राज्य का कृषि विभाग स्थानीय किसान सेवा केंद्र या बचे जो अपने कृषि पर्यवेक्षक हैं वहीं आप संपर्क करने अपना खेत मिट्टी की जाँच करो सका सा।
3: जांच पूरी व्यवहार बाद में किसान भाई अपने खेतरो डिजिटल मृदा स्वास्थ्य कार्ड सरकारी मृदा स्वास्थ्य कार्ड पोर्टल या पचे हर खेत स्वस्थ खेत एप्लीकेशन पे जाइने डाउनलोड कर सके सा।
2: बिल्कुल सा तो देखो यहाँ तो बढ़िया जानकारी दी और अबे होना पाई एक और बढ़िया सो राजस्थानी लोक संगीत।

0: तो देखो ममता भाई, सब बढ़िया सो राजस्थानी गीत सुने हो और देखो अपना कार्यक्रम ने आगे बढ़ावा और किसान भाई वास्ते जानकारी लेना है यहाँ अपना कि खेत संरक्षण तकनीक कई है सर।
1: बिल्कुल सा, तो देखो रामा भाई, राजस्थान में खेत और फसल संरक्षण रे वाते सोर बाड़बंदी सोलर फेसिंग कटीला तारी बाड़ खेत तलई या फार्म पॉन्ड और ड्रिप सिंचाई जैसी आधुनिक तकनीकारो उपयोग कियो जा रो है सा।
0: हाँ सर, राज्य सरकार भी देखो कृषि विभाग राजस्थान के माध्यम अणा सभा पे अनुदान भी प्रदान करें सा फसल सुरक्षा तकनीक और शोर बाड़ाबंदी, जिस तरह आवारा पशु है, नील गाय है, फसल ने बचाव लिए शोर ऊर्जा चलित बाढ़ सब ज़्यादा प्रभावी तकनीक है सा।
1: अणियों जानवर ने हल्को झटको लागे जणियों वे खेत में प्रवेश नहीं कर सके सा। कटीला तार और चेन लिंक फेसिंग री बात करा तो खेतरी जा परिधि है वणी पे मजबूत तार पंदी करवा रहे वाते सरकार लागतरा 50% या पचे अधिकतम 40,000 तक रो अनुदान देवे है सा।
0: बिल्कुल सा, अंडर लिए देखो न्यूनतम 5 हेक्टेयर कृषि भूमि और 3 किसानों समूह वेणु सावे और आवेदन री प्रक्रिया की बात करा तो अंडे लिए आप अपने जो नजदीक ई मित्र केंद्र है वटे जाइने राज किसान साथी पोर्टल पे माध्यमों ऑनलाइन आवेदन भी कर सको सा।
1: मिट्टी और जल संरक्षण तकनीकारी बात करा तो खेत तलई जा योजना है वणी में वर्षा रा पानी ने सहेजनो खेत में पक्को या पचे प्लास्टिक लाइनिंग वालो तालाब बनानो है चणी में सूखा रे टेम पे सिंचाई की जा सके सा।
0: बिल्कुल सा, अंडे अलावा देखो ड्रिप और फवारा सिंचाई है वहीं में कही है कि पानी की बर्बादी रोकवा लिए बूंद बूंद सिंचाई तकनीक अपनी जावे, जड़ी में कही है कि कम पानी में अधिकतम क्षेत्र में सिंचाई हुए और खरपतवार भी कम उगे सा।
1: संरक्षण कृषि की बात करें तो न्यूनतम जुताई फसल अवशेषा ने खेत में बिछाणो और फसल चक्र ने अपनाणो चणियो मिट्टी की नमी और उर्वरता दोनों तरीकों सुरक्षित रहे सा।
0: बिल्कुल सा, तो देखो या तो बढ़िया जानकारी दी और अभी होना बढ़िया सो राजस्थानी गीत और साथ साथ संदेशा भी।

0: जनगणना 2027 को सफल बनाना हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। जब अधिकृत प्रगणक आपके घर आए उनका परिचय पत्र और QR कोड देखकर पुष्टि जरूर करें।
1: प्रगणक डिजिटल माध्यम से जानकारी संग्रह करेंगे। आपकी सही जानकारी से भविष्य की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद होती है।
0: आपकी सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।
2: तो देखो रामा भाई यहाँ प्यारो सो राजस्थानी लोकगीत कार्यक्रम में सुनाए और लाल लाल यहाँ संदेशा भी सुनाए सा। और देखो आज जयंती है गोपीनाथ बोरदोलोई री। आप लोकप्रिय गोपीनाथ बोरदोलोई री जयंती प्रति वर्ष 6 जून ने मनावा हा सा।
3: बिल्कुल सा, मनारो जन्म 6 जून 1890 में असम रा नागांव जिला में राहप गांव में हुआ। वे एक महान स्वतंत्रता सेनानी और अविभाजित असम रा पहला मुख्यमंत्री भी हाँ।
2: वणारो जीवन और योगदान आधुनिक असम रा निर्माता रे रूप में आप वणा ने याद करा। वणा असम रे विकास और आधुनिक असम रो जो निर्माता आप वणा ने मान्यो है। वणा ने लोकप्रिय उपाधि भी मिली थकी है। असमीय जनता रे कल्याण रे वाते वणा ने वणा अपार योगदान दीदो और वणा रे प्रेम रे कारण वणा ने लोकप्रिय री उपाधि वणा ने सम्मानित भी की दो गयो
3: सा। 1947 में कैबिनेट मिशन और माउंट ब्रेटन योजना रे समय बंदरोली जी मुस्लिम लीग रा नेता ना डट कर विरोध की दो ताकि वहाँ पे असम भारत रो अभिन्न अंग बन सके।
2: बिल्कुल सा, वहाँ शिक्षा की बात करा तो वहाँ प्रारंभिक शिक्षा रहा हूँ की दी ही और वहाँ उच्च शिक्षा रे बातें कलकत्ता गया हा जटे वहाँ BA MA और ऑनर्स की पढ़ाई की दी ही सा।
3: हाँ सा, वहाँ प्रारंभिक शिक्षा रहा में भी और उच्च शिक्षा के लिए कलकत्ता जटे वना BA और वकालत डिग्री भी प्राप्त की थी सा।
2: वे महात्मा गांधी रे अनुयायी भी हा। वे 1922 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल व्या हा और वना असहयोग आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय भूमिका भी निभाई ही सा।
3: बिल्कुल सा, तो गोपी देखो गोपीनाथ जी बालदोर निधन 5

0: अगस्त 1950 में हुआ हो सर।
1: असम सरकार वणा ने विभिन्न संग्रहालय द्वारा वणा की जयंती पे विशेष कार्यक्रम रो आयोजन करे और वणा ने श्रद्धांजलि भी देवे है सर।
0: बिल्कुल सर।
1: तो देखो रामा भैया, तो भी जानकारी और अभी आपके तो चलता चलता कार्यक्रम में आप एक राजस्थानी लोकगीत और सुनावा सर।
0: बिल्कुल सर।

0: तो देखो रामा भैया पा कार्यक्रम में हो जानकारी करी, राजस्थानी लोकगीत भी सुनाया और अब घड़ियाड़ी देखा तो अपने चालवारो टेम वे गयो सा। तो चाला सा
1: जय जवान
0: जय किसान।

हमारे ग्रामीण परिवार अभी सुन रहे थे अपना दैनिक कार्यक्रम खेती और घर, प्रसारण आकाशवाणी के उदयपुर केंद्र से हो रहा था। लीजिए श्रोताओं, अब सुनिए फिल्म संगीत। कार्यक्रम की शुरुआत मेजर साहब इस फिल्म के नगमे के साथ। मिलीजुली आवाजें सुदेश भोसले, सोनू निगम, जसपिंदर नरूला और अमिताभ बच्चन की।

0: कार्तिक की आवाज में अभी आपने गजनी फिल्म का गाना सुना। लीजिए अब सुनते हैं कभी अलविदा ना कहना, इस फिल्म का गाना जिसे गाया है शान और वसुंधरा ने।
1: Natural night. Do you feel alright? What a natural night.

अलका याग्निक और अमित कुमार की आवाज़ में अभी आपने जुदाई फिल्म का गाना सुना। कार्यक्रम का अगला गाना हाफ गर्लफ्रेंड इस फिल्म से।

रावण फिल्म का गाना अभी आप सुन रहे हैं मोहम्मद इरफान और कार्तिक की आवाज़ में। और इस गाने के साथ ही फिल्म संगीत का ये प्रोग्राम अब यहीं समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के उदयपुर केंद्र से बोल रहे हैं, 8:45 होने को हैं। आकाशवाणी दिल्ली से सुनिए समाचार संध्या, फिर रात 9 बजे न्यूज़ @9 समाचारों की प्रतीक्षा कीजिए।

नमस्कार। आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं आकर्षिता सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आर्थिक सलाहकार परिषद के साथ बैठक की। देश की आर्थिक परिवर्तन और दीर्घकालिक विकास प्राथमिकताओं की समीक्षा की। केंद्र ने खाद्य तेलों के लिए मानक पैकिंग साइज लागू किए। इसका उद्देश्य पारदर्शिता बढ़ाना और एक समान पैकेजिंग को बढ़ावा देना है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने नई दिल्ली में नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल से बातचीत की। कहा, दोनों देश खुली सीमा पर सुरक्षा बनाए रखने के लिए निकट सहयोग कर रहे हैं। कुवैत और बहरीन में अमरीकी सैन्य ठिकानों पर ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल हमले से पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ा। जापान में भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने जापान को हराकर अंडर 18 एशिया कप जीता। भारतीय महिला टीम ने कांस्य पदक हासिल किया। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज प्रधानमंत्री आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्यों के साथ बैठक की अध्यक्षता की। प्रधानमंत्री और परिषद ने वैश्विक उथल पुथल के दौर में भारत की आर्थिक वृद्धि को और बढ़ावा देने के लिए कई

0: विचारों और उपायों पर चर्चा की। जीवन यापन और व्यापार को सुगम बनाने के लिए विभिन्न सुधारों पर भी विचार विमर्श किया गया। सदस्यों ने भारत और विश्व पर पश्चिम एशिया संघर्ष से पड़ने वाले प्रभाव का भी आकलन प्रस्तुत किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्होंने भारत के आर्थिक परिवर्तन और दीर्घकालिक विकास प्राथमिकताओं से संबंधित व्यापक मुद्दों पर विचार विमर्श किया। सभी सदस्यों ने सुधार यात्रा को और गति देने तथा जीवन यापन और व्यापार में सुगमता सुनिश्चित करने के लिए अपने विचार साझा किए। आर्थिक सलाहकार परिषद एक स्वतंत्र निकाय है जो भारत सरकार विशेष रूप से प्रधानमंत्री को आर्थिक और संबंधित मुद्दों पर सलाह देती है। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉ मनसुख मांडविया ने कहा है कि युवा देश की सबसे बड़ी शक्ति है और वर्ष 2047 तक विकसित भारत का सपना पूरा करने में अग्रणी भूमिका निभाएंगे। नई दिल्ली में विकसित भारत के लिए युवा माई भारत यूथ कन्वेंशन में श्री मांडविया ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र निर्माण में युवाओं की आकांक्षाओं, विचारों और स्वैच्छिक योगदान की भावनाओं को साझा करने के लिए देश को ये मंच प्रदान किया है।
1: देश का 65 पॉपुलेशन बिलो 35 है, यानी कि देश युवा देश है। ये देश की युवा की शक्ति को विकसित भारत के राह पर ले जाने के लिए संयोजने का काम नरेंद्र मोदी जी ने करा है।
0: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत और नेपाल लंबी और खुली सीमा पर सुरक्षा बनाए रखने के लिए घनिष्ठ सहयोग कर रहे हैं और दोनों देश संकट के समय हमेशा एक दूसरे के साथ खड़े रहे हैं। नई दिल्ली में नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल के साथ बैठक के दौरान डॉ जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों के बीच संबंध जीवंत, जनसंबंध, सीमा पार संपर्क तथा साझा सांस्कृतिक और धार्मिक परंपराओं की मजबूत नींव पर बना है।
2: कोलैबोरेट क्लोजली टू मेंटेन सिक्योरिटी और लॉन्ग एंड यूनिकली ओपन बॉर्डर।
3: सुरक्षा बनाए रखने के लिए मिलकर काम करना होगा। दोनों देश आवश्यकता के समय हमेशा एक दूसरे के साथ खड़े रहे हैं। पश्चिम एशिया और मध्य पूर्व में जारी संकट के बावजूद हमने नेपाल को ईंधन की सप्लाई बिना किसी रुकावट के जारी रखी है। दोनों पक्षों की ओर से इस रिश्ते को जो महत्व दिया जाता है वह हाल ही में सामने आया है।
0: श्री खनाल ने कहा कि भारत नेपाल का सबसे महत्वपूर्ण साझेदार है और नेपाल ने भारत को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में प्रतिबंधों की धमकी देकर भारत की संप्रभुता को कमजोर करने का कोई भी प्रयास उल्टा पड़ेगा। सेंट पीटर्सबर्ग में श्री पुतिन ने स्वतंत्र निर्णय लेने और राष्ट्रीय हितों की रक्षा के प्रति भारत की प्रतिबद्धता पर बल दिया। उन्होंने कहा कि भारत ने बाहरी दबाव की परवाह किए बिना हमेशा अपने हितों को ध्यान में रखते हुए निर्णय लिए हैं। श्री पुतिन ने कहा कि रूस और भारत के संबंध आपसी विश्वास पर आधारित हैं और व्यापार से कहीं आगे तक हैं। उन्होंने कहा कि दोनों देश ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल कार्यक्रम सहित संयुक्त अनुसंधान और विकास परियोजनाओं में सक्रिय रूप से शामिल हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: बैंकिंग के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1454 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। केंद्र सरकार ने कानूनी माप प्रणाली के अंतर्गत खाद्य तेलों के लिए मानक पैकिंग लागू की है। इससे बाजार में अधिक पारदर्शिता और एक रूपता आएगी। उपभोक्ता कार्य विभाग ने खाद्य तेलों और घी की शुद्ध मात्रा तथा मानक पैक आकार निर्धारित करने संबंधी मानक संचालन प्रक्रिया में संशोधन किया है। स्वीकृत पैक आकार 200 ग्राम, 500 ग्राम, 1 से 5 किलो, 15 और 20 किलो है। इस पहल का उद्देश्य बाजार में विभिन्न पैकेज आकारों की बढ़ती संख्या कम करना है। इससे उपभोक्ताओं के लिए कीमतों की तुलना और सोच समझकर खरीदारी करना आसान हो जाएगा। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि पश्चिम बंगाल में लंबे समय से लंबित रेलवे परियोजनाओं का समाधान होने से राज्य में रेलवे अवसंरचना विकास के एक नए युग की शुरूआत होगी। कोलकाता के नबन्ना में श्री वैष्णव ने बताया कि वर्ष 2026-27 के रेल बजट में पश्चिम बंगाल के

0: के लिए 14,205 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। रेल मंत्री ने अगले 5 वर्षों में कोलकाता मेट्रो के लिए 60 नई रेलगाड़ियों को शुरू करने की भी घोषणा की।
1: मेट्रो के लिए इसकी न्यू ट्रेन्स, नई जनरेशन की ट्रेन्स अगले 5 वर्षों में इंडक्ट करेंगे। नई जनरेशन की ट्रेन्स आने से कोलकाता के निवासियों को बहुत अच्छी फैसिलिटी मिलेगी, वो भी एक बहुत बड़ा आगे स्टेप लिया जाएगा।
0: संचार और ग्रामीण विकास राज्य मंत्री पेम्मा सानी चंद्रशेखर ने आज आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले के नारको दुरु गांव में समृद्धि केंद्र का लोकार्पण किया। ये गांव को डिजिटल व्यवस्था में परिवर्तित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। नारको दुरु एकीकृत ग्रामीण विकास मॉडल अपनाने वाला भारत का तीसरा और तेलुगु भाषी राज्यों का पहला गांव बन गया है। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने जम्मू कश्मीर के डोडा जिले में 4th लेवेंडर महोत्सव का शुभारंभ किया। महोत्सव की थीम है लेवेंडर गोज ग्लोबल। 2 दिन के इस महोत्सव में बैगनी क्रांति की उपलब्धियों और क्षेत्र में बढ़ते लेवेंडर उद्योग को प्रदर्शित किया गया है। इससे लेवेंडर की खेती और उद्यमिता की बढ़ती सफलता का पता चलता है। राज्य के किसानों और युवा उद्यमियों के लिए लेवेंडर की खेती ने आजीविका के नए अवसर सृजित किए हैं। मध्य प्रदेश में राज्यसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुघ और रजनीश अग्रवाल ने आज नामांकन पत्र भोपाल में भरा। कांग्रेस ने पूर्व सांसद मीनाक्षी नटराजन को उम्मीदवार बनाया है। उधर आंध्र प्रदेश में जन सेना पार्टी के लिंग मनेनी रमेश ने अमरावती में नामांकन दाखिल किया। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष नितिन नवीन झारखंड के 2 दिन के दौरे पर आज रांची पहुंचे। उन्होंने कहा कि झारखंड उनकी जन्मस्थली और दूसरा घर है। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी और पार्टी के अन्य पदाधिकारियों तथा कार्यकर्ताओं ने श्री नवीन की यात्रा को संगठन के लिए महत्वपूर्ण बताया। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsoneair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन EIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
2: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.co.in पर।
0: ये आकाशवाणी है। कुवैत और बहरीन में अमरीकी सैन्य ठिकानों पर ईरान के मिसाइल हमलों से पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ गया है। एक रिपोर्ट।
3: खाड़ी देशों और अमरीका के एयर डिफेंस सिस्टम ने ज्यादातर मिसाइलों को हवा में ही नाकाम कर दिया। इससे जानमाल का कोई नुकसान नहीं हुआ। होर्मुज जलडमरू मध्य के पास ईरानी ड्रोन की गतिविधियों की खबरों के बाद अमरीकी सेना ने केशम द्वीप और गोरुक में ईरान के राडार और निगरानी ठिकानों को निशाना बनाया था, जिसके कुछ ही घंटों बाद ईरान ने ये हमले किए। अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि लगातार जारी अभियानों से ईरान की मिसाइल क्षमता काफी कम हो गई है। हालांकि ईरान ने इस दावे को खारिज कर दिया है। संघर्ष विराम पर बातचीत रुकी हुई है और क्षेत्र में तनाव लगातार बढ़ रहा है। दुबई से विनोद की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विशाल शर्मा।
0: भारत ने कहा है कि पाकिस्तान संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अपनी अस्थायी सदस्यता का दुरुपयोग जम्मू कश्मीर के बारे में झूठे दावे फैलाने के लिए कर रहा है। भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने चेतावनी दी कि पाकिस्तान को अपनी जिम्मेदारियों का ध्यान रखना चाहिए।
4: मैं पाकिस्तान को याद दिलाना चाहता हूं कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का सदस्य होना एक बड़ी जिम्मेदारी है। ये पक्षपाती और झूठी बातें फैलाने का मंच नहीं है। मैं ये बात साफ साफ कहना चाहता हूं। जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न और अटूट हिस्सा था, है और हमेशा रहेगा। पाकिस्तान की खोखली बयानबाजी और झूठे दावों से ये बुनियादी सच्चाई नहीं बदलेगी।
0: जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा है कि मादक पदार्थ मुक्त जम्मू कश्मीर अभियान एक सशक्त जन आंदोलन के रूप में उभरा है। किश्तवाड़ में एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि 19 जिलों में 56 दिनों से जारी इस अभियान ने बड़ी संख्या में लोगों को प्रभावित किया है। उपराज्यपाल ने कहा कि प्रशासन मादक पदार्थों के कारोबार के खिलाफ कड़ी कार्रवाई कर रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पंजाब के फिरोजपुर जिले में हुई दुर्घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय राहत कोष से प्रत्येक मृतक के परिजनों को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। आज सुबह फिरोजपुर फाजिलका सड़क पर एक ट्रक से वाहन की टक्कर में 9 लोगों की मौत हो गई और 22 लोग घायल हो गये।

महाराष्ट्र में छत्रपति शिवाजी महाराज का 353वां राज्याभिषेक समारोह आज पूरे उत्साह के साथ मनाया गया। मुख्य कार्यक्रम रायगढ़ जिले के महाड़ तालुका में स्थित रायगढ़ किले में आयोजित किया गया। 6 जून 1674 को शिवाजी का ऐतिहासिक राज्याभिषेक हुआ था। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने अंक सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि बढ़ाकर 7 जून कर दी है। CBSE ने बताया कि विद्यार्थी अब कल मध्यरात्रि तक अपनी आवेदन जमा कर सकेंगे। इससे पहले आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि आज तक ही निर्धारित थी। मौसम विभाग ने कल तटीय कर्नाटक, केरलम और माही में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। पूर्वोत्तर राज्यों के अधिकांश हिस्सों, आंतरिक कर्नाटक, गोवा, तमिलनाडु, पुदुचेरी और अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह में अगले 2 दिनों तक तेज बारिश की संभावना है। इस बीच दक्षिण पश्चिम मॉनसून आज महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, गोवा, कर्नाटक, तमिलनाडु और पूर्वोत्तर में आगे बढ़ गया है। जापान में भारतीय अंडर 18 पुरुष टीम ने एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट जीत

0: नामांकन के लिए आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि बढ़ाकर 7 जून कर दी है। सीबीएसई ने बताया कि विद्यार्थी अब कल मध्यरात्रि तक अपने आवेदन जमा कर सकेंगे। इससे पहले आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि आज तक ही निर्धारित थी। मौसम विभाग ने कल तटीय कर्नाटक, केरलम और माही में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। पूर्वोत्तर राज्यों के अधिकांश हिस्सों, आंतरिक कर्नाटक, गोवा, तमिलनाडु, पुदुचेरी और अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह में अगले 2 दिनों तक तेज बारिश की संभावना है। इस बीच दक्षिण पश्चिम मॉनसून आज महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, गोवा, कर्नाटक, तमिलनाडु और पूर्वोत्तर में आगे बढ़ गया है। जापान में भारतीय अंडर 18 पुरुष टीम ने एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट जीत लिया है। फाइनल में भारत ने जापान को 4-1 से हराया। आशीष तानीपूटी ने 3 और कप्तान केतन कुशवाहा ने 1 गोल किया। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय हॉकी टीम को बधाई दी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि टीम ने पूरे टूर्नामेंट में असाधारण कौशल और टीम वर्क का प्रदर्शन किया। उन्होंने अंडर 18 एशिया कप में कांस्य पदक जीतने पर भारतीय महिला हॉकी टीम को भी बधाई दी है। गोवा में भारत ने सैफ महिला फुटबॉल चैंपियनशिप का खिताब जीत लिया है। फाइनल में भारत ने बांग्लादेश को 3-0 से हराया। भारत ने 6ठी बार ये खिताब अपने नाम किया है। अहमदाबाद में विश्व योगासन खेल चैंपियनशिप में रोहन ताइडे ने सब जूनियर आर्टिस्टिक सिंगल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीत लिया है। भारत अब तक 6 स्वर्ण पदक सहित कुल 7 पदक जीत चुका है। पदक तालिका में भारत शीर्ष पर बरकरार है। न्यू चंडीगढ़ में भारत और अफगानिस्तान के बीच एकमात्र टेस्ट मैच के पहले दिन का खेल समाप्त होने तक भारत ने 3 विकेट पर 368 रन बना लिए हैं। कप्तान शुभमन गिल 103 और ऋषभ पंत 50 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद हैं। केएल राहुल ने 100 रन और साई सुदर्शन ने 81 रन की पारी खेली। ये टेस्ट मैच विश्व टेस्ट चैंपियनशिप का हिस्सा नहीं है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आर्थिक सलाहकार परिषद के साथ बैठक की। देश के आर्थिक परिवर्तन और दीर्घकालिक विकास प्राथमिकताओं की समीक्षा की। केंद्र ने खाद्य तेलों के लिए मानक पैकिंग साइज लागू किया। इसका उद्देश्य पारदर्शिता बढ़ाना और एक समान पैकेजिंग को बढ़ावा देना है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने नई दिल्ली में नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल से बातचीत की। कहा दोनों देश खुली सीमा पर सुरक्षा बनाए रखने के लिए निकट सहयोग कर रहे हैं। कुवैत और बहरीन में अमरीकी सैन्य ठिकानों पर ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल हमले से पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ा। जापान में भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने जापान को हराकर अंडर 18 एशिया कप जीता। भारतीय महिला टीम ने कांस्य पदक हासिल किया। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम वल्सा विलियम्स विद द न्यूज एट 9। The headlines. Prime Minister Narendra Modi holds meeting with the Economic Advisory Council, reviews country's economic transformation and long-term development priorities. Centre introduces standard edible oil pack sizes to enhance transparency and promote uniform packaging practices. External Affairs Minister S. Jayashankar holds talks with his Nepalese counterpart Shishir Khanal in New Delhi, says India and Nepal collaborate closely to maintain security along their open border. Tensions across West Asia escalate as Iran launches ballistic missiles towards US military facilities in Kuwait and Bahrain. And in hockey, Indian men's team lifts under 18 Asia Cup, beating hosts Japan in Kakamigahara. Indian women's team also clinches bronze.

0: जनगणना 2027 को सफल बनाना हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। जब अधिकृत प्रगणक आपके घर आए, उनका परिचय पत्र और QR कोड देखकर पुष्टि जरूर करें।
1: प्रगणक डिजिटल माध्यम से जानकारी संग्रह करेंगे। आपकी सही जानकारी से भविष्य की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद होती है।
0: आपकी सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।
2: आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज, दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल। पुरानी यादें, नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

बेसबब बात बढ़ाने की ज़रूरत क्या है। जगजीत सिंह की गाई इस गज़ल के साथ ही सुगम संगीत का ये प्रोग्राम अब यहीं समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के उदयपुर केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 9:30 होने को हैं। अगला कार्यक्रम आकाशवाणी दिल्ली से रिले होगा।

0: नमस्कार।
1: हिंदी पत्रकारिता अपने 200 वर्ष पूरे कर रही है। उन महिला पत्रकारों को याद करना जरूरी है जिन्होंने पर्दे के पीछे नहीं बल्कि मोर्चे पर खड़े होकर कलम उठाया। रोशनी गुलाबी रोशनाई की आज का हमारा संपादकीय इसी यात्रा को सलाम करता है। आज से लगभग 200 साल पहले 30 मई 1826 को कलकत्ता की एक तंग गली में पंडित जुगल किशोर शुक्ल के संपादन में उदंत मार्तंड का पहला अंक प्रकाशित हुआ था। लेकिन इस सूर्योदय की कहानी तब तक अधूरी है जब तक हम उन महिलाओं के योगदान को स्वीकार नहीं करते जिन्होंने पितृसत्तात्मक समाज की बेड़ियों को तोड़कर कलम उठाया, पत्रिकाएं निकाली और हिंदी पत्रकारिता को एक नया आयाम दिया। भारत की पहली महिला पत्रकार के रूप में हेमंत कुमारी देवी चौधरानी का नामांकित है।

0: 19वीं सदी के आखिर में जब भारतेंदु हरिश्चंद्र के कलम का चर्चा चारों ओर था, हेमंत कुमारी देवी उनकी समकालीन लेखिका और संपादिका के रूप में सक्रिय थी। सन 1888 में उन्होंने सुगृहिणी पत्रिका का संपादन किया। सन 1909 में प्रयाग से स्त्री दर्पण पत्रिका का प्रकाशन आरंभ हुआ। इसकी संपादिका थी रामेश्वरी देवी नेहरू और प्रबंधक थी कमला देवी नेहरू। ये महज एक पत्रिका नहीं थी, भारतीय नारी की सामूहिक चेतना का प्रथम मुद्रित स्वर था। इस पत्रिका ने बाल विवाह, विधवाओं की दयनीय स्थिति, स्त्री शिक्षा के अभाव और पर्दा प्रथा जैसी सामाजिक कुरीतियों को अपने पैने कलम का निशाना बनाया। आधुनिक हिंदी साहित्य में महादेवी वर्मा का नाम यदि केवल कविता तक सीमित रखा जाए तो ये उनके साथ अन्याय होगा। फ्रांसीसी लेखिका सिमोन दी बोवार की प्रसिद्ध पुस्तक द सेकंड सेक्स आने से कई वर्ष पहले ही महादेवी वर्मा ने 1930 के दशक में चांद जैसी पत्रिकाओं के लिए महिलाओं के उत्पीड़न पर शक्तिशाली निबंधों की एक श्रृंखला लिखी थी। ये निबंध केवल साहित्यिक अभिव्यक्ति नहीं थे, सामाजिक पत्रकारिता के उत्कृष्ट उदाहरण भी थे। स्वाधीनता आंदोलन के दौर में हिंदी पत्रकारिता ने राष्ट्रीय चेतना की मशाल थामी। इस मशाल को थामने में महिला पत्रकारों की मुट्ठियां भी लगी थी। सुभद्रा कुमारी चौहान, जिनकी कविता झांसी की रानी आज भी रक्त में उबाल लाती है, उन्होंने पत्र पत्रिकाओं में अपनी लेखनी से स्वाधीनता की अग्नि को भड़काया। इसी श्रृंखला में प्रताप, अभ्युदय और हिंदुस्तान जैसे पत्रों में महिला लेखिकाओं की सक्रिय भागीदारी रही। स्वतंत्रता के बाद हिंदी पत्रकारिता के विस्तार के साथ महिला पत्रकारों की भूमिका भी बदली। प्रभा दत्त जैसी संपादक ने ये साबित किया कि हिंदी के बड़े समाचार पत्र का नेतृत्व एक महिला भी उतनी ही सक्षमता से कर सकती है या शायद बेहतर कर सकती है। तब से लेकर आज तक प्रखर पत्रकारिता के माध्यम से बढ़कर एक महिला पत्रकार स्वयं को मुख्य धारा की पत्रकारिता में स्थापित करती आ रही हैं, जनता के हक की लड़ाई लड़ती आ रही हैं। आज के डिजिटल युग में महिला पत्रकारों की एक नई पीढ़ी सामने आई है। वेब पोर्टल, यूट्यूब पत्रकारिता, पॉडकास्ट और सोशल मीडिया पर हजारों महिलाएं उन मुद्दों को उठा रही हैं जिन्हें मुख्य धारा की पत्रकारिता अनदेखा करती है। ग्रामीण महिला पत्रकारिता में खबर लहरिया जैसे प्रयोग ये सिद्ध करते हैं कि नारी का कलम अब केवल शहर के संपादकीय कक्ष तक सीमित नहीं है। लेकिन श्रोताओं, ये संपादकीय केवल उपलब्धियों का गान नहीं है, ये एक ईमानदार आत्म परीक्षण भी है। 200 सालों के उत्सव के बीच संख्याओं का उपलब्ध आंकड़ा असहज करता है। क्या ये उन महिलाओं की विरासत के साथ न्याय है जिन्होंने लगभग 200 साल पहले समाज की परवाह किए बिना कलम उठाया था? आकाशवाणी, जिसकी आवाज ने दशकों से इस देश के घर घर को जोड़ा है, गांव की चौपाल से लेकर शहर के दफ्तर तक, रेडियो सिर्फ एक माध्यम नहीं, एक रिश्ता रहा है। आकाशवाणी के 90 वर्षों की इस अनूठी यात्रा पर आज अपने विचार व्यक्त कर रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार कुर्बान अली।
1: मैं पिछले 40 वर्षों से पत्रकारिता कर रहा हूं, ऑल इंडिया रेडियो में भी काफी आता रहा हूं। जो पिछले 90 वर्षों का ब्रॉडकास्टिंग का इतिहास है, खास करके जो हिंदी, उर्दू और इलाकाई जबानें हैं उनमें ब्रॉडकास्टिंग का, उसका बड़ा एक गौरवशाली इतिहास रहा है। और आजादी के वक्त से लेकर और अब तक, क्योंकि ऑल इंडिया रेडियो की शुरुआत देश की आजादी से पहले हो गई थी, देश के नवनिर्माण से लेकर के आज तक 80 बरस हो गए हैं देश की आजादी को भी, तो उसमें ऑल इंडिया रेडियो का बहुत बड़ा योगदान रहा है। मैं समझता हूं कि बहुत ही कारगर योगदान है। न सिर्फ ये कि उसने लोगों को खबरें पहुंचाने का काम किया है, बल्कि उन्हें एजुकेट करने का और उनका एंटरटेनमेंट करने का भी काम किया है। ये एक बहुत बड़ा रोल है। और चूंकि एक जमाना था कि जब सिर्फ ऑल इंडिया रेडियो ही हुआ करता था, 90 तक मैं समझता हूं कि ऑल इंडिया रेडियो का बहुत बड़ा योगदान इस देश के लिए रहा है और उसे कभी भुलाया नहीं जा सकेगा।

वरिष्ठ पत्रकार कुर्बान अली। उनके अनुभव, उनकी स्मृतियाँ और उनका विश्लेषण निश्चित ही हमें रेडियो की उस आत्मा तक ले जाएगा जो आज भी धड़क रही है। सच में जिस माध्यम ने आजादी की आवाज को सहेजा, देश की भावनाओं को बोली दी, वो आकाशवाणी कोई यंत्र नहीं, एक जीवंत परंपरा है।

0: साहित्य जब समाज से कट जाता है तो केवल शब्दों का खेल बन जाता है, लेकिन जब साहित्य की जड़ें जमीन से जुड़ी हों तो वो एक नया अर्थ पा लेता है। आज की हमारी अगली प्रस्तुति में हम एक ऐसी ही जरूरी बातचीत लेकर आए हैं वरिष्ठ साहित्यकार पंकज बिष्ट के साथ। उनसे बातचीत कर रहे हैं प्राध्यापक और साहित्यकर्मी विशाल पांडे। तो सुनते हैं हमारी अगली प्रस्तुति, साहित्य समाज और सरोकार।
1: पंकज बिष्ट अपनी कहानियों और संपादन के लिए हिंदी साहित्य में जाने जाते हैं। उनकी कहानियां 15x25, बच्चे गवाह नहीं हो सकते, उपन्यास लेकिन दरवाजा, उस चिड़िया का नाम, पंख वाली नाव, गोलू और भोलू से हिंदी साहित्य हम सभी समृद्ध हुए। मैं जानना चाहूंगा पंकज जी कि लेखन की ओर आपका पहला झुकाव कब और कैसे उत्पन्न हुआ?
2: देखिए, ये कहना तो थोड़ा मुश्किल है कि मैं ये नहीं मान के चलता था कि मैं कहानीकार बनूंगा या उपन्यासकार बनूंगा, लेकिन मैं ये चाहता था कि मैं लिखने पढ़ने का काम चुनूं और करूं। बहुत संभव है कि अगर मैं पत्रकारिता वगैरह में नहीं आता तो हो सकता था मैं टीचिंग के काम में चला जाता, अध्यापन में जाता, तो जो कि उतना ही बहुत बड़ा होता। क्योंकि मैं लिखने के प्रति मेरा जो अनुराग था वो ज्यादा था, तो मैंने जब लिखना शुरू किया और वो थोड़ी इधर उधर उसके लिए कोशिश करी तो मुझको ये रास्ते ज्यादा बेहतर दिखाई देगा। तो उसमें ये हुआ कि जैसे मैंने ग्रेजुएशन करने के बाद यहाँ एक जर्नलिज्म का स्कूल खुला तो उसमें एडमिशन लिया, उसमें मैंने पढ़ा। वो यहाँ के जर्नलिज्म के भारत में स्कूलों में शुरुआती था, वो बाद में खत्म हो गया। उससे मुझे मेरा एक्सपोजर हुआ और मैं डेली वगैरह में जाने लगा। और जैसे मैं हिंदी में लिखना, नोवेल टाइम्स विशेषकर, उस दौरान के एडिटर उनके, इनका नाम अक्षय कुमार जैन था, वो भी जुड़े हुए थे, तो वहां मुझको एंट्री मिल गई। यानी कि मेरे लेख उन्होंने कहा, वो एडिटर वगैरह देख लेते थे। फिर वहां दो एडिटर रहते थे, उनमें एक महिला थी, रविवारी संस्करण देखती थी, तो वो बेचारी भली भली औरत थी, तो वो मुझसे फिर धीरे धीरे वो जब काम करवाने लगी तो मैं अभी अच्छा काम कर, रिलेटिवली उनको ठीक लगने लगा। तो उससे मैं, मुझे लिखने की और चीजों को समझने की और विषय कैसे चुनना चाहिए इस बात की मेरी समझ थोड़ी बनी, तो ये मुझको फायदा हुआ कि बाद में अपने कैरियर को उसी तरफ बढ़ाने में मुझे उसका मदद मिली।
1: पंकज जी, जहां तक मुझे याद आ रहा है, आपकी पहली कहानी 1967 में साप्ताहिक हिंदुस्तान में छपी। क्या आपको याद है कि पहली बार अपनी किसी रचना को प्रकाशित देखकर आपने क्या अनुभव किया था?
2: वो जो एक कहानी छपी उसका अनुभव जो है बड़ा बहुत मजेदार है। हुआ ये था कि मैंने उन दिनों एक लेखिका होती थी शची रानी गुरटू, उन्होंने मेरे ख्याल से आर्ट वाइट पर बहुत लिखा है, उनका बेटा वो साप्ताहिक हिंदुस्तान में काम करता था, उससे कहीं मेरी मुलाकात हो गई, बातचीत। यंग था वो मेरी जैसा, तो मैं थोड़ा छोटा था, तो उसने बातचीत में सुना, तुम क्या करते हो? मैंने कहा लिखते कर। उसने कहा यार तुम लिखते, हमारे यहाँ दिखाओ तुम क्या कहानी लिखते हो, मैं देखूं तुम्हारी कहानी। तो मैं डर के मारे में दिखा लिया, तो बड़ा बड़ा मैगजीन है, कौन छापेगा क्या करेगा। तो मैंने उन्हें लिखा हुआ था, उसको देखने को दे दी। उसने जी उन्हें कहा तुम्हारी कहानी ठीक ठाक है, तुम ऐसा करो हमारे एडिटर को दो, मैं देता हूँ। तो उन दोनों एडिटर कोई सज्जन थे, अब वो याद नहीं आ रहा, पहले भटनागर जी हुआ करते थे, उनके बाद कोई थे, तो वो उन्होंने वो देखी और उन्होंने मुझे पत्र लिखा। जिंदगी में पहली बार आप हैं और कोई संपादक आपको पत्र लिख रहा है कि आप आगे मिलिए और मैं आपसे चर्चा करता हूँ।

0: मैं बड़ा उत्साहित और रोमांचित कि भाई ये क्या कहने वाले। मैं वहां गया, उन्होंने कहानी की बड़ी तारीफ करी और उसके बाद मुझसे कहा कि देखिए आपकी कहानी इतनी अच्छी है कि हम अपनी पत्रिका में हमारे पाठकों के जिससे ऊपर की है तो इसलिए हम नहीं छापेंगे। तो मैं खैर कहानी लेकर वापस आ गया। सौभाग्य से वो एडिटर जो है बदल गए और वहां मनोहर श्याम जोशी आए। हाँ, उसने मुझसे कहा अब दे दो, फिर से देते हैं। तो मैंने उसको दिया, वही फॉरवर्ड कर देता था। तो फिर मुझे वहां से लेटर आया, मिलने आओ। यार फिर ये क्या तमाशा है। पहली बार तो मैंने सोचा कि उन्होंने मुझे बुलाया और कहानी छापी नहीं और अब ये फिर कुछ ऐसे ही होगा। फिर मैं मरे मन से वहां पहुंचा। पहली बार मैं मनोहर श्याम जोशी से मिला तो जोशी बोले तुम यार ये क्या कहानी लिखते हो, थोड़ा सा और जो जिंदगी चीजें हैं उसको देखो, ये क्या रोमांटिक कहानी वाली लिख रहे हो तुम। अब मैं समझ गया कि कहानी छापेंगे नहीं। जाते हुए बोले मैं ये तुम्हारी कहानी तो छाप रहा हूँ लेकिन तुम जो है ना और कुछ चीजें देखो। तो एक तरह से मेरे लिए प्रोत्साहन भी हुआ और कहानी छप भी गई। हाँ, मतलब एक चीज ये थी उसमें एक फोटो भी छपता था तो फोटो छपने से जो अतिरिक्त आनंद आया तो वो अतिरिक्त था।
1: मैं जानना चाहता हूँ कि आपके लिए साहित्य केवल अभिव्यक्ति है या सामाजिक हस्तक्षेप का माध्यम भी है।
0: असल में मेरे लिए वो दोनों एक से जुड़े हुए हैं, समाज और रचनात्मकता। क्योंकि मैं व्यक्ति हूँ, एक मनुष्य हूँ, एक खास समाज में रहता हूँ, उसकी संस्कृति को रिप्रेजेंट करता हूँ, तो मैं जिस तरह से उसको देखता हूँ, उसकी अच्छाइयों को बुराइयों को अपनी निकटता से, वो मेरी रचनाओं में आएंगे आएंगे वो आती है। और अगर कोई चीज ज्यादा चुनौतीपूर्ण है जो लगता है कि समाज को पिछड़े करने में या किसी एक सेक्शन के साथ अन्याय करने में अगर वो दिखाई दे रही है तो ऐसा है कि एक लेखक के रूप में आप उद्वेलित होते हैं क्योंकि आप अपने लेखन से आप चीजों को जो देखने का आपकी जो दृष्टि होती है वो ये बनती है कि वो समझे कि आखिर ये जो हो रहा है ये क्यों हो रहा है, ये खास तरह का व्यवहार कुछ से साथ हो रहा है कुछ के साथ नहीं हो रहा, तो ये सारी चीजें क्यों हो रही है ये आपको देख। तो लेखक के रूप में ये सब कुछ आप देखते हैं, तभी अगर आप उपन्यास लिखना चाहते हैं और समाज से जुड़ा हुआ लिखना चाहते हैं या आप वास्तविक समस्या को इसी को लेकर लिखना चाहते हैं तो आपको समाज को समझने का दृष्टि तो होनी चाहिए, बिना उसके तो आप नहीं कभी भी ढंग के उससे नहीं लिख पाएंगे। तो अब मैं अपनी रचनाओं में जो कुछ भी वो आ रहा है तो एक तरह से वो रचनात्मकता का हिस्सा है, वो अतिरिक्त तो कुछ नहीं।
1: पंकज जी, आपकी कहानियों को पढ़ते हुए लगता है कि उसमें आम आदमी की पीड़ा और व्यवस्था के प्रति एक तीखा असंतोष है, ये दृष्टि आपके भीतर कैसे विकसित होती है?
0: देखिए कारण वही है, मैंने चीजों को देखने का और जो स्थितियां हैं उनको समझने का कि आखिर क्यों जो इस असमानता है, जो अन्याय है, जो कुछ लोगों के साथ जो भेदभाव है वो क्यों और है, तो वो क्यों नहीं बदल रहा है अब तक, क्यों उसमें कोई प्रयत्न नहीं दिखाई दे रहा, वो सारी चीजें मुझे प्रेरित करते रहे, देखते रहे। तो मैंने कोशिश करी कि अब एक तरह से चूंकि मैं जिन स्थितियों में शुरुआत में कुछ दिनों रहने के हुआ पड़ा हमको, तो जो चीजों का ना होना, आपके पास पैसे की कमी होना, आपको एक बेहतर स्थिति में नहीं रहने देना, है ना, जो अभाव जिसको कहते हैं, अभाव की जो स्थिति है आपने सहा है तो आप उससे औरों के साथ आइडेंटिफाई करने में आप मदद मिली। तो मतलब एक लेखक के रूप और एक लेखक के रूप में मेरे ख्याल से एक रचनाकार के रूप में या कलाकार के रूप में ये भी होता है कि जो उसकी संवेदनशीलता है वो उसकी अपनी जो अनुभव है उनके परे भी जाते, वो औरों से भी सीखती है, औरों को भी समझने की कोशिश करती है। तो जो भी मैंने जिस तरह से मैं जिंदगी को देखा है, जो अभिव्यक्त करने की कोशिश करी है, उसमें यही तरीका वो यही है। जो
1: पंकज जी, आपकी रचनाओं में संवेदना और प्रतिरोध दोनों साथ साथ चलते हैं, क्या यह आपके लेखन की सचेत रणनीति है?
0: ऐसा कुछ नहीं है। होता क्या है कि आप चीजों को देखते हैं, जब आप किसी मान लीजिए कोई खास स्थिति को देख रहे हो, कोई अपंग है मान लीजिए, वो नहीं चल सक रहा है, उसको चलने में मदद नहीं मिल रही है और लोग उसकी मदद नहीं कर रहे, ये जब आप देख रहे हैं तो इससे आप जो अर्थ निकाल रहे हैं और जो जिस तरह से उसको आप अभिव्यक्त करना चाहते हैं या जिस तरह से आप उसको बदलना चाहते हैं, ये सारी प्रतिक्रियाओं को आप एक लेखक के रूप में लिखना चाहते हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि अगर आपकी दृष्टि संवेदनशील है, आप अगर मानवीय हैं, तो आपको जो भी तकलीफ दूसरे आदमी की होगी आप उससे जरूर अपने को आइडेंटिफाई करेंगे, ऐसा नहीं होगा। वैसे मेरे ख्याल से लेखक होना एक अतिरिक्त जिम्मेदारी हो सकती है।

0: सकती है, मतलब एक आदमी होने के कारण, ह्यूमन बीइंग होने के कारण हमारी जिम्मेदारी है कि हम जो भी हमसे कमजोर हो, जिसको जरूरत हो, उसकी मदद करें।
1: पंकज जी, आज के समय में कहानी और उपन्यास के स्वरूप में आप क्या परिवर्तन महसूस करते हैं इस बदलते हुए समय में?
0: देखिए, हो क्या रहा है कि कहानी का जो महत्व है, वो कहानी चूंकि बहुत छोटे दायरे में चीजों को देखने की कोशिश करती है, तो मेरे ख्याल से ये कहानी की जगह टेलीविजन, रेडियो, जो और जो एंटरटेनमेंट के माध्यम है, उन्होंने ले ली है। अब जो माध्यम बचता है वो बड़े नैरेटिव में बचता है, वो उपन्यास है। अब उपन्यास इसलिए शायद मेरे ख्याल से कहानियों में अब उतना लेखन नहीं हो नजर आता है मुझको, ऐसा मेरा मानना है। लेकिन एक और बात भी है, जो श्रव्य या दृश्य माध्यम है उनकी अपनी सीमा है, उनमें आपको ध्यान से देखना पड़ेगा, और वो जो कह रहा है वो आप पे यथावत, क्योंकि वो दृश्य आपके सामने एक तरह से साकार है, तो वो पूरी तरह आप पे छाए रहते, जो भी डायरेक्टर या प्रोड्यूसर जो भी वो बना रहा है उसको, या एक्टर मेरा मतलब जो एक्ट कर। लेकिन जो रचनात्मक है, जो लिखना है, उसमें यह है कि लेखक जो लेखन के साथ यह है कि आपको जो लिखने में कहा जा रहा है उसको अपने दिमाग में, अपने अपने चेतना में, अपनी संवेदना में एकाकार करना है, उससे तालमेल बैठाना है और उसको उस तरह से दुनिया को समझने की कोशिश करनी है। तो वो जो है, जो इन्वॉल्वमेंट का लेवल है, सेंसिटिविटी का लेवल है, वो डिफरेंट है, तो वो ज्यादा सक्रिय है, वो एक तरफा नहीं है। जी, इसका वही महत्व यह है।
1: बहुत सारी खट्टी मीठी यादों के साथ आकाशवाणी का आपका सफर रहा है पंकज जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए।
0: बहुत बहुत आपका धन्यवाद, आकाशवाणी का धन्यवाद।
2: पंकज बिष्ट और विशाल पांडे का ये संवाद हमें सोचने पर मजबूर करता है कि हम जो पढ़ते हैं, जो लिखते हैं, क्या वो उस जिंदगी से जुड़ा है जो हमारे आसपास सांस ले रही है। हर दौर में साहित्य को एक नई पीढ़ी, एक नई ऊर्जा की जरूरत होती है, और ये काम आकाशवाणी और साहित्य अकादमी जैसे संस्थान लगातार करते चले आ रहे हैं। हमारी अगली प्रस्तुति सृजन की अगली पंक्ति में सुनते हैं विकास दवे, निदेशक मध्य प्रदेश साहित्य अकादमी से चंद्रशेखर शर्मा की बातचीत।
3: हमारे साथ हैं लब्ध प्रतिष्ठ बाल साहित्यकार, मध्य प्रदेश हिंदी साहित्य अकादमी के निदेशक डॉक्टर विकास दुबे। सर, सर
4: आज बहुत अच्छा लग रहा है और आकाशवाणी के इस पटल पर विशेष करके मुझे इस बात को लेकर के बड़ा गर्व की अनुभूति हो रही है कि चूंकि आकाशवाणी और साहित्य समाज ये एक ही परिवार के दो हिस्से हैं।
3: सर, रेडियो को हम बोलते हैं एक दृष्टिहीन कला, ब्लाइंड आर्ट, और अज्ञेय जी ने कहा है कि रेडियो ने साहित्य में श्रव्य बिंबों की नई दुनिया रची है। आपसे जानना चाहेंगे कि क्या विचार श्रृंखला इस बारे में कहती है।
4: अज्ञेय और मुक्तिबोध दोनों को हमको स्मरण करना चाहिए।
3: बिल्कुल,
4: और लगभग दोनों ने समान धर्मी विचार व्यक्त किए थे, विशेष करके आकाशवाणी के इस माध्यम को लेकर के।
3: जी,
4: उससे पहले तक रंग कर्म और नाटक विधा ये चूंकि दृश्य विधा के अंतर्गत आया करते थे। जब आकाशवाणी का प्रणयन हुआ उसके पश्चात रेडियो रूपक जैसे शब्द समाज ने सुने।
3: जी,
4: और रेडियो रूपक ने दरअसल साहित्य क्षेत्र में इन मान्यताओं को एक प्रकार से आश्वस्ति दी कि यदि आप आंखों के सामने दृश्य उपस्थित न भी करें तो भी केवल स्वरों के उतार चढ़ाव से, स्वरों का जो पूरा भाव भंगिमाएं अभिव्यक्त करने का जो सौष्ठव है, उसके माध्यम से भी एक पूरे के पूरे नाट्य विधा को आप स्थापित कर सकते हैं।
3: शब्द चित्र
4: अद्भुत, वो शब्द चित्र के ही माध्यम से एक प्रकार से। और सबसे बड़ी बात यह कि आकाशवाणी ने जिस ढंग से भाषा को अपने साथ सहेजने का प्रयत्न किया, भारतीय समाज में जो आक्रांताओं का जो युग था, उस औपनिवेशिक मानसिकता से बाहर आने के लिए, और विशेष करके हम सब पर पड़ा हुआ जो भाषाई प्रभाव था, किसी शब्द की, वाक्य विन्यास की, व्याकरणगत वाक्य विन्यास की, उसमें निश्चित तौर पर एक वैक्सीन का काम किया है आकाशवाणी ने।
3: साहित्यिक शुचिता बनाए रखते हुए मर्यादित और सुगम्य भाषा के माध्यम से साहित्य को रेडियो ने जन जन तक पहुंचाए हैं। इस संदर्भ में सर, विष्णु प्रभाकर जी को हम याद करते हुए एक बात कहना चाहेंगे कि रेडियो ने साहित्य में संवादात्मक रूप को निखारा है। हम इस संदर्भ में सर आपके विचार जानना।
4: स्वाभाविक रूप से साहित्य को जन जन तक पहुंचाने का काम आकाशवाणी ने सर्वाधिक किया ही है।
3: जी।
4: और मुझे ऐसा लगता है कि चूंकि हमारे यहाँ पर साहित्य क्षेत्र में दो शब्द प्रचलन में आते हैं, लोक और शास्त्र।
3: जी।
4: तो शास्त्रीय अवधारणाओं को लोक तक पहुंचाने का काम अगर किसी ने किया है तो वो आकाशवाणी ने किया है।
3: जी।
4: और विशेष करके ये जो साहित्य की जो भिन्न भिन्न विधाएं हैं जिनसे सामान्य जन को परिचित कराने का काम किया, इसके साथ साथ मुझे है कि साहित्यकारों

0: को भी परिचय दिलाने का काम आकाशवाणी ने बड़ी मात्रा में किया है। तो ये जो साहित्य जगत को लोक से जोड़ना, लोक को साहित्य से जोड़ना और उन सबके बीच में सेतु का काम करना, और ये सब करते हुए व्याकरण भी सिखा रही है आकाशवाणी, भाव पक्ष भी समझा रही है। आप देखिए, चाहे हम लोगों को कई बार लगता होगा कि वे जब सी रामचंद्र की बात करते हैं, हमारे जो उद्घोषक होते हैं, वो जब कहते हैं कि भरत व्यास ने कैसे कैसे शब्दों का उपयोग किया है, इंदिवर ने इस गीत में ऐसा ऐसा हुआ, या किशोर दा ने गाते समय शब्द को इस तरह से गाने की कोशिश की, लेकिन फिर गीतकार वहां उपस्थित थे, उन्होंने कहा नहीं, इस शब्द का उच्चारण भोजपुरी में ऐसा होता है, अवधी में ऐसा होता है, इसलिए आपको इस ढंग से करना है। तो ये जो सिखाने का क्रम था, ये मुझे लगता है कि आकाशवाणी एक प्रशिक्षक की भूमिका में रही है समाज में, साहित्य और व्याकरण और भाषा की दृष्टि से।
1: जी, अमृतलाल नागर जी का सर एक कोटेशन है कि रेडियो जनमानस तक साहित्य की पहुंच का सबसे सशक्त माध्यम है। क्या आप मानते हैं सर कि रेडियो ने साहित्य को लोकधारा से जोड़ा?
0: तकनीकी रूप से इस बात को हम इस दृष्टि से भी स्वीकार कर सकते हैं कि रेडियो अभिजात्य वर्ग की पहचान तो था ही। आज यदि हम अनुभव करते हैं कि आज हमारे ड्राइंग रूम में बड़े बड़े थिएटर्स बना करके लोग बैठे हैं और एक दीवार के आकार के टेलीविजन सेट लगे हुए हैं, कमरे के चारों कोने में स्पीकर लगे हुए हैं, उस स्थिति से निकलने वाले लोगों को शायद ये कल्पना भी नहीं होगी कि आकाशवाणी या रेडियो को सुनने के लिए एक जमाने में लाइसेंस लेना पड़ता था। मैंने आकाशवाणी के 50 वर्ष जब हुए थे तब एक लेख लिखा था, और उस लेख में मैंने इस बात का उल्लेख किया था कि आकाशवाणी की भले ही वह यात्रा इतिहास रही हो, लेकिन आकाशवाणी का आज हमको क्या दिखाता है? आज हमको दिखाता है कि खेत में हल जोतता हुआ किसान जो है, वह दोनों बेलों की घंटियों की आवाज के बीच में, वो जो दोनों बेलों के कंधे पर जुआ रखा है, उस जुए के सेंटर में रस्सी से बांध करके एक रेडियो लटका करके रखता है, और खेत में अनाज बोते हुए भी, बीज बोते हुए भी, वो आकाशवाणी के माध्यम से सुरीले गीत सुन रहा है, देश भर की खबरों से अपने आप को जोड़ रहा है। और इतना ही नहीं, तो मुझे ऐसा लगता है कि कृषि के क्षेत्र में जिस तरह से जानकारियों का प्रदाय का काम आकाशवाणी ने किया है, वो तो ऐसा लगता है कि बिल्कुल अंत्योदय की पराकाष्ठा मानता हूं मैं इसको। अब कृषि वैज्ञानिकों के द्वारा इतने सारे जो शोध कार्य संपन्न होते हैं, उन्हें एक अनपढ़ किसान तक पहुंचाने का काम भी अगर कोई कर पाता है, तो वो निश्चित तौर पर आकाशवाणी कर रही है।
1: हम आपसे सर जानना चाहेंगे कि आकाशवाणी के मंच ने किस प्रकार से साहित्यकारों की पहचान और लोकप्रियता में श्रीवृद्धि करने में अपना योगदान दिया है।
0: सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हों, महादेवी वर्मा जी हों, सुभद्रा कुमारी चौहान हूं
1: जी,
0: हम देखते हैं कि इन सब रचनाकारों ने जिस ढंग से आकाशवाणी को अत्यंत श्रद्धा के साथ अपनाया और उनकी उन कालजयी रचनाओं को अगर जनसामान्य ने कंठस्थ किया, मुखाग्र किया, तो उसमें निश्चित तौर पर आकाशवाणी का एक बड़ा हाथ था। अमिताभ बच्चन जी चूंकि सदी के महानायक कहलाते हैं, और उन्होंने जब पहली बार मधुशाला को अपने स्वर देकर के और एक कंपनी के माध्यम से एक एल्बम तैयार किया था, तब एक पत्रकार ने उनसे पूछा था, तो उन्होंने यही कहा था कि भाई इस काम को आकाशवाणी बहुत पहले कर चुकी है, और विशेष करके इसमें मैं आंचलिक साहित्यकारों को पहचान दिलाने के काम में आकाशवाणी का जो अवदान है वो तो अद्भुत है।
1: इसी बात को हम आगे बढ़ाते हुए आपसे जानना चाहेंगे कि आकाशवाणी ने साहित्य की नई विधाओं को भी जन्म दिया है, जैसे रेडियो रूपक हुआ, रेडियो नाटक हुआ, और आकाशवाणी का एक गर्विला सफर रहा है जिसमें भारत भूषण अग्रवाल, अमृतलाल नागर, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना और पीएल देशपांडे जैसे ये साहित्यकारों ने काम किया है यहाँ पर, और इन नई विधाओं के उन्नयन में अपना योगदान दिया है।
0: चाहे वो कृषि जगत में नंदाजी भेरा जी के माध्यम से कृष्णकांत जी दुबे, नरहरी पटेल जी, स्वतंत्र कुमार जी ओझा को मैं इस समय स्मरण करना चाहता हूँ, ये एक पूरी की पूरी जो पीढ़ियां थी, उन पीढ़ियों ने अपने आप को एक प्रकार से होम किया, उन्होंने अपने जीवन का कण कण और क्षण क्षण लगा करके इस आकाशवाणी की विधा को इतना उदात्त स्तर पर पहुंचाया कि लगता है कि सचमुच इन लोगों ने एक तप की तरह इस काम को किया था। और जिन नई विधाओं के संदर्भ में आप कह रहे हैं, मुझे लगता है कि आकाशवाणी के माध्यम से नाटक से इतर भी अगर हम चलें, तो जिसे कथा कथन की शैली को विकसित करना, कहानी लेखन भले ही साहित्य का विषय होगा, लेकिन कथा कथन साहित्य का विषय नहीं है, वो एक प्रकार से कला का विषय है, लेकिन साहित्य और कला को सेतु बना करके उन्होंने जिस ढंग से कहानियां पढ़ना प्रारंभ की, मैं इस दिशा में कई बार इस बात का उल्लेख भी करता हूं कि सुबह का जो चिंतन आता है, चिंतन का प्रत्येक एपिसोड जो होता है वो अपने आप में ललित निबंध होता है एक प्रकार का, और इस ललित निबंध को सुनना यानी केवल वो कानों को सुख देता है, मानस को सुख देता है, ऐसा नहीं, बिल्कुल आत्मा भी उसमें तृप्त हो जाती है। मुझे लगता है कि ये इतनी बड़ी उपलब्धि है कि इसको लेकर के आकाशवाणी के इस अवदान को लेकर के जितना कहा जाए उतना कम होगा। आकाशवाणी के जो संग्रहालय है, आर्काइव्स है, उनमें इतनी अभूतपूर्व सामग्रियां हैं। अगर मैं चाहूं कि किसी युग में लता जी मुंबई के आकाशवाणी स्टूडियो में बैठ करके केवल अभ्यास कर रही थी और मशीन पर बैठे हुए उस समय के तकनीक

0: विषय ने रिकॉर्ड कर लिया उनको, केवल अभ्यास की वाणियों को या आपस की बातचीत को रिकॉर्ड कर लिया, और वो सब के सब आज चाहे वो शुभा मुद्गल हो, चाहे हरिप्रसाद चौरसिया जी हो, चाहे छन्नू मिश्रा जी हो, उन सब की सामान्य बातचीत जो कि ऑफिशियली आकाशवाणी पर कभी प्रसारित नहीं हुई, लेकिन वो सब चीजें आज भी हमारे पास उस मैग्नेटिक टेप पर रिकॉर्डेड हैं। और मुझे कहते हुए गर्व है कि वर्तमान में प्रसार भारती ने अपने ऐसे सारे संग्रहालयों को एक प्रकार से, चूंकि जो क्लाउड है वो क्लाउड को मैं आधुनिक युग का कालपात्र ही मानता हूं, वो अब अक्षय भंडार हो गया है। तो मुझे ऐसा लगता है कि सबके लिए जो ओपन फॉर ऑल कर दिया है, मैं तो कई बार उस आर्काइव पर जाता हूं तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं घंटों उससे बाहर ना आऊं, तो मुझे लगता है कि उसका लाभ हम सब लोगों को लेना चाहिए। और विशेष करके साहित्य क्षेत्र के साहित्यकारों से मैं आग्रह करूंगा, केवल नवोदित पीढ़ी से नहीं, पुरानी पीढ़ी के साहित्यकारों से भी, कि वे कभी माखन दादा को, वीरेंद्र मिश्र जी को, महादेवी वर्मा जी को, इन सबको उनके मूल स्वर में सुने, तो हमारे ध्यान में आता है कि उनकी सोच कितनी उदात्त थी, कितने उदार हृदय से वो साहित्य की समीक्षाएं किया करते थे। आज जिस ढंग से एक दूसरे को प्रशंसित करने का काम हम लोग कर रहे हैं, उस युग में आकाशवाणी हमारे लिए एक अच्छा प्रशिक्षक इस मामले में भी हो सकता है।
1: सृजन की अगली पंक्ति मध्य प्रदेश साहित्य अकादमी के निदेशक विकास दवे से चंद्रशेखर शर्मा की ये बातचीत

0: पुरानी पीढ़ी के साहित्यकारों से भी कि वे कभी माखन दादा को, वीरेंद्र मिश्र जी को, महादेवी वर्मा जी को, इन सबको उनके मूल स्वर में सुने तो हमारे ध्यान में आता है कि उनकी सोच कितनी उदात्त थी, कितने उदार हृदय से वो साहित्य की समीक्षाएं किया करते थे। आज जिस ढंग से एक दूसरे को प्रशंसित करने का काम हम लोग कर रहे हैं, उस युग में आकाशवाणी हमारे लिए एक अच्छा प्रशिक्षक इस मामले में भी हो सकता है।
1: सृजन की अगली पंक्ति मध्य प्रदेश साहित्य अकादमी के निदेशक विकास दवे से चंद्रशेखर शर्मा की ये बातचीत आपने अभी सुनी। सौजन्य आकाशवाणी भोपाल। और अब स्मृति नमन। वो जो चले गए लेकिन अपने शब्दों से, अपनी कृतियों से हमेशा के लिए जी गए। आज हम याद कर रहे हैं ऐसे ही तीन महान विभूतियों को, जन कवि नागार्जुन, जिनकी कविता धरती की तरह थी, ठोस, उर्वर और सच्ची, जो हाशिए के इंसान की आवाज बने। काजी नजरुल इस्लाम, जो बांग्लादेश के राष्ट्र कवि भी हैं, जिनकी विद्रोही कविता ने एक पूरी पीढ़ी को जगाया। मुद्रा राक्षस, हिंदी के वो फक्कड़ रचनाकार जिनके कलम ने कभी सत्ता से समझौता नहीं किया। नाटक, उपन्यास, आलोचना, हर विधा में उन्होंने अपनी अलग छाप छोड़ी। नागार्जुन, काजी नजरुल इस्लाम और मुद्रा राक्षस की ये त्रयी हमें याद दिलाती है कि साहित्यकार मरता नहीं, वो अपनी रचनाओं में बार बार जन्म लेता है। इस त्रयी को साहित्य भारती का विनम्र स्मृति नमन। इसी के साथ साहित्य भारती का आज का ये अंक यही संपन्न होता है। अगली बार फिर मिलेंगे नए शब्दों के साथ, नई संवेदनाओं के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, सुनते रहिए, सोचते रहिए। नवोदिता को अनुमति दीजिए। नमस्कार।

0: हम आकाशवाणी के उदयपुर केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 10 बजे हैं। संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम आप सुनेंगे आकाशवाणी दिल्ली से।
1: आज सुनते हैं ऋषिकेश गांगुली जी का शास्त्रीय गायन।
2: दिस इज आकाशवाणी। इन टुनाइट्स ब्रॉडकास्ट ऑफ द नेशनल प्रोग्राम ऑफ म्यूजिक वी ब्रिंग टू यू अ वोकल रिसाइटल बाय ऋषिकेश गांगुली।
1: पुणे के एक संगीत प्रेमी परिवार में जन्मे ऋषिकेश जी को 5 वर्ष की अल्पायु में ही अपने पिता श्री पुरुषोत्तम गांगुली से संगीत की प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त हुई। इसके पश्चात उन्होंने डॉक्टर विकास कशालकर और पंडित यशवंत बुआ जोशी से 8 वर्षों तक ग्वालियर घराने के गायकी को बारीकियों से सीखा। इसके बाद ऋषिकेश जी ने ITC संगीत रिसर्च अकादमी की प्रतिष्ठित छात्रवृत्ति प्राप्त की और कलकत्ता में ग्वालियर, जयपुर, आगरा घराने के दिग्गज पंडित उल्लास कशालकर के सानिध्य में गुरु शिष्य परंपरा के अंतर्गत 6 वर्षों तक गहन प्रशिक्षण लिया। उन्हें बनारस घराने की विदुषी गिरिजा देवी जी से ठुमरी, दादरा और कजरी जैसे उपशास्त्रीय रूपों को सीखने का सौभाग्य भी प्राप्त हुआ।
2: Born into a music loving family in Pune, Rishikesh was initiated into vocal music at the tender age of 5 by his father, Shri Purushottam Gangurde. He later received extensive training for 8 years from Dr. Vikas Kashalkar and Pandit Yashwant Bua Joshi, learning the intricacies of the Gwalior Gharana. Thereafter, Rishikesh received the prestigious ITC Sangeet Research Academy scholarship, coming under the tutelage of the stalwart Pandit Ullas Kashalkar. For 6 years, he underwent intense training in the pure Gharana Gayaki of the Gwalior, Jaipur and Agra traditions. He was also fortunate to learn semi-classical forms like Thumri and Dadra from the legendary Vidushi Girija Devi of the Banaras Gharana.
1: Rishikesh Gangurde, Akashwani ke A Shreni ke Gayak Kalakar hai. उनकी गायकी में संगीत का सौंदर्य, भव्यता और माधुर्य झलकता है जो सीधे श्रोताओं के मन को छू लेता है, और यही उनके गायकी

0: की विशेषता है। गायन के साथ साथ वे एक कुशल तबला वादक भी है और उन्होंने कई कार्यक्रमों में अपने गुरु पंडित उल्लास कशाळकर के साथ तबले पर संगत की है। वर्तमान में वे भारतीय विद्यापीठ पुणे के स्कूल ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स में सहायक प्राध्यापक के रूप में कार्यरत है।
1: ऋषिकेश गांगुर्डे इज एन ए ग्रेड आर्टिस्ट ऑफ आकाशवाणी एंड इज स्टेडली कार्विंग अ निश फॉर हिमसेल्फ एज अ घरानेदार वोकलिस्ट हु ट्राइज टू गिव एक्सप्रेशन टू द ब्यूटी ग्रैंडियर एंड स्वीटनेस ऑफ म्यूजिक सो एज टू टच द ह्यूमन हार्ट एंड दिस इज द हॉलमार्क ऑफ हिज सिंगिंग। बियॉन्ड हिज वोकल प्रोविस He is an accomplished tabla player and has even accompanied his guru, Pandit Ullas Kashalkar, in various concerts. Currently, he serves as an assistant professor in the School of Performing Arts at Bharati Vidyapit, Pune.
0: आज के कार्यक्रम में ऋषिकेश गांगुर्डे जी को तबले पर संगत कर रहे हैं आशय कुलकर्णी और हारमोनियम पर संगत कर रहे हैं मकरंद खरवंडीकर। अपने गायन का आरंभ वे कर रहे हैं राग बिहागड़ा से। विलंबित रचना तीन ताल में निबद्ध है। बोल है प्यारी पग होले होले। इसके पश्चात वे तीन ताल में ही दो द्रुत बंदिशें प्रस्तुत करेंगे, निरख छब देखत और रैन दिन कैसे कटेरी।
1: इन टुनाइट्स प्रोग्राम ही इज अकंपनीड ऑन द तबला बाय श्री आशय कुलकर्णी एंड ऑन द हारमोनियम बाय श्री मकरंद खरवंडीकर। Rishikesh begins his vocal recital with Raag Bihagda. The Vilambit composition is set to Teen Taal. This will be followed by Druta compositions in Teen Taal.

0: ये था राग बिहागड़ा।
1: That was राग बिहागड़ा।
0: ऋषिकेश गांगुड़े अपने गायन का समापन राग बागेश्री से कर रहे हैं। विलंबित ख्याल तिलवारा ताल में निबद्ध है, जिसके बोल है लाल मनावे। गायन का समापन वे तीन ताल की द्रुत बंदिश पहरवा घर आओ से करेंगे।
1: Next, ऋषिकेश गांगुड़े will present राग बागेश्री। The विलंबित ख्याल is set to तिलवाड़ा ताल। He concludes the raga with a drut composition in teen taal.

0: राग बागेश्री अभी आपने सुना।
1: That was राग बागेश्री।
0: संगीत के अखिल भारतीय कार्यक्रम में आज आप ऋषिकेश गांगुलडे जी का शास्त्रीय गायन सुन रहे थे। उन्हें तबले पर श्री आशय कुलकर्णी

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं किरण शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज प्रधानमंत्री आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्यों के साथ बैठक की अध्यक्षता की। प्रधानमंत्री और परिषद ने वैश्विक उथल पुथल के दौर में भारत की आर्थिक वृद्धि को और बढ़ावा देने के लिए कई विचारों और उपायों पर चर्चा की। जीवन यापन और व्यापार को सुगम बनाने के लिए विभिन्न सुधारों पर भी विचार विमर्श किया गया। सदस्यों ने भारत और विश्व पर पश्चिम एशिया संघर्ष से होने वाले प्रभाव का भी आकलन प्रस्तुत किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्होंने भारत के आर्थिक परिवर्तन और दीर्घकालिक विकास प्राथमिकताओं से संबंधित व्यापक मुद्दों पर विचार विमर्श किया। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉ मनसुख मांडविया ने कहा कि युवा देश की सबसे बड़ी शक्ति हैं और वर्ष 2047 तक विकसित भारत का सपना पूरा करने में अग्रणी भूमिका निभाएंगे। मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत और नेपाल लंबी और खुली सीमा पर सुरक्षा बनाए रख

0: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत और नेपाल लंबी और खुली सीमा पर सुरक्षा बनाए रखने के लिए घनिष्ठ सहयोग कर रहे हैं और दोनों देश संकट के समय हमेशा एक दूसरे के साथ खड़े रहे हैं। नई दिल्ली में नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल के साथ बैठक के दौरान डॉ जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों के बीच संबंध जीवंत जनसंबंध, सीमा पार संपर्क तथा साझा सांस्कृतिक और धार्मिक परंपराओं की मजबूत नींव पर बना है।
1: Collaborate closely to maintain security along and uniquely open border.
2: सुरक्षा बनाए रखने के लिए मिलकर काम करना होगा। दोनों देश आवश्यकता के समय हमेशा एक दूसरे के साथ खड़े रहे हैं। पश्चिम एशिया और मध्य पूर्व में जारी संकट के बावजूद हमने नेपाल को ईंधन की सप्लाई बिना किसी रुकावट के जारी रखी है। दोनों पक्षों की ओर से इस रिश्ते को जो महत्व दिया जाता है वह हाल ही में सामने आया है।
1: Realize the full potential of our time.
0: रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में प्रतिबंधों की धमकी देकर भारत की संप्रभुता को कमजोर करने का कोई भी प्रयास उल्टा पड़ेगा। सेंट पीटर्सबर्ग में श्री पुतिन ने स्वतंत्र निर्णय लेने और राष्ट्रीय हितों की रक्षा के प्रति भारत की प्रतिबद्धता पर बल दिया। श्री पुतिन ने कहा कि रूस और भारत के संबंध आपसी विश्वास पर आधारित हैं। उन्होंने कहा कि दोनों देश ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज कार्यक्रम सहित संयुक्त अनुसंधान और विकास परियोजनाओं में सक्रिय रूप से शामिल हैं। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि पश्चिम बंगाल में लंबे समय से लंबित रेलवे परियोजनाओं का समाधान होने से राज्य में रेलवे अवसंरचना विकास के एक नए युग की शुरुआत होगी। कोलकाता के नबन्ना में श्री वैष्णव ने बताया कि वर्ष 2026-27 के रेल बजट में पश्चिम बंगाल के लिए 14,205 करोड़ रूपये आवंटित किए गए हैं। रेल मंत्री ने अगले 5 वर्षो में कोलकाता मेट्रो के लिए 60 नई रेलगाड़ियों को शुरू करने की घोषणा की। केंद्र सरकार ने कानूनी माप प्रणाली के अंतर्गत खाद्य तेलों के लिए मानक पैकिंग लागू की है। इससे बाजार में अधिक पारदर्शिता और एकरूपता आएगी। उपभोक्ता कार्य विभाग ने खाद्य तेलों और घी की शुद्ध मात्रा तथा मानक पैक आकार निर्धारित करने संबंधी मानक संचालन प्रक्रिया में संशोधन किया है। स्वीकृत पैक आकार 200 ग्राम, 500 ग्राम, 1 से 5 किलो, 15 और 20 किलो है। इस पहल का उद्देश्य बाजार में विभिन्न पैकेज आकारों की बढ़ती संख्या कम करना है। जापान में भारतीय अंडर 18 पुरुष टीम ने एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट जीत लिया है। फाइनल में भारत ने जापान को 4-1 से हराया। आशीष तानीपूर्ति ने 3 और कप्तान केतन कुशवाहा ने 1 गोल किया। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय हॉकी टीम को बधाई दी है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय रेणुका। Prime Minister Narendra Modi today chaired a meeting with members of the PM Economic Advisory Council. The Prime Minister and the EAC discussed various ideas and measures to further boost India's economic growth in times of global turmoil. In a social media post, the Prime Minister said they deliberated on a wide range of issues relating to India's economic transformation and long-term development priorities. They also shared perspectives on adding more momentum to the reforms journey and ensuring ease of living as well as ease of doing business. The Economic Advisory Council is an independent body that gives advice to the Government of India, specifically to the Prime Minister, on economic and related issues. Besides the EAC members, 2 principal secretaries to the Prime Minister, Dr. P.K. Mishra and Shaktikant Das, also attended the meeting. The centre has introduced standard pack sizes for edible oils under the legal metrology framework, bringing greater transparency and uniformity to the marketplace. The Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution said that under the revised rules, standard pack sizes have been prescribed for major edible oils, including palm oil, palmolin, soybean oil, sunflower oil, mustard oil, groundnut oil, sesame oil and rice bran oil. The approved pack sizes are 200 gram, 500 gram, 1 to 5 kilograms, 15 kilograms and 20 kilograms. The ministry said this will also help